मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आज रविवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की 21वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 12 जुलाई 2026। सवेरे के ठीक 5:56 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के प्रसारण आरंभ होते हैं मंगल ध्वनि के साथ।

0: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक विशाल अभियान में आज 35 करोड़ पौधे लगाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किस्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इसके अतिरिक्त 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2026 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में FSSAI ने कहा है कि स्विगी को विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है और ऐसा न करने पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों के निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का यह बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट कल वियतनाम के फुकवोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों से 10 तमिलनाडु से और 3 आंध्र प्रदेश से जबकि 2 केरल से थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने कहा है कि ये हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। और खेलों में इंग्लैंड ने कल रात साउथैम्पटन में 5वें और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से जीत ली है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा के मियामी स्टेडियम में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया। महिला डबल्स के फाइनल में आज गुओ हान्यो और लुइसा स्टेफेनी की जोड़ी का मुकाबला क्रिस्टीना माल्डिनोविच और

0: 6-2, 5-7, 6-3 in the Wimbledon women's singles final at Centre Court, London last night. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 6:10 हुए हैं। कार्यक्रम सुने वंदना।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं वंदना कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। आइए अब सुने हरिओम शरण की आवाज़ में ये भक्ति रचना।

0: अभी आप वंदना कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। छः बजकर 45 मिनट हुए। कार्यक्रम सुने चिंतन।
1: अच्छे काम हमारे आध्यात्मिक रास्ते की नींव है। बिना अच्छे विचार एवं कार्य के दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस रास्ते पर प्रगति नहीं कर सकता। यहाँ भले कार्यों का अर्थ है चोरी, झूठ बोलना, नशा पता करना आदि कर्मों से अपने आप को दूर रखना, अर्थात अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं करना जिससे दूसरे प्राणियों को दुख पहुंचता हो, न ही किसी अन्य व्यक्ति को बुरे काम के लिए प्रेरित करना तथा न ही गलत काम करने वाले व्यक्ति का साथ देना। इसके बदले अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से ऐसे शुभ कार्य करना जिससे सभी प्राणियों को सुख पहुंचता हो। गलत काम करने वाले और जो गलत कार्य कर चुके हैं वे सही रास्ते पर आ जाएं, इसके लिए उन्हें प्रेरित करना, यही सच्चे अर्थों में अच्छे कार्य हैं। बाहर का कोई भी व्यक्ति, कोई भी घटना, कोई भी स्थिति हमारे बुरे कर्मों का कारण नहीं बन सकती, जब तक कि हमारे भीतर के विकार हमारे चित्त के साथ न लग जाएं। जब जब हमसे गलत काम होता है तो हमें परखना होगा कि कौन सा विकार मेरे चित्त के साथ लगा। इस तरह अपने आप को जांचने से विद्या जागेगी, होश जागेगा और धीरे धीरे दुष्कर्मों की प्रवृत्ति मिटती जाएगी, निर्मलता आती जाएगी। आज से लगभग 500 वर्ष पहले एक महान संत हुए जिनका नाम कबीर महान है। भारत में ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं जिनके नाम के आगे महान लगा है। कबीर जी ने समाज को ध्यान की दो पद्धतियां दी जिनमें से एक का नाम तत्वज्ञान है और दूसरी का नाम पारख ज्ञान है। तत्वज्ञान के अंतर्गत ध्यान की चार विधियां हैं जो अपने आप में अद्वितीय हैं। इस तत्वज्ञान का प्रतीक, इसका परिचायक सांथिया है जो हम सब लोग अपने घरों के अंदर दीवारों पर या घर के मुख्य द्वारों पर बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर सांथिया बनाता है वह व्यक्ति बताना चाहता है कि मैं तत्वज्ञान की चारों विधियों को जानने वालों में से हूँ। दूसरा प्रतीक, हम अपने घरों के मुख्य द्वारों पर शुभ और लाभ भी लिखते हैं जिसका मतलब है हम उन लोगों में से हैं जो शुभ करते हैं और लाभ पाते हैं। शुभ का अर्थ है अपने मन, अपनी वाणी और अपने शरीर से अच्छे कार्य करना और लाभ का अर्थ है सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक उन्नति। अब मैं तत्वज्ञान की उन चारों विधियों के नाम बता दूं। पहली विधि जिसका नाम है अजपाजाप, दूसरी विधि का नाम है खेचरी मुद्रा, इस विधि को अमृत पान विधि भी कहते हैं। तीसरी विधि जिसका नाम है अनहद नाद विधि और चौथी विधि जिसका नाम है ज्योतिर्मय स्वरूप। सबसे पहले मैं अजपाजाप के बारे में थोड़ा बता दूं। अजपा जाप का अर्थ है एक ऐसा सुमिरन, एक ऐसा जाप जो अपने आप हो रहा है। क्या हो रहा है? अपने आप, अपने आप हमारी श्वास भीतर जाती है और अपने आप बाहर आती है। यह एक प्रकार का झूला है जो बाहर वाले छोर से भीतर वाले छोर तक जाता है और फिर भीतर वाले छोर से बाहर वाले छोर तक आता है। यह एक ऐसी माला है जो हमारे घट में निरंतर फिरती रहती है। जब श्वास भीतर जाता है तो एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है और जब सांस बाहर आता है तो भी एक प्रकार की ध्वनि पैदा होती है। इस प्रकार आते जाते श्वास की ध्वनि से एक शब्द, एक नाम निर्मित होता है। उस नाम में ध्यान लगाए रखना ही अजपा जाप है।
0: अभी आप चिंतन कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:50 हुए हैं। आइए अब जाने कार्यक्रम विवरण के बारे में।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर कार्यक्रम सुनेंगे खेती राम वास्ते। इसमें जानकारी आप लेंगे चारे के लिए ज्वार की खेती और साथ ही हम सुनेंगे लोक भजन, मानस गान भाग संख्या 302 आप सुनेंगे सवेरे 7:20 पर। सुप्रभात ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 7:30 पर। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे पड़ोसियों से संबंध अच्छे रखें, सहकर्मी से हमारे संबंध, परोपकार की भावना। 8:45 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। सवेरे 9:10 पर सुनेंगे कार्यक्रम प्रकृति की चर्चा आकाशवाणी के साथ, एपिसोड 9 आप सुनेंगे। 9:40 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। सदाबहार नगमे फरमाइशी गीतों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सवेरे 10:00। 11:00 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे 12:05 पर। सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:30 पर। खेत खलिहान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर। इसमें जानकारी आप लेंगे ज्वार की उन्नत खेती। दोपहर 1:05 पर सुनेंगे महिला जगत का हमारा कार्यक्रम। इसमें चर्चा के विषय रहेंगे बुजुर्गों का अकेलापन, हमारी बदलती लाइफस्टाइल और बच्चों की सेहत, कार्यस्थल पर महिलाओं की चुनौतियां, उत्तर प्रदेश के खास व्यंजन इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। दोपहर 2:30 आप सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारा कार्यक्रम। युवा साथी अपना कार्यक्रम सुनेंगे युववाणी शाम 5:00। जीवन में सत्य का महत्व, भारत की मुख्य नदियां, वायु प्रदूषण से नुकसान और बचाव, वृक्षारोपण और आज का इतिहास इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे।

शाम 6:05 पर सुनेंगे सरायकी कार्यक्रम। ग्रामीण परिवार अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल शाम 7 बजे। इसमें जानकारी आप लेंगे पशुओं के लिए उजोला, तोरी की उन्नत खेती, पशुओं का परजीवी से बचाव और मौसम और बाजार भाव। इस कार्यक्रम में आप जान पाएंगे। 7:45 पर सुनेंगे फिल्म संगीत का हमारे कार्यक्रम। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे फिल्म संगीत, एक ही फिल्म से जानकारी और गीत इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे। 9:15 पर सुनेंगे सुगम संगीत का हमारा कार्यक्रम। 9:15 उनके समय के बारे में जानकारी। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है।

0: यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा।

0: यात्रां सम्पन्नं कृत्वा भारतं प्रति प्रस्थितवान्। विगतचत्वारिंशत् वर्षेभ्यः अनन्तरम् एषा कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या उभयदेशयोः द्विपक्षीय सम्बन्धान् नूतनां गतिम् अददात्। यात्रा समये प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणा क्रिस्टोफर लक्सन इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्ताम् अकरोत्। उभौ नेतारौ रक्षा पर्यटन क्रीडा पद प्रबंधन दुग्ध व्यवसाय पशुपालनादिषु क्षेत्रेषु पंच ज्ञापन पत्राणाम् आदान प्रदानं कृतवन्तौ। अस्याः यात्रायाः प्रमुखाकर्षणेषु अन्यतमः कार्यक्रमः ऑकलैंड नगरस्य स्पार्क अरीना इत्यत्र आयोजितः प्रवासी भारतीय समुदायस्य समागमः आसीत्, यस्मिन् 10,000+ प्रवासी भारतीयाः समुपस्थिताः आसन्। समागमं सम्बोधयन् प्रधानमंत्री मोदी अवदत् यत् भारत न्यूजीलैंड देशयोः भविष्यं परस्परं सम्बद्धमस्ति।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी सस्नेह स्वागताय न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणं क्रिस्टोफर लक्सन इत्येतं प्रति कृतज्ञतां प्रकटितवान्। रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः उक्तवान् यत् भारतं पारंपरिक रक्षा सामर्थ्यस्य उन्नत प्रौद्योगिकीनां च सुदृढीकरणेन दृढं आत्मनिर्भरं भविष्यस्य आह्वानेभ्यश्च अनुकूलं रक्षाबलं निर्माति। असौ एतत् विशाखापत्तनम नगरे भारतीय नौसेनायाः पूर्वी नौसेनादले प्रोजेक्ट 17A इत्येतस्य अन्तर्गते स्वदेशे निर्मितस्य षष्ठयुद्धपोतस्य INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य समावेशन समारोहं सम्बोधयन् अवदत्। रक्षामंत्री अवदत् यत् INS महेन्द्रगिरिः इत्येतस्य नौसेनायां सम्मेलनं भारतस्य सामुद्रिक सामर्थ्यस्य स्वदेशी रक्षा क्षमतायाश्च सुदृढीकरण दिशि अन्यत् महत्वपूर्णं सोपानमस्ति। पश्चिम बंगाल प्रशासनेन राज्याय UCC इति समान नागरिक संहितायाः प्रारूप विधेयकस्य परीक्षार्थं नव सदस्यात्मिका समितिः निर्मिता। अस्मिन् विषये अधिसूचना पूर्वमेव प्रकाशिता अस्ति। सेवा निवृत्त न्यायमूर्तिः रंजना प्रकाश देसाई समितेः अध्यक्षत्वेन नियुक्ता। मेघालयस्य पूर्व राज्यपालः तथागत रॉयः अपि समितेः सदस्येषु अन्यतमः अस्ति। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरणेन खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियमस्य 2006 इत्यस्य उल्लंघन सम्बद्धानां बहूनां उपभोक्तृ परिवादानां अनन्तरं स्विगी इंस्टामार्ट इत्यस्मै नव अधिसूचनाः प्रेषिताः। फीफा विश्व चषक प्रतिस्पर्धायाम् अद्य प्रातः फ्लोरिडा इत्यत्र मियामी क्रीडा प्रांगणे इंग्लैंड देशेन नॉर्वे देशं 2-1 इत्यंकांतरालेन पराजित्य उपांत्य चक्रे प्रविष्टम्। वियतनाम देशस्य प्रधानमंत्री ले मिन हुन इत्येषः फूक्वक द्वीपस्य समीपे जाता स्पीड बोट इत्येतस्याः दुर्घटनायाः अन्वेषणाय आदेशं प्रदत्तवान्। अस्याम् दुर्घटनायां 15 भारतीय पर्यटकाः निधनमुपगताः इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के समक्ष अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे

अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार एक व्यापक अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधरोपण महायज्ञ का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। उधर गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधरोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 38वीं मासिक किश्त जारी की जाएगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से 1,25,00,000 से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 1,835 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लगभग 239 करोड़ रुपए की 40 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा 83 करोड़ रुपए से अधिक की 16 नई लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमों का उल्लंघन करने के आरोपों से संबंधित कई उपभोक्ता शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को 9 नोटिस जारी किए हैं। उपभोक्ता शिकायतों में स्विगी इंस्टामार्ट पर उत्पादों की निर्धारित अवधि समाप्त होने, खराब, सड़े, दूषित और अन्य प्रकार के असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति का आरोप लगाया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को अपने पक्ष में करने के जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के आरोप की आलोचना की है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि श्री अब्दुल्ला का ये बयान अत्यंत गैर जिम्मेदाराना है। वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकोक द्वीप के पास रट नगोआई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जलडमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के कंसास में क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक अर्जेंटीना मुकाबले में 1-0 से आगे है। एक अन्य क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। उधर लंदन में कल रात विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: की खेती में। चारे की फसलों में प्राप्त कुल हरे चारे में ज्वार की फसलों 80-85% हरे चारे की पूर्ति हुए। ज्वार के हरे चारे में प्रोटीन, रेसा, कैल्शियम, फास्फोरस आदि पोषक तत्व जगह है वह पाया जावे, जगह पशुओं के स्वास्थ्य खातर लाभदायक हुए और यूं पशुओं में दूध उत्पादन भी बढ़े। ज्वार की वृद्धि और बीजांग अंकुरण खातर अपेक्षाकृत अधिक तापमान की आवश्यकता हुए। ज्वार की बुआई के समय भूमि को तापमान 18-21 डिग्री के मध्य होना जरूरी है। इन खातर दोमट, बलुई दोमट और हल्की औसत भूमि जगह में जल निकासी को अच्छा प्रबंध हुए उत्तम मानी जावे। ज्वार की उन्नत किस्मों में इन टाइम संकर ज्वार यानी हाइब्रिड ज्वार काफ़ी किस्माएँ प्रचलित है, जगह में चारों नरम और काफ़ी पौष्टिक हुए और उपज भी अन्य जगह देसी ज्वार है बिंगी किस्मों ज़्यादा अपन प्राप्त हुए और बढ़वार भी तेजी हुए। आम किस्मों में SSG 988, SSG 992, जीके 999, SSG 66, SSG 885, SSG 555, SSG 59, SSG 37 और HML 1 मुख्य है। आम किस्मों में ज्वार की कटाई के बाद पशु बड़ा चाऊ आना खावे क्योंकि आंग में काफ़ी मिठास हुए और रसदार भी ज़्यादा हुए और सागांगी बढ़वार जी की है वह बहुत तेजी हुए और बिजाई खातर एकदम है उपयुक्त रहे और यह बहु कटान वाली किस्म है जगह में एक बार की कटाई के बाद भी आप कई बार आप आएंगी कटाई लेस का। ज्वार की जी की फसल है इनकी बुआई को जो को समय है बटे सिंचाई का अगर साधन उपलब्ध है तो ज्वार की जी की बुआई है वह बसंत ऋतु और गर्मियों में आसानी आप कर सका। हाइब्रिड ज्वार की जी की किस्म की बुआई फरवरी का अंत चालू करी जा सके जिकी को लाभ है वो किसान भाई इनके पश्चात इनकी बुआई अगस्त मांग तक आप कर सका पर देरी बुआई करने खातर पर देरी बुआई अगर आप करांगा तो यूँ कीड़ा मकोड़ा और बीमारियों ऊपर प्रकोप बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहे जो बढ़वार आपने प्रभावित हुए। खेत में खरपतवार नष्ट कर अच्छो पलेवो कर देना चाहिए और खेत में अच्छी बत्तर आ जावे तो हेराऊँ दो क्रॉस में जुताई करके फसल की आप बिजाई करनी चाहिए। जे किसान भाइयों का करना रोटावेटर उपलब्ध हुआ है तो एक जुताई रोटावेटर करनू खेत अच्छो तैयार हो जावे और बीजों अंकुरण नया पौधा की जड़ों को फैला भी अच्छो हुए जगह पौधा जगह है वह तेजी बढ़ने लग जाए। इनके बाद जो कि हाइब्रिड ज्वार की किस्म है वह 12 किलो प्रति एकड़ की दरों 4-5 सेंटीमीटर गहराई पर 25-30 सेंटीमीटर की दूरी पर पंक्तियां में सीड ड्रिल करके या हलू बुआई अपन करनी चाहिए। बीज के सागे सागे 5 किलो लोबिया को बीज भी अपन मिला देवा तो चारों भी अत्यधिक पौष्टिक होसी और उपज भी ज्यादा होगी। खाद उर्वरक की बात करें तो किसान भाई जैविक खादों का प्रयोग अपन ज्यादा करना चाहिए। बिजाइयों पहला किसान भाई अगर करना गोबर की सड़ी गली खाद उपलब्ध हो तो बिजाइयों 1-2 महीने पहला खेत में डाल के अच्छी तरह अपन मिला देनी चाहिए। किसान भाइयों ने उर्वरक का प्रयोग करने पहला मिट्टी को जो परीक्षण है वो आवश्यक रूप में करवा लेना चाहिए। जो भूमि में कितनी खाद की मात्रा जिया कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और अन्य जगह सूक्ष्म तत्व है बंगो अपन ने पहला पतो चाल जाए और बिया प्रति एकड़ 20 किलो यूरिया बुआई के समय प्रति कटाई के पश्चात सिंचाई करने के पश्चात 10-12 किलो यूरिया की दूसरी कटाई खातर पटवार में तेजी खातर अपन डाल देनी चाहिए। बुआई में पहला खेत की आखिरी जुताई के टाइम 20 किलो DAP ने खेत में अपन डाल देना चाहिए। जब मिट्टी में पोटास की मात्रा पर्याप्त हो तो बैठा इंगी DAP की जरूरत अपन को नहीं रहे। सिंचाई को जो प्रबंध है वो अपन ज्वार की फसल की बुआई गए पहली सिंचाई 20-21 दिन बाद जरूर कर देनी चाहिए। इनके पश्चात हर सिंचाई के मध्य 15-20 दिन को अंतर रखना चाहिए। जब बीच में अगर बरसात हो जाए तो अपन सिंचाई की आवश्यकता कम रहेगी। सिंचाई के बाद खेत में ज्यादा समय तक पानी अपन खड़े नहीं रखना है और बिंग अपन निकास कर देना चाहिए और कटाई के बाद सिंचाई जरूर कर देनी चाहिए। और कटाई का जो प्रबंध है वो ज्वार के चारा की जगह कटाई है बिंग विशेष ध्यान रखना चाहिए। 40-50 दिन के पश्चात जमीन में 4-5 सेंटीमीटर ऊपर फसल ने छोड़ के चारे की कटाई करनी चाहिए। दूसरी कटाई खातर नई कली का जगह है वह जमीन के सारे पौधों नई फुटाव लेवे और ज्यादा नीचे अगर आप फसल काटेंगे तो नुकसान अपन हो जाएगा। इनके अलावा फसलों की जिकी आप सुरक्षा की बात करें तो ज़्यादा देरी हूँ या समय पूर्व अगर जिकी ज्वार की फसल अपन ने बोई गई है बिंग अंदर कीड़ा और बीमारियां को सामान्य प्रकोप जो है वो ज़्यादा हुए तो किसान भाइयों अब फसल बिजात को अपने टाइम है तो अपन अच्छी किस्म की फसल अपन बिजात करनी है जो आप ज़्यादा लाभ ले सका। तो अब किसान भाइयों मैं चालू राम राम सा राम राम।
1: चारे के लिए ज्वार की खेती अभी आपने इस कार्यक्रम खेती के दरवाजे में जानकारी ली। आइए अब सुने एक लोक भजन।

ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारी शिलाखंड तथा वृक्ष खेल ही खेल में उखाड़ लाते हैं। नल और नील उन्हें गढ़कर सेतु का निर्माण करते हैं। ये सुंदर रचना देख श्री राम अति प्रसन्न हैं। उस स्थल को अत्यंत रमणीय और उपयुक्त देखकर वे वहां शिव की स्थापना करने का संकल्प करते हैं।

इसी लोक वचन के साथ ही आज का खेती रवस्थ कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरत का है। 7:20 हुए हैं। कार्यक्रम सुने मानस गान भाग संख्या 302।

यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 7:30 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने सुप्रभात।

श्रोताओं, बात करें पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध की। पड़ोसियों से अच्छे संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। रोज़ मिलकर मुस्कुराएं और उनका हालचाल पूछें और अपनी गाड़ी हमेशा अपने घर के सामने खड़ी करें और देर रात तेज़ आवाज़ में संगीत न बजाएं। ज़रूरत पड़ने पर मदद करें, इससे मुसीबत के समय आपको सबसे पहले मदद मिलती है। श्रोताओं, नए हो तो अपना परिचय दें, बातचीत करें, आते जाते नमस्कार या राम राम भी करें। अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, अपने जो निजी मामले हैं आपस में छोटी सी बातों को लेकर न उलझें, इससे संबंध खराब होते हैं। और सुबह जल्दी या रात को तेज़ आवाज़ न करें, शोर शराबा जो है वो न करें। और कभी कभी कोई चीज़ बांट लें, और अगर आपस में कहीं एक पड़ोसी अगर जाता है तो उसका घर का ध्यान भी रखें। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें आपसी संबंधों को सुधारने में मदद करती हैं। पड़ोसियों से संबंध बनाने के लिए हमेशा विनम्र और मददगार रहें, हमेशा मिलकर रहें, बातचीत करें और एक अच्छा वातावरण बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे का साथ दें। सकारात्मक शुरुआत अगर हम करें, यदि आप इलाके में नए हैं तो स्वयं पहल करके अपना परिचय दें। आने जाने पर अभिवादन, नमस्ते या हेलो जरूर कहें। उनके निजी मामलों में हस्तक्षेप न करें। पारिवारिक कोई मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए किसी भी पड़ोसी से, क्योंकि वो संबंध बिगाड़ सकता है। और घर पर किसी पार्टी या कार्यक्रम में उन्हें आमंत्रित करें, आयोजनों से सहर्ष शामिल हों। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमें, जो हमारे पड़ोसी हैं उनके संबंध के लिए हमें मजबूत करती है। और होता भी यही है कि मान लीजिए दुख तकलीफ़ अगर आपको किसी भी समय आती है तो हमारे सबसे पहले जो हैं पड़ोसी काम आते हैं, क्योंकि नियर अबाउट हमारे वही है, नज़दीक वही है। तो हमें हमेशा उनके साथ संबंध अच्छे बनाए रखने चाहिए। बात हम और भी करेंगे, आइए सुने ये गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोता, अंतराल से पहले गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म का नाम था पड़ोसन और गीतकार राजेंद्र कृष्ण थे और संगीत था आर डी बर्मन का। आइए बात करें सहकर्मियों के साथ संबंध की। जी हाँ, बिल्कुल सही है, जो भी हमारे सहकर्मी हैं, हमारे जो साथ काम करने वाले हैं, उनके साथ हमेशा हमारे संबंध अच्छे होने चाहिए। सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध हमारी कार्यकुशलता और मानसिक शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे का सम्मान करें,

स्पष्ट बातचीत करने और मदद की भावना रखने से कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनता है। यह तनाव को कम करता है और काम में सफलता लाता है। कार्यालय में सभी का सम्मान रूप से सम्मान करें। पद कोई भी हो, अच्छा व्यवहार रिश्ते का नींव होता है। काम के दौरान अपनी बात सीधे और स्पष्ट तरीके से कहें और किसी भी गलतफहमी के कोई भी बात न करें। जब किसी सहकर्मी की मदद की ज़रूरत होती है तो आगे आएं। टीम वर्क से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। सहकर्मियों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें, लेकिन अपनी व्यक्तिगत और पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल सीमाएं हमेशा बनाए रखनी चाहिए। श्रोताओं, सहकर्मी यानी कि कलीग वह व्यक्ति होता है जो आपके साथ एक ही कार्यस्थल, व्यवसाय या पेशे में समान स्तर पर काम करता है। ये आपसे ऑफिस, कंपनी या प्रोजेक्ट के साथ काम करने वाले वे सहयोगी होते हैं जिनके साथ आप पेशेवर लक्ष्य साझा करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, साथ देते हैं। सहकर्मी समीक्षा का अर्थ है कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके द्वारा लिखे गए पाठ को पढ़ना। अब अगर हम बात करें साथ मिलकर के, एक साथ रहने, एक जगह पर हम लोग काम कर रहे हैं, तो अगर हम हमारे बीच विचारों का मतभेद होता है या किसी बात को हम लेकर बेवजह कोई चर्चा करते हैं, तो उससे एक तो हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है, नष्ट होती है। दूसरा, जहां हम काम कर रहे हैं वहां का जो वातावरण है बिल्कुल ही खराब हो जाता है, तो सीधा असर आपके वर्क पे पड़ता है। काम आप समय पे नहीं करेंगे और काम करेंगे तो वो गलत होने की संभावना भी हो सकती है। तो अगर हम साथ मिलकर टीम वर्क अगर करते हैं, एक दूसरे का सहयोग हम करते हैं, तो गलती की संभावना कम से कम हो जाती है। तो हमेशा जहाँ भी कार्यस्थल पर हम काम कर रहे हैं, साथ मिलकर ही हमें काम करना चाहिए। बात हम और भी करेंगे, आइए सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओं, गीता आपने सुना कृष्णा सलीम मर्चेंट की आवाज़ में, और फिल्म का नाम था चक दे इंडिया। गीतकार जयदीप साहिनी और संगीत सलीम सुलेमान का था। आइए बात करें परोपकार की भावना। श्रोतम, परोपकार का अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की भलाई करना। यह शब्द पर यानी कि दूसरों और उपकार भलाई से मिलकर बना है, परोपकार। ये मानवता की सबसे महान भावना है। इसके मूल में प्रेम, दया और सहानुभूति छिपी हुई है। यह अपना पानी खुद नहीं पीती, ये दूसरों की प्यास बुझाने के लिए बहती है। यह अकेले अपने फल खुद नहीं खाती, सभी को वो मीठे फल खिलाती है, छाया देती है। ये प्रकृति हमें सिखाती है कि सूरज यह बिना रुके पूरी दुनिया को रोशनी और गर्मी देता है। नदियां अविरल निरंतर बह रही है, किसके लिए? हम सभी के लिए। तो प्रकृति का यह परोपकार हमारे लिए सदैव बना रहता है। परोपकार के लिए बहुत सारा धन होना जरूरी नहीं है, इसमें छोटे कामों में भी ये किया जा सकता है। दान, भूखे को अन्न या गरीब को कपड़े देना, शिक्षा, किसी अनपढ़ या गरीब बच्चे को पढ़ाना, सहायता, सड़क पर पार करने में किसी बुजुर्ग की मदद करना, और या प्यासे को पानी पिलाना, किसी दुखी व्यक्ति से प्यार से बात करके उसका दर्द कम करना, थोड़ी सी मुस्कान तो है। मानसिक शांति, विज्ञान के अनुसार श्रोताओं, दूसरों की मदद करने से

दिमाग में खुशी देने वाले हार्मोन्स निकलते हैं। इससे हमारा तनाव कम होता है। परोपकारी व्यक्ति को समाज में बहुत आदर मिलता है। इससे जीवन को सही अर्थ और खुशी मिलती है। संस्कृत में एक विशुद्ध एक श्लोक है, परोपकाराय सदाम विभूतेह, अर्थात अच्छे लोगों की संपत्ति हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही होती है। ये भावना हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। तो हमारा कर्तव्य है कि किसी भी दुखी व्यक्ति या कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी हमें सहायता या उसके उपचार के लिए सहयोग हमें करना चाहिए। बड़ी ही आत्मिक शांति मिलती है, क्योंकि किसी व्यक्ति की आप मदद करते हैं, अगर वो किसी कष्ट में है तो उसके मन से बड़ी आपके लिए आदर और सम्मान निकलता है, जो कि सीधे आपके कर्मों से जाकर जुड़ती है, क्योंकि व्यक्ति में ये कर्म प्रधान ही है। जैसा आप आज कर्म करेंगे वैसा फल, क्योंकि कलयुग चल रहा है, हाथों हाथ ही उसका जो फल है वो मिल जाता है। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना प्रदीप की आवाज़ में और फिल्म का नाम था दो बहनें। गीतकार प्रदीप थे और संगीत वसंत देसाई का था।

0: और एक और प्यारा सा गीत आपने सुना प्रदीप की आवाज़ में, दशहरा फिल्म से हमने लिया था। इसी गीत के साथ ही सुप्रभात कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 8 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा संपन्न।

0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ विस्तृत वार्ता के बाद स्वदेश रवाना। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए। दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए। ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश किया और लिंडा नोस्कोवा ने कैरोलिना मुकोवा को हराकर अपना पहला विंबलडन टेनिस खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। इस दौरान श्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को विश्वसनीय मित्र बताते हुए न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की भी उन्होंने प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री लक्सन के शानदार आतिथ्य के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ है। श्री मोदी ने 40 वर्ष बाद भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा के बारे में कहा कि अगली यात्रा में इतना समय नहीं लगेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है। इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है। पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं। प्रधानमंत्री मोदी की 3 देशों की यात्रा के दौरान भारत ने इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा, नवाचार, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार किया है। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। इसके अंतर्गत कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली स्थित पूसा परिसर में पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस अवसर पर वे देश भर से आए लगभग 17,000 वृक्ष मित्रों से संवाद करेंगे। श्री सिंह वृक्ष मित्रों के साथ पूसा परिसर में वृक्षारोपण अभियान में भी हिस्सा लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की जन केंद्रित विभिन्न परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि गृह मंत्री कार्यक्रम के दौरान अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र गांधीनगर में महत्वाकांक्षी सामूहिक पौधारोपण अभियान की शुरुआत भी करेंगे।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने संसदीय क्षेत्र को देश में सबसे हरा भरा बनाने के लिए महत्वाकांक्षी गांधीनगर हरियाली लोकसभा अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत इस साल गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में 1.25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। इस अभियान के तहत वन विभाग अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में वन कवच मॉडल के माध्यम से लगभग 60 लाख स्वदेशी पौधे लगाएगा, जो त्वरित पर्यावरण सुधार के लिए जापानी मियावाकी पद्धति का गुजराती स्वदेशी संस्करण है। अपने दौरे के आखिरी दिन श्री शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप बैठक और पहली अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषक अपराध प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे देहगांव में नवनिर्मित एपीएमसी सब्जी मंडी का भी लोकार्पण करेंगे। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: उत्तर प्रदेश सरकार व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ 2026 का शुभारंभ करेंगे। वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत

0: गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आरकेबीके के पास ताल रिंग रोड के किनारे पौधे लगाएंगे। एक रिपोर्ट।
1: 27 विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले इस विशाल वृक्षारोपण अभियान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15 करोड़ 50 लाख पौधारोपण करेगा। ग्राम्य विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3 करोड़ 25 लाख, उद्यान विभाग 1 करोड़ 50 लाख और पंचायती राज विभाग 1 करोड़ 22 लाख पौधे लगाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे। महाअभियान 2026 में इस वर्ष समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई है। इस अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा और आम भंडारा भी होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित प्रस्तावित विधेयकों की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति ने गोवा में अपनी 2 दिवसीय परामर्श प्रक्रिया पूरी कर ली है। इस दौरान समिति ने राज्य सरकार, राजनीतिक दलों, विधायकों, संवैधानिक विशेषज्ञों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और मीडिया से विचार विमर्श किया। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: पहले दिन समिति ने गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, संवैधानिक विशेषज्ञों, राज्य निर्वाचन आयोग तथा गोवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। दूसरे और अंतिम दिन कल समिति ने गोवा विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर गणेश गांवकर, विपक्ष के नेता यूरिया लेमाव तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायकों से चर्चा की। इससे पहले समिति के अध्यक्ष और सांसद पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ चुनाव कराने से सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, चुनावी खर्च कम होगा और बार बार होने वाले चुनावों से होने वाले प्रशासनिक व्यवधान में कमी आएगी। समिति अब अपने राष्ट्रव्यापी परामर्श अभियान के अगले चरण में लखनऊ का दौरा करेगी। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
1: वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन हुन ने फुकवोक द्वीप के पास स्पीड बोट हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। इस हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। ये हादसा उस समय हुआ जब 36 लोगों को लेकर जा रही स्पीड बोट फुकवोक द्वीप के पास रट नगोवाई टापू के निकट अचानक ऊंची लहरों की चपेट में आकर पलट गई। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने मृतकों की सूची जारी की है। इनमें 10 लोग तमिलनाडु, 3 आंध्र प्रदेश और 2 केरल के रहने वाले थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका की सेना ने कहा है कि हमले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर किए गए हैं। इस बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को अगली सूचना तक बंद कर दिया है। ईरान की नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिका का दखल खत्म होने तक किसी भी जहाज को इस रास्ते से निकलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नौसेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य की इस घटना को लेकर अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का कड़ा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका ईरान से सार्वजनिक रूप से होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर हमला नहीं करने का आश्वासन चाहता है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि तनाव के बावजूद ईरान के साथ बातचीत जारी रहेगी। ईरान ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य उसके नियंत्रण में ही रहेगा और इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों को शुल्क देना होगा। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही के लिए 2 अलग अलग रास्तों का प्रस्ताव दिया है, लेकिन ईरान ने इस तरह के प्रस्ताव को पहले ही खारिज कर दिया था। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित पार्श्व गायिका

0: इस जानकी अम्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ मुकेश कुमार बल।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज तड़के फ्लोरिडा में नॉर्वे को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इंग्लैंड के जूड बेलिंघम ने अतिरिक्त समय में 2 गोल करके इंग्लैंड को जीत दिलाई। इंग्लैंड तीसरी बार विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचा है। स्पेन और फ्रांस पहले ही सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं। उधर लंदन में कल रात विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में 21 वर्षीय लिंडा नोस्कोवा ने चेक गणराज्य की करोलिना मुकोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। इस बीच पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यैनिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। महिला डबल्स के फाइनल में आज 10वीं वरीयता प्राप्त गुओ हान्यू और क्रिस्टीना म्लाडेनोविच की जोड़ी का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त गैब्रियला डब्रोवस्की और लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे से शुरू होगा। और इंग्लैंड ने कल रात साउथहैम्पटन में 5वें और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में भारत को 56 रन से हराकर श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है।
0: और अभी अभी प्राप्त समाचार के अनुसार अमेरिका के कंसास में जारी क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड 1-1 गोल से बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। इनमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाई है। नवभारत टाइम्स ने प्रधानमंत्री मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा को प्राथमिकता देते हुए लिखा है, आतंकवाद पर बनाएंगे जॉइंट वर्किंग ग्रुप, प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के पीएम के बीच सहमति। पंजाब केसरी ने INS महेंद्रगिरी के जलावतरण पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान को प्रमुखता दी है, भविष्य के युद्ध सिर्फ AI से नहीं सैनिकों के दम पर जीते जाएंगे। जनसत्ता ने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का बयान दिया है, चढ़ावा चोरी कलंक, व्यवस्था में जल्द सुधार। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर बरसात में बेहाल होते शहरों पर विश्लेषण दिया है, हर बरसात में देश के शहरों में लोग जलभराव और उससे जुड़ी समस्याओं से जूझते हैं, इसके बाद भी नगर निकायों का काम करने का तौर तरीका नहीं बदला है। अखबार ने लिखा है कि अब यह जरूरी हो गया है कि संसद में एक विशेष सत्र बुलाकर बिगड़ते शहरीकरण को संवारने के लिए कोई सार्थक बहस की जाए। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रीय राजधानी के मौसम का मिजाज दिया है, कमजोर पड़ा मॉनसून, अब 1 हफ्ते झेलनी पड़ेगी गर्मी।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 3 देशों की यात्रा सम्पन्न। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जाएगा। वियतनाम सरकार ने स्पीड बोट दुर्घटना की जांच के आदेश दिए, दुर्घटना में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत। अमेरिका ने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के होर्मुज जल डमरू मध्य में साइप्रस के झंडे वाले जहाज पर हमले के बाद ईरान पर नए हमले शुरू किए, ईरान ने जल मार्ग को अगली सूचना तक किया बंद। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से हराकर फीफा विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Naresh Mago. The headlines. Prime Minister Narendra Modi concludes his 3-nation tour of Indonesia, Australia and New Zealand. Departs for India after holding extensive talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. Vietnam government orders probe into speedboat tragedy that killed 15 Indian tourists. US launches new round of strikes against Iran after IRGC forces attack container ship transiting Strait of Hormuz. Iranian Navy closes the vital sea corridor until further notice. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 days.

0: लिए रवाना हो चुके हैं। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी की सतह तक ले जाने का फैसला किया और मुख्तलिफ अहम शोबों में कई समझौतों और मफाहमत नामों पर दस्तखत किए हैं। इन समझौतों में दिफा, सियाहत, खेलकूद, आफात से निमटने, डेयरी सनत और मवेशी पालने समेत कई शोबे शामिल हैं। वजीर आजम के दौरे की एक नुमायाँ तकरीब ऑकलैंड के सापर्क एरेना में मुनाकिद होने वाला कम्युनिटी प्रोग्राम था, जिसमें भारतीय बिरादरी के 10,000 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की। भारतीय बिरादरी के इस इज्तिमा से खिताब करते हुए वजीर आजम मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और दोनों ममालिक के दरमियान होने वाला दो तरफा तजारती मुआहिदा भारत की तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर को मजीद तेज करेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी हैं, वैल्यूज भी हैं और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: इस मौके पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत को एक काबिल एतमाद दोस्त करार दिया। न्यूजीलैंड की तरक्की में भारतीय बिरादरी के रोल को सराहा और वजीर आजम मोदी की क्यादत की तारीफ की। वजीर आजम मोदी ने वजीर आजम लक्सन की बेहतरीन मेजबानी पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस दौरे ने भारत और न्यूजीलैंड के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज किया है। जनाब मोदी ने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत के वजीर आजम के न्यूजीलैंड के दौरे को 40 साल गुजर चुके हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले दौरे में इतना तवील वक्फा नहीं होगा।
1: ये मेरा सौभाग्य है, मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
0: वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि वजीर आजम मोदी के तीन मुल्कों के दौरे से तिजारत, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, तालीम, इख्तरा और अवामी रवाबित समेत मुतादिद शोबों में तआवुन को फरोग मिला है और इस दौरे से अहम और मुस्बत नतायज हासिल हुए हैं। वियतनाम के वजीर आजम ली मिन हुन ने फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है, जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसिल खाने की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुक्काम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तायुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जिन अफराद ने जाब्तों की खिलाफ वर्जी की है और जिनकी गफलत इस हादसे का सबब बनी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। ये अफसोसनाक हादसा कल उस वक्त पेश आया जब 36 अफराद, जिनमें अमले के 4 अरकान भी शामिल थे, को ले जाने वाली तेज रफ्तार कश्ती रटनगोई जजीरे के करीब अचानक एक बड़ी समुद्री लहर की जद में आकर उलट गई। मकामी हुक्काम ने 21 अफराद को बहिफाजत बचा लिया, ताहम 15 भारतीय सयाह, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल थीं, जान की बाजी हार गए। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के फू क्वाक जजीरे के करीब पेश आने वाले अफसोसनाक कश्ती हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। इस हादसे में 15 भारतीय शहरियों की मौत हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वो इस अफसोसनाक कश्ती हादसे से बेहद गमजदा हैं। वजीर खारजा ने महलुकीन के अहल खाना से दिली ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। ईरान की सिपाही पासदारन इनकलाब IRGC की जानिब से आबनाए हुरमुज से गुजरने वाले कुब्रुस के झंडे वाले कंटेनर जहाज पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के खिलाफ हमलों का एक नया सिलसिला शुरू किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अमरीकी फौज ने कहा है कि ये फजाई हमले सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर किए जा रहे हैं। अमरीकी सेंटकॉम

0: कहा है कि एक तजारती जहाज पर हमले में पायलट अमले का एक शख्स लापता है और हमले की वजह से लगी आग के इंजन रूम में हुए नुकसान के सबब जहाज अपना सफर मुकम्मल नहीं कर सका। जजीरा के शाम, बंदर अब्बास और सिरीक में इन हमलों के बाद धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। वहीं ईरान ने अगले नोटिस तक अपनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। ईरान की सिपाही पासदारा ने इनकलाब ने कहा है कि उस जहाज ने गैर कानूनी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की थी। फौज ने कहा है कि किसी भी जहाज को स्ट्रेटजिक आबी गुजरगाह से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी जब तक कि खित्ते में अमरीका की दखल अंदाजी बंद नहीं हो जाती। सिपाही पासदारा ने इनकलाब की जानिब से एक इंतबाही वार करने के बाद जब जहाज रुक गया तब ये ऐलान किया गया। वहीं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कशीदगी के बावजूद ईरान के साथ सालिसी जारी रहेगी। दूसरी तरफ ओमान ने अबनाए हुरमुस से जहाज़ों के गुजरने के लिए दो अलहदा रास्ते तजवीज़ किए हैं, एक ईरानी समंदर से और दूसरा ओमान समंदर से। इससे पहले को बातचीत में तेहरान से इसी तरह की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया था। न्यूज़ डेस्क से जिज्ञासा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुजव्वजा एक मुल्क एक इंतखाब बिल का जायजा लेने वाली मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की दो रोजा मुशावरत गोवा में इख्तिताम पजीर हो गई। अपने दौरे के दौरान कमेटी ने रियासती हुकूमत, सियासी पार्टियों, कानून साजों, कानून के माहिरीन, अवामी शोबे के इदारों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों और मीडिया से तबादला ख्याल किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: आइन के 129वें तरमीम बिल 2024 और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से मुतालिक कानून तरमीम बिल 2024 पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने एक साथ इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गोवा में दो रोज़ा मुशावरत मुकम्मल की। पहले दिन कमेटी ने वज़ीर आला प्रमोद सावंत, मारूफ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं, आइनी माहिरीन, रियासती चुनाव कमीशन और गोवा यूनिवर्सिटी के हुक्काम से मुलाकात की। दूसरे दिन यानी कल कमेटी ने गोवा कानून साज असम्बली के स्पीकर, अपोजिशन के लीडर और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के कानून साज असम्बली के मेम्बरान से बातचीत की। इससे पहले अपने दौरे के दौरान कमेटी के चेयरमैन और पार्लियामेंट के मेम्बर पीपी चौधरी ने कहा कि एक साथ इंतखाबात कराने से हुक्मरानी मजबूत होगी, अखराजात में कमी आएगी और बार बार इंतखाबात कराने से पैदा होने वाली रुकावटों में कमी आएगी। उन्होंने इस बात को वाजह किया कि एक मुल्क एक इंतखाब का मतलब ये नहीं है कि पूरे मुल्क में एक ही दिन पोलिंग हो, लेकिन लोकसभा और असम्बली इंतखाबात दोनों एक साथ मरहलेवार अंदाज में 5 साल में एक बार कराए जाएं। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट जमा करने से पहले तमाम शराकत दारों से मशवरे ले रही है। कमेटी का अगला दौरा लखनऊ का होगा। महेश चोपड़े की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अवामी फलाह बहबूद से मुतालिक 405 करोड़ रुपए की मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इस मौके पर वो अपने पार्लियामानी हल्के गांधीनगर में एक वसी शजरकारी मुहिम का भी आगाज करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने गांधीनगर लोकसभा हल्के को मुल्क के 70 हल्कों में शामिल करने के लिए एक बड़े शजरकारी मनसूबे का आगाज किया है। आबोहवा की तब्दीली से निमटने के मकसद से चलाई जाने वाली इस मुहिम के तहत रवानसाल पूरे हलके में 1,25,00,000 से ज़्यादा पौधे लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम के तहत महकमे जंगलात अहमदाबाद और गांधीनगर अजला में तकरीबन 60,00,000 देसी पौधे लगाएगा। इसके लिए वन कवच मॉडल इस्तेमाल किया जाएगा जो मियावाकी तकनीक का गुजरात में तैयार करदा मकामी नमूना है और जिसका मकसद तेज़ रफ्तार माहौलियाती बहाली और घने जंगलात का क़याम है। जनाब अमित शाह कल गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होने वाले इंटरपोल डिजिटल फॉरेंसिक एक्सपर्ट ग्रुप की 11वीं मीटिंग और जराइम की तहकीकात करने वालों के पहले बैन अल-अक़वामी मुकाबले का इफ्तिताह करेंगे। बाद में वो देहगाम का दौरा करेंगे जहाँ नए तामीर शुदा APMC सब्जी मंडी का इफ्तिताह करेंगे और अमृत महोत्सव की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हबीब रहमान।
1: एक बड़ी शजरकारी मुहिम के तहत उत्तर प्रदेश हुकूमत आज 35 करोड़ पौधे लगाएगी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ आज सुबह गोरखपुर से रियासत भर में पौधारोपण महाअभियान 2026 का आगाज करेंगे। वो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और ताल रिंग रोड की करीब एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत पौधे लगाएंगे। इस मौके पर वजीर आला एक अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे और लोगों से पौधारोपण महाअभियान में जिम्मेदारी के साथ हिस्सा लेने पर जोर देंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: 27 महकमों के इश्तराक से अंजाम दी जाने वाली बड़ी शजरकारी मुहिम में महकमे जंगलात को 15 करोड़ 50 लाख पौधे लगाने का सबसे बड़ा हदफ दिया गया है।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज आप नरेंद्र चंचल के गाए कुछ भक्ति गीत आप सुन रहे हैं, कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से।

0: इसी भक्ति रचना के साथ ही आज का सुगम संगीत कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9 बजने वाले कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बेंगलुरु से आई पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएगी ये परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा, अधिकांश हिस्सों से बादल छटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से यात्रियों के लिए शुरू हो गया है। पहली फ्लाइट के बेंगलुरु से जोधपुर पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों का स्वागत किया। ये फ्लाइट फिर से यात्रियों को लेकर जोधपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होगी। करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से 37 एकड़ में बना ये 24,000 वर्ग मीटर का भव्य भवन पुराने टर्मिनल से 6 गुना बड़ा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को किया था। एयरपोर्ट के इस टर्मिनल

0: भवन में 8 प्रवेश द्वार और 20 चेक इन काउंटर्स बनाए गए हैं। पहली बार सीधे विमान में जाने के लिए एरो ब्रिज, एस्केलेटर और लिफ्ट बनाई गई हैं। अक्टूबर में नए पर्यटन सत्र में कई नए शहरों के लिए यहां से उड़ान संचालित होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ व्यापक बातचीत की। भारत और न्यूजीलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया है। इस दौरान रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और डेयरी तथा पशुपालन सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। ऑकलैंड में सामुदायिक कार्यक्रम में भारतीय मूल के 10,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। श्री मोदी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड का भविष्य आपस में जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय व्यापार समझौता भारत की विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा को गति प्रदान करेगा।
1: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
0: केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके कल प्रदेश दौरे पर रहे। श्री उइके ने उदयपुर में केंद्र सरकार की जनजातीय कल्याण के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की हर योजना का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मॉनिटरिंग पर विशेष बल दिया। बैठक में जनजाति क्षेत्र विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल कोटा के चंबल गार्डन और किशोरपुरा मुक्तिधाम के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बिरला ने कहा कि कोटा के समग्र विकास को तेजी से धरातल पर साकार हो रहा है। आने वाले सालों में कोटा शिक्षा के साथ साथ खेल, स्वास्थ्य, पर्यटन, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में देश के अग्रणी शहरों में विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि कोटा का अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त चंबल गार्डन पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनेगा।
2: आने वाले समय के अंदर ये आधुनिक से बना हुआ चंबल गार्डन भी राजस्थान और देश का सबसे प्रमुख गार्डन होगा जो चंबल के किनारे होगा। ये गार्डन निश्चित रूप से पर्यटन का महत्वपूर्ण केंद्र होगा, क्योंकि गार्डन तो बहुत हो सकते हैं लेकिन चंबल का किनारा नहीं हो सकता। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र राजस्थान और देश का प्रमुख शहर बने, इस सारे देश की समृद्धि खुशहाली का आधार होगा।
0: प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी। उन्होंने बताया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। परीक्षा के सफल संचालन और शिकायतों के जल्द निस्तारण के लिए सभी जिलों में जिला स्तरीय परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी होने के बाद अधिकांश हिस्सों से बादल छंटने लगे हैं और बारिश की गतिविधियां सीमित हो गई हैं। साथ ही पारे में भी उछाल देखा गया है। श्रीगंगानगर 41.7 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। इसके अलावा फलोदी और जैसलमेर में दिन का पारा 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड हुआ। इस बीच एक हफ्ते से बारिश नहीं होने के कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं। बाड़मेर में आज तीसरे दिन भी धूल भरी आंधी चल रही है। दिन रात

0: साथ लगातार आंधी चलने से अंकुरित हो रही खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 15 जुलाई से मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। आज हनुमानगढ़ जिले का 32वां स्थापना दिवस है। तीन दिनों से मनाया जा रहा पंच गौरव भटनेर उत्सव का आज समापन होगा। इसके तहत कल जिले भर में ब्लॉक स्तरीय क्विज प्रतियोगिता, खेलकूद, चित्रकला, मानव श्रृंखला और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: आज से 32 वर्ष पूर्व 12 जुलाई 1994 को श्री गंगानगर जिले से अलग होकर हनुमानगढ़ राजस्थान का 25वां जिला बना था। स्थापना दिवस पर आयोजित तीन दिवसीय पंच गौरव भटनेर उत्सव का समापन रन फॉर हनुमानगढ़ शोभा यात्रा और राजीव गांधी स्टेडियम में सुरमई संध्या स्टार नाइट के साथ होगा। मैना देवी, आकाशवाणी समाचार, हनुमानगढ़।
0: प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि पहली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। जोधपुर में आज से 17वां अंतर्राष्ट्रीय रंग मल्हार कार्यक्रम शुरू हुआ। वीर दुर्गादास राठौर स्मृति समिति के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष डॉ. महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि मसूरिया पहाड़ी पर स्थित वीर दुर्गादास राठौर स्मारक स्थल पर ये कार्यक्रम मारवाड़ में अच्छी बारिश, सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना के उद्देश्य से किया जा रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल आज से शुरू। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। प्रदेश में आज से आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का आयोजन। 18 जुलाई तक दो दो पारियों में ली जाएगी परीक्षा। प्रदेश में मॉनसून कमजोर पड़ा। अधिकांश हिस्सों से बादल छंटने से तापमान में मामूली बढ़ोतरी। और हनुमानगढ़ जिला आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे की 9:10 हुए हैं। आइए कार्यक्रम सुने प्रकृति की चर्चा आकाशवाणी के साथ।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे साथ आज विशेष मेहमान हैं आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही हम कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम आपसे जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल कंजम्पशन, अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सकें, जो हमारे श्रोता दर्शक सभी समझ पाएं, क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसके पीछे की मूल सोच क्या है?
4: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूं। मैं जी, है ना, कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो

0: क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेज़ी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहाँ वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी और हमारी वेलबींग इम्प्रूव होगी, हमारे एक्शंस इम्प्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे।
1: जी
0: तो इसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहाँ पॉसिबल हो वहाँ एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहाँ उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज़ को रेगुलेट करें।
1: जी
0: और ये एफर्टलेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है कि एक सरल जीवन, और सरल जीवन जहाँ आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
1: सो आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही
0: बिल्कुल
1: आपका जो है धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, क्या ऐसा है माइंडलेस कंजम्पशन, क्या चीज़ है जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाएं कि इसमें क्या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
0: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें, तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं,
1: जी
0: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज़ को एकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी ज़रूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे, जैसा मैंने बोला, फूड, फैशन, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज़ को ही हम लोग कहने को करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
1: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
0: बिल्कुल
1: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
0: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी ज़रूरत है, कब वो ज़रूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज़ आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में हैं, कि वांट का कहीं ना कहीं वो ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज़ मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या हैं, मेरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज़ एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं मैम। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं 1x से 3x तक पहुंचा। तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है, कि वो उस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी कि मैंने उतना आगे बढ़ा, 1 से 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज़ के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान 5x पे है, तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं, उस भड़ास को दबाने के लिए। किसी का वो भड़ास खाने पे निकलता है, वो फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं 1 से 5x पहुँच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे

0: शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम्हारी, तुम 6 फिगर सैलरी कमा रहे हो तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वैकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूँ बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर।
1: जी
0: और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइज़ की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।

0: स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
1: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है,
0: बिल्कुल
1: आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है। जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
0: तो कोई भी चीज़ जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज़ होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ। उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज़ का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज़ का इमिशन हो रहा है तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीज़ें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहाँ जहाँ हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए। तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं। तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम इंटू 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाएंगे। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज़ हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं। तो जहाँ जहाँ हम लोग कंफर्टेबल हैं वहाँ अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ,
0: बिल्कुल
1: लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट,
0: बिल्कुल
1: तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था, जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम जो पर्यावरण है, हमारा जो भी वातावरण है, उस को हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज़ करूंगा। 5R जो हमने सुना है ना, 3R, 5R, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी ध्येय है कि अपने लाइफस्टाइल को इन्वायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता है ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो हमें इमिडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज़ नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीज़ें हो, जो भी चीज़ एनिमल से आ रही हैं, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रैवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रैवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज़ करें। तो आमतौर पे हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक, 4 प्लास्टिक यूज़ हो जाता है। तो सिर्फ एक बैग यूज़ करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम।
1: सो
0: तो
1: रीयूज का,
0: रीयूज,
1: रिसाइकल, ये
0: रिसाइकिल,
1: भी
0: हाँ।
1: जी जरूरी है।
0: तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को

0: यूज़ करने का बहुत फैशन चला है, तो
1: हम्म,
0: टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से, जो हमारे घरों में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है, लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई है कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, क्योंकि होता है ना, हमारे टाइम का वैल्यू बहुत बढ़ गया है। तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने, फिर वापस लेने आऊँगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूँगा। लेकिन अगेन, उसका रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज़ का। अगर इन्वायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहाँ जहाँ पॉसिबल हो रिपेयर कराएं, और इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा है उसको रिसाइकिलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफ़ी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: गंभीरता से देखते हैं,
0: बिल्कुल
1: और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे, तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा। तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं, जो युवा हैं उनको इस दिशा में ले जाने की ओर।
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट, जहाँ पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है, जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर की जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है, तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियाँ हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज़ हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना ज़रूरी है, अपनों के लिए समय निकालना ज़रूरी है, सेहत पे ध्यान देना ज़रूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें 4 चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा, कम नहीं होगा।
1: जी
0: तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही बस थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज़ किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज़ एन एविल और अ ब्लेसिंग।
1: जी
0: तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और सादगी को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: तो आप क्या कुछ कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते
0: बिल्कुल
1: हैं ज़रूरत के अनुसार, तो किस तरह का फ़ायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जाम्पल्स देके?
0: बिल्कुल। आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की ज़रूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज़ पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफ़ी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए हैं, कोई नई चीज़ नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बट उसको बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशन से एक्शन की जर्नी है बहुत इजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं, उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज़ किए, यूज़ किए, धोए, यूज़ किए, धोए, और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफ स्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं?
1: सो आशीष जी, एक

0: जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
1: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहाँ पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की ज़िंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफ़ा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
0: कुछ अगर आप एग्जांपल दे
1: हाँ,
0: सकें।
1: जैसे मेरे कपड़े हुए,
0: अच्छा,
1: मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा
0: ओके,
1: सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रैवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ। तो जो चीज़ अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूँगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ ज़िंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिब्रेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज़ कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़, अगर अगेन 33 इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो
0: ओके,
1: जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीज़ें या 50-55 चीज़ें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है। तो वो एक जो फ्रीडम है, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है उस पर फोकस कर सकें। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो दो तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रॉसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी।
0: जी
1: और उससे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज फूड। उसको कहीं ना कहीं कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो वन टाइम प्लास्टिक, वन टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है, उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाएँ तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें। तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
0: जी बिल्कुल। तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल
1: हाँ,
0: कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एक एवरेज, एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
1: तो इसमें दो तीन प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं, या शॉपिंग करने का, या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं। तो जैसे क्या हमें इसकी ज़रूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूँ तो क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। तो जो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वॉन्ट है। तो एक बार नीड वर्सेस वॉन्ट की चीज़ हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वॉन्ट है। और फिर नीड है कि वॉन्ट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा। तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज़ टली, तो 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
0: जी, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वॉन्ट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह
1: बिल्कुल
0: रहे हैं, उनके पास कोई चीज़ है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वॉन्ट
1: बिल्कुल
0: के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते
1: बिल्कुल
0: हैं, तो उससे हमें बचना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना। देर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पायरल है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया X से 3X और 5X की बात, वो वही चीज़ है। तो हमें देखना है कि हम

0: हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही होता है ना, हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग।
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे, और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीज़ों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज़ का या अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल,
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट हैं उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ही बहुत ज़्यादा लोनलीनेस है, वहाँ के बच्चों में बहुत ज़्यादा एंगजाइटी है, डिप्रेशन है। तो हमें, हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड। तो हमारी जो अच्छी चीज़ें हैं उसको बना कर वेस्ट की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की ज़रूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या हैं मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंडफुल और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा, बोला
1: जी
0: जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना, साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शंस लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रैवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे, तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज़ को बताना, कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज़ में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज़ अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना ज़रूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज़ से शुरुआत करते हैं और वो चीज़ भी आपको डिसाइड करनी है। तो देर इज़ नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी
0: कि वो सैकड़ों चीज़ें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहाँ वो किस चीज़ को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हर एक के लिए लागू है? कोई सरल दो तीन ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहाँ जहाँ अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज़ कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कार पूल कर लें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रैवल। तो 12 एयर ट्रैवल करने से कम करके, अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया, तो एयर ट्रैवल का बहुत ज़्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है। वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हों, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तानी करीब 3 घंटे रोज़ सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है, काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा एमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की, तो उसका बहुत बड़ा एमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स, 2,000 रहेंगे, 5,000 रहेंगे, 10,000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब

0: आप खोलती हैं वहाँ 100 दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं, उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो
1: जी
0: जो भी पहलू है हमारी ज़िंदगी का, किसी भी चीज़ को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं, तो किसी भी चीज़ को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रैवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और
0: हाँ,
1: एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर हैं, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है, वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं। तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशंस बहुत है। 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज़ की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो एमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन एमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज़ की,
1: जी
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या एमिशन हुआ वो
1: ओके
0: मेजर
1: ओके
0: होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज़ किया एग्जाम्पल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा, तो 5 साढ़े 5 किलो एमिशंस हमने कम किए। तो जहाँ पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो, वो करने की ज़रूरत है। और वो ज़रूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का, चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है
0: बिल्कुल,
1: कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें, मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, 17 गोल 2030 तक के लिए जो है। तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13, सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज़ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र, मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज़ को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। कंपनीज़ में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो इन्वायरमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई
1: मतलब
0: इन्वायरमेंट एस सोशल एंड जी इज़ गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइंड होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनीज पे फोकस करे कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सकें। सेम चीज़ अगर कॉलेजेस की बात की जाए, तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होते हैं ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, A+ है, B है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज़्यादा खुश हों, डी क्लटरिंग जैसा आप कह रहे
0: बिल्कुल,
1: हैं कि जब डी क्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज़ ज़रूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर
0: बिल्कुल,
1: सकते हैं। तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो एक बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में।
0: तो इम्पॉर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज़ को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज़ को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा, तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिज़ायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है। इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की ज़रूरत है। किस मायने में कर सकते हैं? तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर

0: जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी एक्स वाई जेड का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को में पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है, उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा। किसी को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की। तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है, और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की ज़रूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कंपोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हम लोग बदलाव चाहते हैं, लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरत है।
1: आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज़ बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज़ ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज़ बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो हैं, वो बहुत ज़्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है ज़िंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिज़ायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहाँ 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहाँ 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश की है कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी, उसका निचोड़ यही निकला कि प्रोसेस, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज़ है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे, और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और उस पर फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहाँ पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया, कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहाँ से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुँचानी है।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
3: प्रकृति की चर्चा आकाशवाणी के साथ, एपिसोड 9 आप अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। आइए सुने फिल्म संगीत।

0: तीनों कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: श्रोता मंत्राल से पहले गीत आपने सुना फिल्म का नाम दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे

और इसे गाया था लता मंगेशकर, उदित नायर ने, गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीत जतिन ललित का था। आइए अब सुने अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में फिल्म कुछ कुछ होता है का ये गीत आप सुने। इसकी धुन तैयार की है समीर ने और संगीत जतिन ललित का है।

श्रोताओं, गीत आपने सुना दिल फिल्म से हमने लिया था अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में। इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सवेरे के 10 बजे हैं। आइए कार्यक्रम सुने सदाबहार नगमे।

सतावन नगमे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भगवान सिंह का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और ये संदेश हम तक पहुँचे हैं कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, निधि, निखिल वर्मा, ग्राम पंचायत बठेना, पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से ये संदेश हम तक पहुंचा है। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम, विशाल, दिशानी और निमित आहूजा,

मोहम्मद कलीम अंसारी जाहिरा, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान, गंज डुंडावरा से ये संदेश हम तक पहुंचा है। अलीका तहसील डब्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी सोनू रजनी, धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी, नौशाद बेबी, आयान बाबू, रामलाल चंद्रवंशी, श्रीमती कृष्णा चंद्रवंशी, काजल दीपी, दिलीप कुमार, मध्य प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है। पाकुड़ झारखंड से संदेश है उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशु अर्णव और सत्यम, विरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावेश, सन्नी भावसार, कृष्णा विहार कॉलोनी नहर से मधुबाला, राकेश और प्रांचल, एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आर्व खुराना और एस के पप्पी। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: किसे?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए, अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: स्वागत है अंतराल के बाद आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में, और ये संदेश हम तक पहुंचा है दुर्गा प्रसाद सैनी, अनीता सैनी, गौरव सैनी, शनि मंदिर चौक खंडवा से ही संदेश हम तक पहुंचा है। रानी झाम बिट्टू रानी बाजार बीकानेर से संदेश है, और मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से ये संदेश है मोहम्मद जाकिर, कमरून, सबिस्ता पलक और यश मंसूरी। भोपालगंज राजस्थान से धर्मेंद्र, छीपा, कपिल, ईशान, पूजा परिहार। सबलपुर काकेर से फागुराम, ज्योति, ओजस्वी यादव। नौहर जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज, हिमांशु, पवन, शंकर बिहारी, शिव कुमार, सोनू मिस्त्री, महेंद्र कुमार, कालू मिस्त्री और मोहनलाल सुथार, महावीर मिस्त्री। और हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम MP से संदेश है जगदीश धाकड़, श्रीमती रंजू बाई धाकड़, युवराज सिंह, शिवांगी धाकड़, PS नभाकर, निर्मला, विशाल। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से संदेश हम तक पहुंचा है, और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, नीति शाह, मंगला बैन, राजेंद्र जी शाह। पद्मा टाकिस से नेपा नगर मध्य प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है। विजय सुरलकर, रतन माला और कुमकुम मोताला महाराष्ट्र से संदेश है। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, राजू प्रजापत। गांव न्योला रामपुरा से सुरेंद्र ढीडण, सकीला, संदीप, अनवर, अंकु। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन जांगड़ा, राजबाला, कार्तिक और वेदांश जांगड़ा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म आराधना का ये गीत मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में।
8: तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ, जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच सच देना। डन
9: डन

डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: साधु शर्सी, रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मोहम्मद यासीन, नज़मा, तौसीफ़, तैमूर और मोहम्मद कलीम। और ये संदेश हम तक पहुंचा है आरायन डॉक्टर बनवारीलाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम जयपाल, पूनम चालिया, गांव फरासी, जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, सौरभ डूडी, नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से ये संदेश है रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हजारीलाल पुरोहित, मोनी पारिक, भूपेंद्र पारिक, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब। और ये संदेश हम तक पहुँचा है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगी शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और सायना शर्मा, समर्थ रेडियो रेजिडेंसी रोड जिला।

सोलापुर महाराष्ट्र से संदेश है, गणेश लौढ़े, आम्रपाली आरव और बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या निवेश और नियति कुमारी। और ये संदेश हम तक पहुंचा है मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशीष शिवन्या, अन्नू उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। और सांगली ज़िले के सतशहर से अल्ताफ सैफुल्लाह, तबाहत किरत और रिहान शेख का। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गीत। आशा भोसले की आवाज़ में गीतकार गुलजार हैं और संगीत खय्याम का है।

अलीगढ़ डवाली से बसंत सिंह चंद, कुलदीप गांधी, राजकुमार सुनीता, उदयपुर राजस्थान से रमेश नाचानी, भारती विनीत, मिथिल बाबूभाई चांदीवाला, बीड शहर महाराष्ट्र से ये संदेश नंद किशोर घटे, संगीता साक्षी, जयश्री मैत्री, अंजलि बाला साहेब, रामनिवास धनंजय, टवल पीबी कुल थे। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह, कृष्ण मुकेश, रामचंद्र, कपिल देव, कांता चौधरी। फवारा चौक वार्ड नंबर 6 सिरसला जिला चूरू राजस्थान से संदेश संदीप सिंह सोनगरा, प्राची सोमल, कार्तिक सोनगरा और श्यामलाल राजपाल, संदीप जयपाल, चिमनलाल मंडी, केसरी सिंहपुर से संदेश हम तक पहुंचा है। सिद्धार्थनगर दरियापुर भाबली से संदेश गजानन याले, नवदीप विश्वदीप।

अशोक। बिल्लू सू, सुनीता, आशीष, चांदनी, विश्वजीत, कीर्ति सिंहपुर से ये संदेश हम तक पहुंचा है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साबिर राही, महराज जहां, आज़ाद नगर लक्सर, हरिद्वार से संदेश हम तक पहुंचा है। गांव खारिया, जिला सिरसा, हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु, बलदेव कटारिया। बठिंडा रोड, मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग। गांव ढाणी, लाल खां, जावेद खां, अरमान खां, इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खान। गांव कलाना, भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, लीलाधर, केडू राम जोया, किशन मायल, कुंदन जाखड़, हनुमान सारण। और मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर, उमंग आकाश, माही। जिला किशनगंज, बिहार से संदेश हम तक पहुंचा है रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता, लाली श्रीवास्तव, आशा, राधिका श्रीवास्तव, भोपाल मध्य प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है। गोविंदपुर सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद में, का ये गीत आप सुने मुकेश की आवाज़ में, और इसकी धुन तैयार की आनंद बख्शी ने, और संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

गांव घुमड़िया सूरतगढ़ से ये संदेश है जगदीश ढुकिया, प्रमिला, ज्योति, सरिता, अमना, साइना और दोती युवा धारणीय। गांव 5M डी पत्रोड़ा अनूपगढ़ से संदेश है मंगल जनागल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल। और केसी सिंहपुर से ये संदेश है राजकुमार ठठई, कमल मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशी राम महेंद्र, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल, ताराचंद दायमा। और ये संदेश हम तक पहुंचा है ऊपर कोट मोहल्ला चौकुंठी बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निघत परवीन, सहनाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आबान और अब्बासी परिवार। और दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति, शिवांश वर्मा, ग्राम पिपलोड, सरगांव छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। हीरामाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गुतारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवन रिणवा, हंसराज भाटिया, मणिराम रणजीत राम, किरोड़ी लाल, सुरेंद्र भादु। और समतानगर काष्ठी से लक्ष्मण जी, जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी, निशांत। मालगुड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायडे, विजय तायडे, वसंतराव, सुनंदा, निदेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनम, पूनाराम देवांगन, कृष्ण देवांगन। पलारी छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, विशाल, रोशनी, बेबी, प्रियंशी। गांव जोगीवाला श्री गंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका, मनीष सहारण। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत और स्वीटी छाबड़ा। सैयद मसहूर, शायना, अक्सा, नाजिया, इब्राहिम, अदीब। सहारनपुर से संदेश हम तक पहुंचा है। और सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, चंडीगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका गव्या, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनोदपुरी। चक 15 PS से सरबजीत सिंह जोसन, सरबजीत कौर जोसन, गुरमन सिंह, आदर्श पाल, रॉबिन सिंह, अमरवीर सिंह, इंद्रजीत सिंह। बोरखेड़ा पितृमाल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से संदेश है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुणत, चेतना दीक्षा और कुश मुणत, कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसन दीप, गांव 4M से। और कालनोर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। नयेवाला जिला हनुमानगढ़ से वीद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म हम किसी से कम नहीं का ये गीत आप सुने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। और इसकी धुन तैयार की है मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत है R.D. बर्मन का। आइए सुने ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं सदाभा नगमे कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से, और हम सब संदेशम तक पहुंचा है गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सैन सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी का, और गांव बांडीवाला फाजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया, यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह, अविरल सिंह, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है, कवाई सालापुरा जिला 12 से संदेश रा सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हनी, हिमानी, हर्षिता, अभिषेक, और दुर्गाकोली हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू, कंवर कॉलोनी बड़वाहा खरगोन एमपी से संदेश है ये प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र नोखेलाल वर्मा, दतरंगी भांडापरा छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचा है, हनुमान टाउन से रजाक मोहम्मद, शमीम, इमरान, जीशान, मास्टर अशोक शर्मा वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र, जिला खारगोन सनावद मध्य प्रदेश से संदेश हम तक पहुंचा है, और

ये संदेश तो पहुंचा है सोनू, सुरेश, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, बलबीर सिंह, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से ये संदेश हम तक पहुंचा। गांव खोखरावाली, विनोद खोखरावाली से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी, शगुन, आफ्ताब अंसारी, रियाज, मोहम्मद अनवर, लुबाना, आलिया और लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित गोस्वामी। आइए अब सबकी पसंद पर सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म मेरे जीवन साथी, फिल्म का एक गीत आप सुने, और इसके गीतकार हैं मधुर सुल्तानपनी और संगीत है आर डी बर्मन का। आइए सुने ये गीत।

नौहर जिला हनुमानगढ़ से संदेशम तक पहुंचा है नरेंद्र, सुथार, मनोज, हिमांशु, शंकर बिहारी, महेंद्र सुथार, कालो मिस्त्री और फिफाना नौहर से जय सिंह धामू, धर्मेंद्र सुथार, मदन सुथार, गांव थाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, गगन, सोनी, सीता और गीता, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, शायना निवान शर्मा, छबड़ा गुगोर से नूर बानो, सलमा बानो और सिमरन,

शिवाजी चौक राजिम छत्तीसगढ़ से संदेश हम तक पहुंचे अनिल कुमार, अंजू लता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार, रोशन कुमार, बंसीला रेखा देवी, स्वीता, सुरुचि दिशा और लबी श्रीवास्तव। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म आया सावन झूम के का यह गीत आप सुने लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में।

गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर से संदेश हम तक पत्र हम तक पहुंचा है। शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित और हेमंत, गांव कैरो से ये पत्र हम तक पहुंचा है। गुरदर्शन लाल चलोत्रा, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप और अनहद। श्री गंगानगर से बजरंगलाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा, नरेश कुमार शर्मा। गांव शेरगढ़ मलोट से शिवराज सिंह, हरप्रीत, मेवा सिंह, बलराज राम, काल्पा। आइए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं फिल्म कभी कभी का यह गीत मुकेश की आवाज़ में, और गीतकार हैं साहिर, संगीत है खय्याम का।

डब्वाली हरियाणा से ये संदीप पत्र हम तक पहुंचा है। जेके बुकालिया, श्रीमती सुनीता बुकालिया, संजय अनिल, मीनू बुकालिया, नई आबादी अबोर पंजाब से डिंपल सोनी, संतोष, राखी, कोमल, सिद्धि सोनी, साधु सैर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, रेलवे कॉलोनी बठिंडा से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक और शोभा नायक। आप सबकी पसंद पर आइए सुनते हैं नील कमल फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, अभी आप सदाबहार नगमे सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम के साथ हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत गीत से।

श्रोताओं, अभी आपने जांबाज फिल्म में किशोर कुमार और सपना को सुना। गीत के बोल इंदीवर के थे और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

शबीर कुमार को भी आपने सुना। फिल्म का नाम था प्यार झुकता नहीं। गीत के बोल SH बिहारी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में नाम फिल्म का ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था बेटा। गीत के बोल दिलीप ताहिर के थे और संगीत दिलीप सेन और समीर सेन का।

लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की आवाज़ में नागिन फिल्म का गीत। गीत की रचना वर्मा मलिक की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मोहम्मद अजीज़ और सारिका कपूर की आवाज़ों में अभी आपने 20 साल बाद फिल्म का गीत सुना। गीत की रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

आप सुन रहे थे मोहम्मद अजीज़ और लता मंगेशकर को। फिल्म का नाम था राम अवतार। गीत की रचना आनंद बख्शी की थी और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर को अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। गीत की रचना हसरत जयपुरी की थी और संगीत रविंद्र जैन का। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से। तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

अभी आपने ये लता मंगेशकर को सुना, फिल्म का नाम था फकीरा। और लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाज़ों में आग और शोला फिल्म का ये गीत। गीत की रचना आनंद बख्शी की और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत। सुगम संगीत का समय रहेगा 12:30 पर। खेत खलियान कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:50 पर।

बहनें अपना कार्यक्रम महिला जगत सुनेंगी 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगी बुजुर्गों का अकेलापन, हमारी बदलती लाइफस्टाइल और बच्चों की सेहत, कार्यस्थल पर महिलाओं की चुनौतियां, उत्तर प्रदेश के खास व्यंजन।

फिल्म संगीत आप सुनेंगे दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप शाम की सभा में सुनेंगे 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे जीवन में सत्य का महत्व, भारत की मुख्य नदियाँ, वायु प्रदूषण से नुकसान और बचाव, वृक्षारोपण और आज का इतिहास।

सरायकीगांव समय रहेगा 6:05 पर। जिले की चिट्ठी कार्यक्रम आप हमारे जयपुर केंद्र से सुनेंगे 6:40 पर। चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00। इसमें आज आप सुनेंगे पशुओं के लिए उजाला, तोरी की उन्नत खेती, पशुओं का परजीवी से बचाव, मौसम और बाजार भाव।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ मैं लक्ष्मी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कुछ लोग उम्र से नहीं अपने कर्मों से जीते हैं, कुछ चेहरे वक्त की धूल में भी चमकते रहते हैं, जिनकी मुस्कान में अपनापन और अभिनय में सच्चाई हो, वे कलाकार नहीं युगों की अमानत बन जाते हैं। आज का ये विशेष अंक समर्पित है हिंदी सिनेमा के उस अभिनेता को जिनकी फिल्मों ने सफलता के ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए कि पूरा फिल्म जगत उन्हें जुबली कुमार कहकर पुकारने लगा। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रहे हैं महान अभिनेता राजेंद्र कुमार को। राजेंद्र कुमार केवल एक सफल अभिनेता नहीं थे, बल्कि वे भारतीय सिनेमा में संवेदनशील अभिनय की एक सशक्त पहचान थे। उनके चेहरे की मासूमियत, संवादों की सहजता, भावनाओं की गहराई और अभिनय की गरिमा ने उन्हें लाखों दर्शकों का चहेता बना दिया। 60 और 70 के दशक में उनकी लगातार सफल फिल्मों ने इतिहास रचा। मेरे महबूब, आरजू, सूरज, झुक गया आसमां, संगम, गूंज उठी शहनाई, दिल एक मंदिर, आई मिलन की बेला, राजकुमार, धरती, अनजाना जैसी फिल्मों ने उन्हें अमर बना दिया। राजेंद्र कुमार ने प्रेम, त्याग, संवेदना और भारतीय संस्कारों से जुड़े पात्रों को जिस आत्मीयता से निभाया, वो आज भी अभिनय की पाठशाला माना जाता है। तो आइए इस संगीत में श्रद्धांजलि की शुरुआत करते हैं। इस गीत से मोहम्मद रफ़ी की दिव्य आवाज़, हसर जयपुरी के भावपूर्ण शब्द और शंकर जयकिशन का अनुपम संगीत जिसने इस गीत को अमर बना दिया।

साथियों, राजेंद्र कुमार की ये विशेषता थी कि वे हर गीत में अभिनय नहीं करते थे, बल्कि गीत के भावों को जीते थे। उनकी आंखें भी संवाद करती थी। तो सुनते हैं झुक गया आसमां फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, राजेंद्र कुमार की संजीदा अदायगी एक ऐसा वातावरण रची थी जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। तो सुनते हैं गीत फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

साथियों, राजेंद्र कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने कभी अभिनय को बनावटी नहीं बनने दिया। वे जितने बड़े सितारे थे उतने ही सरल इंसान भी थे। तो सुनते हैं अनजाना फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

साथियों, नाम मिटते नहीं इतिहास के पन्नों से, जिनकी पहचान दिलों में बस जाती है। कलाकार भले ही दुनिया से विदा हो जाएं, उनकी कला अमर कहानी बन जाती है। इसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। लक्ष्मी को दी इजाज़त।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज आप सुनेंगे गजल गायक पंकज उदास को।

टिकाऊ व्यवस्था के सागे सागे पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने खातर उर्वरकों को कुशल प्रबंधन बहुत ज्यादा जरूरी है। फसलों की अच्छी बढ़वार और पैदावार के लिए अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत पड़े। मृदा में पोषक तत्वों की कमी होने पर उर्वरकाशुं आंगी आपूर्ति जकी है बापा कृषका। भाई लोगो, उर्वरक जगह है भी बहुत महंगा आदान मानी जाए, इन वास्ते आंगो जो को उपयोग है वो बड़ी कुशलता पूर्वक करना जरूरी है, क्योंकि उर्वरकों के उपयोग को पूरा लाभ जद ही मिल सके जद आने जरूरत के हिसाब से संतुलित और सही ढंग से अंगो प्रयोग करा। खेत से अधिक उपज लेने खातर उर्वरकों को संतुलन इस प्रकार करा कि फसल की मांग और जरूरत के हिसाब से जका जरूरी पोषक तत्व है भी उपलब्ध होता रहे और माटी को जो स्वास्थ्य है वो भी सुरक्षित बनो रहे। अब मौके पर देखा तो फसल और भूमि की जरूरतों के हिसाब से उर्वरक और जल को समुचित स्तर बनाए रखने के लिए फर्टिगेशन एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण प्रणाली है। बात करना फर्टिगेशन के बारे में तो फर्टिगेशन एक ऐसी प्रणाली है जका मा उर्वरकों ने सिंचाई जल में मिश्रित करके सीधी पौधों की जड़ा तक पुगायो जाए। भाई लोगों, फर्टिगेशन से उर्वरकों की कम मात्रा में जल्दी से जल्दी कम और कम अंतराल पर पहला से नियोजित सिंचाई के साथ अपन देश का इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलता रहे और मूल्यवान जका उर्वरक है बंगो दोहन भी बहुत कम हुए। फर्टिगेशन के माध्यम से जल और पोषक तत्वों को सही समन्वय रख के फसलों की अच्छी पैदावार और गुणवत्ता सुनिश्चित कर सका। इस पौधा ने जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिल जाए और मूल्यवान जका उर्वरक है ज्यादा महंगा जका उर्वरक है बंगो दोहन भी बहुत कम हुए। उत्पादन में वृद्धि खातर गुणवत्ता युक्त फसल अपा लेस का इंगा माध्यम से और इंग इस्तेमाल से छिड़काव विधि की तुलना में श्रम भी बहुत ज्यादा कम हुए। फर्टिगेशन में उर्वरकों का जो उपयोग है वो लगभग तरल रूप में ही करो जाए, पण शुष्क और दानेदार जका उर्वरक है बंगो प्रयोग फर्टिगेशन का मां भी करो जा सके। इमें शुष्क और दानेदार उर्वरकों को इस्तेमाल करने से पहला पानी में घोल बना के और फिर अपा इन काम में ले सका। उर्वरकों के घोल ने फर्टिगेशन से पहला छानना जरूरी है, ये बात को पूरा ध्यान रखना है। और बूंद बूंद सिंचाई तंत्र का मां भी उर्वरक ने अपा अच्छी तरह छान गए और बिने काम में ले सका। अब इनका कई तरह का जगह फर्टिगेशन का फायदा है बे थन बता दूं। इशू एक तो पौधा ने जरूरत के हिसाब से उर्वरक और पानी की जी सही मात्रा है वह मिल जाए। जमीन के अंदर जो को प्रदूषण है वो भी बहुत कम हुआ है फर्टिगेशन की वजह से और फसल ने जरूरत के हिसाब से ही पोषक तत्व जगह है व्यापार निर्धारित करके देश का। भाई लोगों, फसल की वृद्धि और उच्च गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी आप इशू प्राप्त कर सका। फर्टिगेशन का और भी कई फायदा है जहाँ उर्वरक और पानी सीधा पौधे की जड़ा तक पहुंचा सका। घुलनशील उर्वरक और रसायनों का समुचित प्रयोग इंग वजह से हुआ है। मिट्टी का अलग अलग उर्वरकों की सहचलता के हिसाब से उर्वरकों ने खेत में अपा नाक सका। भाई लोगों, फर्टिगेशन उर्वरक देने की जी सुरक्षित विधि है, इस पौधों की जड़ा ने की भी तरह की कोई हानि को नहीं हुई। इनके अलावा फर्टिगेशन के द्वारा जी ड्रिप सिंचाई करके आप बंजर भूमि है बिना उपजाऊ बना सका और अच्छी फसल प्राप्त कर सका। अलग अलग उर्वरकों ने अलग अलग मात्रा में अपने निर्धारित करके और बिंग हिसाब से भूमि में नाक सका। इनके अलावा और भी कई फायदा है जहाँ पौधा ने सही मात्रा में पानी मिल सके और इनके सागे पानी जो है वो भूमि में चारों ओर इन्हें बिना खिंडा कोनी।

0: भीतरियांग जगह खरपतवार है बेबी पैदा कोनी होनी। जीशु के पौधा ने पोषक तत्वों की भीतरियांग कोई कमी जी की हवा कोनी रहनी। अब बात करा फर्टिगेशन का, माँ कई सावधानियां रखनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जी हाँ, उर्वरका ने मिलाता टेम बंगी संगति के हिसाब से ही बंगू मिश्रण जो है वो आपने तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सावधानी ना रखेंगे तो बिना कई फायदा जका होने के बजाय अपने नुकसान भी हो सके। तो इस वास्ते जब भी आप उर्वरक जका मिलावा तो बंगी संगति जकी है, बंगी किस्म जकी है, बिंगू अपन पूरा ध्यान रखना जरूरी है, फिर ही अपन मिश्रण जो है वो तैयार करना चाहिए। इसमें क्या है कि एक तो आपस में रासायनिक क्रिया जकी है बा कोनी हुए नहीं, कई बार आप ऐसा उर्वरक आपसरी में मिला देवा जबकि जैसे रासायनिक क्रिया कर गए अरबे कोई अलग से कोई रसायन तैयार कर देवे, तो अपन ने इन बातों को पूरा ध्यान रखना है। और बढ़िया तरीके से अगर आप मिश्रण तैयार करांगा तो बीच में अपनी जो फसल है बढ़िया पैदा होगी और अपन ने ज्यादा फायदा होगा। भाई लोगों, उर्वरकांगो जो को विलय है घोल जो को है बनाने के लिए उर्वरकांगो मिश्रण पहला से अपन ने तय करना जरूरी है और बिंगो जो को अनुपात है वो सही होना जरूरी है। सल्फेट और फास्फेट युक्त जका उर्वरक है बने कैल्शियम युक्त उर्वरकांग सगा मिश्रित कदे नहीं करना चाहिए, इन बातों को पूरा ध्यान रखना है। और इन अलावा अपन धीरे धीरे जकी रासायनिक खेती है बिंगो थोड़ सो जो को तरीको है वो अब धीरे करना पड़ेगा, धीमो करना पड़ेगा। और अब जैविक खेती जकी है बापा करांगा तो बीस का आपने जो को रासायनिक तरीको है वो छूट जाएगो और आपने जो फसल है वह बढ़िया और बेहतर होगी। भाई लोगों, अब रासायनिक जो को तरीको है वो इतो ज्यादा दूषित हो गयो कि बिंग वजह से खाद्यान्न जो को पैदा कर ला रहा हाँ, जो को अन्न आपा पैदा कर ला रहा हाँ, वो भी जहरीलो हो गयो। तो अब जैविक खेती अब धीरे धीरे अपनानी शुरू कर दो, एक बार थोड़ा सो कम रकबा में आप शुरुआत कर दो, बी बाद में धीरे धीरे बिंग बढ़ोतरी आप करता रहे। बीच यूं किया कि एक तो खाद्यान्न जो है वो साफ सुथरो और शुद्ध पैदा होगा और दूसरी बात है कि बीच पर्यावरण भी नाश कोनी होनी। आप कई बार रसायन छिड़का तो अपनो रसायन जो है वो पूरा पर्यावरण ने नुकसान पुगावा है, अपने जीवन ने भी नुकसान पुगावा है और इनके अलावा माटी जी की है वह भी दूषित होने ला रही है। अब देखे करानी आप माटी के अंदर कठोरपन आने ला रहे है, माटी के अंदर कई तरह जगह सोरा है बे भी देखने मिलने ला रहा है, फसलों जी की है भी अपनी माड़ी होने ला रही है। कई बार आप इसी किस्म बीजांत कर देवा जिकी किस्म अपनी भूमि माने ही कोने नहीं, तो ये मोटा सा कारण इंगी वजह से है का आपा माटी को जो को नाश है वो बहुत ज्यादा कर दियो। माटी में पानी धारण करने की क्षमता बिल्कुल बा खत्म होगी, माटी के माँ की उर्वरा शक्ति अब भी बिल्कुल खत्म होगी। तो आपा धीरे धीरे जैविक खेती अपनावा और जैविक खेती से अपनी जो की फसल है अपनी जो की माटी है बिना भी बचाना जरूरी है, आने वाली जो की पीढ़ी है बिना भी बचाना जरूरी है। और इनके अलावा थाने बता देवा कि अब इसी बहुत सी किस्मा याद कर रखी है जबकि किस्मा अपने कम रासायनिक छिड़काव की वजह से भी बढ़िया बेहतर अपा ले सका। और इनका सगा सगा पानी बचाना भी जरूरी है क्योंकि बिना पानी थान ध्यान ही है कि जीवन है के फसल है कुछ भी कोनी बनी। तो अब पानी बचावा सा और पानी बचा के अपा अपनी जो फसल है बिंगी पैदावार बढ़ावा। और इनका सगा सगा अपन इन बात को भी ध्यान रखना है कि अब जका कीटनाशक अपा कीट नियंत्रण खातर छिड़कन ला रहा तो बे क्या है कि अब धीरे धीरे थोड़ा सा कम कर देवा और बिंग जगह को जैविक जो को नियंत्रण है वो अपना लेवा। बहुत सा ऐसा तरीका है जी हाँ, आपने नीमनाशी को प्रयोग कर सका आपा और इनके अलावा ऐसा रसायन आपा जका जैविक तरीका है बन अपना आगे तैयार कर सका जगह की वजह से ना तो कोई अपना मित्र कीट खत्म हुए, ना अपनी भूमि नाश हुए, ना पर्यावरण दूषित हुए। तो ये बातें ध्यान में रख के अपना अपनी जो भूमि भी बचानी है, अपनो खाद्यान्न है वो भी बचाना है, अपनो आने वाले जो को जीवन है वो भी बचाना है। जे अपना फसल चक्र अपना आगे अगर खेती करा तो अपनी जो भूमि की उर्वरा शक्ति अब भी कायम रहेगी और अपना की भीतरी कोई नुकसान भी कोनी हुए नहीं। और इनके अलावा भाई लोग अपना ध्यान रखना है एक बात और को कि अब पानी जो को है वो भी अपन है बचाना है और बचाना का जो तरीका है भी अपन अपनाना है, जो बूंद बूंद सिंचाई है या फिर जो कि फुहारा विधि है या फिर जो को पानी आप बरसात को इकट्ठो करेगा जी खेत का माँ को छोटो मोटो टांको बना लेवा, होदी बना लेवा, डिग्गी बना लेवा। तो बीच क्या पानी जो को अतिरिक्त अपना कन है भी पानी को आपने भंडारण करना है। और बूंद बूंद सिंचाई और फुहारा जी की विधि है इशू किया का पानी जो को है वो कम खपत हुआ है और अपनी जो फसल है बिना पूरो पूरो पानी मिल पीछे। इनका और भी कई फायदे है जहाँ एक तो खरपतवार जो को है वो भी कोनी वानी, अगर खरपतवार कम होगा तो आपने ज्यादा खेचड़ कौन करनी पड़ेगी। और जब भी अपन पानी धानी लगावा तो अपने समतलीकरण जो है वो जरूर करना चाहिए और जगह खाड़ा सू या फिर अपन बट बांध के पानी लगा ला रहे हैं तो बे साफ सुथरी होनी जरूरी है। खाड़ो जो है भीतरियां कचरो मचरो नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए, कट्ठे भी पानी जो है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। तो ये जी छोटी छोटी बातें हैं नी ये अपन पानी बचाने का माँ बड़ो सहयोग करे और अपन करना भी चाहिए। तो ये तरीका जगह है बे जरूर अपनाना है सा पनब हूँ खेत का नहीं चालू। राम राम सा राम राम।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलियान।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में श्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इस महीने की 6 से 8 तारीख तक इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा की और साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा की। अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया गए। श्री मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3rd भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। 3 देशों की यात्रा के 3rd और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के निमंत्रण पर 10 से 11 जुलाई तक ऑकलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड की ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 वर्षों में पहली यात्रा थी। आज से जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन से नियमित विमान सेवाओं का शुभारंभ हो गया है। नए टर्मिनल के संचालन के पहले दिन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पहली उड़ान के यात्री को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर शुभकामनाओं के साथ रवाना किया। इससे पहले बेंगलुरु से जोधपुर आई पहली फ्लाइट के सभी यात्रियों का राजस्थानी परंपरा के अनुसार स्वागत किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों के साथ केक काटकर उत्सव भी मनाया। मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर आने और यहां से जाने वाले प्रत्येक यात्री को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ शहर की समृद्ध संस्कृति और आत्मीयता का अनुभव होगा। ये टर्मिनल जोधपुर की नई पहचान और बढ़ती विकास यात्रा का मजबूत प्रतीक बनेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त छूट के साथ भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एकमुश्त अवसर प्रदान किया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि ये योजना 6 महीने की अवधि तक लागू रहेगी। ये योजना उन प्रतिष्ठानों पर लागू होगी जो आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। मंत्रालय के अनुसार पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। प्रदेश में आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक 2-2 पारियों में ली जाएंगी। आज पहले दिन पहली पारी में सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक परीक्षा हुई। दूसरी पारी में परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5:30 बजे तक होगी। ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य विभाग ने सेक्टर आधारित करीब 15 नई नीतियां लागू की हैं। राजस्थान टेक्सटाइल और अपेरल नीति 2025 के बेहतर क्रियान्वयन के लिए एक राज्य स्तरीय डेडिकेटेड टेक्सटाइल सेल का गठन किया।

0: गया है। साथ ही 11 जिलों के लिए जिला स्तरीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है। इसमें केंद्र सरकार द्वारा चयनित 7 चैंपियन जिले अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जोधपुर और कोटा तथा 4 एस्पिरेशनल जिले श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और चूरू शामिल हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि ये सेल राज्य में टेक्सटाइल इकाइयों को प्रोत्साहित करने, नवीनतम तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बहुआयामी प्रयास करेगी। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। कल राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हुई, लेकिन अधिकांश इलाकों में मॉनसून की गतिविधियां कमजोर रहीं। मौसम विभाग ने आज करीब 15 जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है। हालांकि किसी भी जिले के लिए बारिश का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बादलों के छटने से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में उमस और गर्मी बढ़ गई है। पिछले 24 घंटों में श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 41.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को उर्मिला का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे हम अपनी महिलाओं की, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के खास व्यंजनों की, और साथ ही साथ बात करेंगे हम अपने परिवार में रहने वाले बच्चों और बुज़ुर्गों की। तो बहनों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों की। तो हम सब ने अक्सर ये पढ़ा सुना है कि कुछ पल बैठा करो, बुज़ुर्गों के पास हर चीज़ गूगल पर नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक बात है बहनों, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि एक समझदार बुज़ुर्ग की मौत का मतलब होता है एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का जलकर राख हो जाना। जी हाँ, बिल्कुल बहनों, ये बात बिल्कुल सही है कि जो ज्ञान, जो अनुभव हमें बुज़ुर्गों से मिल सकता है वो हमें गूगल पर कभी भी नहीं मिल सकता है। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आधुनिकता और तेज आर्थिक विकास के जिस दौर में हम जी रहे हैं और जिसे हम अपनी प्रगति मान रहे हैं, उसके भीतर एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो सच्चाई घर की दीवारों के पीछे दबा दी जाती है। और ये सच्चाई है बुज़ुर्गों में बढ़ता हुआ अकेलापन और रिश्तों का टूटना। आज स्थिति ये है कि घर तो भरे हुए हैं सामान से, लेकिन मन बहुत खाली है। लोग बहुत मौजूद हैं, लेकिन रिश्तों में उपस्थिति का कहीं भी नाम नहीं है। बहनों, दिन की रोशनी में तो जैसे तैसे घर के छोटे मोटे काम करते हुए, अतीत की खिड़कियों को ताकते हुए बुज़ुर्गों का वक्त कट जाता है, और जैसे ही शाम ढलती है उदासी गहराने लगती है। कोई बात करने वाला नहीं होता, और इस अंतहीन खामोशी से घबराकर कई बुज़ुर्ग खुद को बहलाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं, और वो इस तकनीक के जरिए अपना मन तो बहला लेते हैं, लेकिन ये सब बहलावा ऊपरी तौर पर ही होता है, और असल में उनके अंदर क्या टूट रहा है इसे देखने वाला कोई भी नहीं है। वो मनोरंजन तो करते हैं, लेकिन वो मनोरंजन भी उनके अकेलेपन को कम नहीं कर पाता है। वो पड़ोस जो कभी सुरक्षा और संवाद का आधार हुआ करता था, अब वो भी कमज़ोर होने लगा है। आलिशान फ्लैट के बंद कमरों में टेलीविज़न चलता रहता है, लेकिन उन कमरों से ज़िंदगी तो कब की जा चुकी है, ऐसा अक्सर हम अखबारों में पढ़ते हैं। बहुत बार हमें पढ़ने को मिलता है कि बुज़ुर्ग माता पिता घर में अकेले हैं, और टीवी चल रहा है और माता पिता की मौत

हो चुकी है और पता तब चलता है जब उस घर से दुर्गंध फैलती है। ये स्थिति आज हमारे समाज की हो चुकी है। आज कई बुजुर्ग ऐसे भी हैं जिनके बच्चे विदेशों में बसे हैं, और ऐसे मामलों में तो ये होता है कि माता पिता के अंतिम संस्कार में भी बच्चे नहीं पहुंच पाते हैं, और फिर ये जिम्मेदारी आ जाती है पड़ोसियों पर या फिर प्रशासन पर। युवा बच्चे अपने माता पिता को ढेर सारी सुविधाएं तो देते हैं, लेकिन उनके अकेलेपन को दूर नहीं कर पाते हैं। मुश्किल तो तब होता है जब बुजुर्ग अकेले रहते हैं और उन्हें घरेलू सहायक पर निर्भर होना पड़ता है। ये स्थिति बहनों और भी भयंकर तब हो जाती है जब वही घरेलू सहायक उनके लिए असुरक्षा का कारण बन जाता है। ऐसा भी हमें बहुत बार पढ़ने, सुनने और देखने को मिलता है। ये हम बेहद अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमारे आज के समाज की सच्चाई है। बहनों, कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि माता पिता समय रहते अपनी संपत्ति को अपने बच्चों के नाम कर देते हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता है, और ज्यों ही संपत्ति बच्चों के हाथ में आती है तो स्थिति पूरी तरह से बदल जाती है। ऐसे में बुजुर्ग घर में ही उपेक्षित हो जाते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि माता-पिता को वृद्धाश्रम का सहारा भी लेना पड़ता है। बहनों, ये है हमारे समाज की बहुत ही भयंकर तस्वीर, और ये बुजुर्गों का अकेलापन, इसके लिए हम सबको मिलकर कुछ प्रयास करने ही होंगे। इस विषय पर गंभीरता से हम बातें और भी करेंगे। पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

बहनों, यदि हमारे बुजुर्ग लंबे समय तक अकेले रहते हैं तो उनमें अवसाद, नींद नहीं आना और याददाश्त की कमी, ये समस्याएं होने लगती हैं। इस अकेलेपन से बहुत सी बीमारियां होती हैं और सबसे जो गंभीर बीमारी है वो है स्मृति भ्रंश और अल्जाइमर। जब दिमाग को बातचीत करने का वातावरण नहीं मिल पाता है तो जो मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं वो मरने लगती हैं और बुज़ुर्ग छोटी छोटी बातों को भूलने लगते हैं, अपने नाम को भी भूलने लगते हैं, यहाँ तक कि अपनी बुनियादी पहचान भी भूलने लगते हैं। और ये अलगाव दवाओं से ठीक होने वाला नहीं है, ये वो बीमारी नहीं है जो दवा से ठीक हो जाए, इसे सिर्फ आत्मीयता से ही रोका जा सकता है। इसके लिए बहनों, हम कुछ छोटे से प्रयास करें तो हम अपने बुज़ुर्गों को बचा कर रख सकते हैं। यदि हमारे परिवार में कोई बुज़ुर्ग है तो हम इस बात को समझें कि उनका शरीर बूढ़ा हो चुका है और उनमें बहुत से परिवर्तन आने लगे हैं, जैसे उन्हें याद कम रहता है, गुस्सा जल्दी आने लगा है और बुढ़ापा आने पर वो ज़िद भी करने लगे हैं, और उन्हें कुछ शारीरिक रोग भी जैसे शुगर है, मोतियाबिंद, हृदय रोग, कम सुनाई देना, डिप्रेशन, नींद नहीं आना, ऐसी बहुत ही समस्याएं उनके साथ हो सकती हैं। ऐसे में हम घबराए नहीं और गुस्सा भी ना करें, और बेहतर ये होगा कि हम डॉक्टर से परामर्श लें। इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, जैसे कि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें। यदि हम उनके साथ रहते हैं तो हम जब भी घर से बाहर जा रहे हैं तो सीसीटीवी कैमरा ऑन रखें और जीपीएस ट्रैकर से उनकी हर गतिविधि पर नज़र रखें। यदि आप घर से बाहर रहते हैं यानी शहर से दूर रहते हैं तो आप उनसे हर रोज़ फ़ोन पर एक बार बात जरूर करें, इससे बुज़ुर्गों को असीम खुशी मिलती है। इसके अलावा बहनों, अगर साथ भी रहते हैं तो हर वक्त घर पर रहना हमारे लिए भी मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे में वीकेंड पर या फिर महीने में एक बार उनके साथ पिकनिक मनाने या फिर कहीं भी घर से बाहर आउटिंग पर उनके साथ जाएं। और इसके अलावा बहनों, वित्तीय मामलों पर उनकी सलाह ले लें, उन्हें एक्टिव और फिट रखें जिससे कि उनकी मानसिक सेहत बहुत अच्छी रहेगी। इसके अलावा बहनों, उन्हें किसी बात से ठेस ना पहुंचे, बस इतना ही तो हमें ध्यान रखना है। और वो जो भी कहते हैं यानी उनकी कहानियों को ध्यान से सुने, और उससे हमारा फ़ायदा ये होगा कि वो शांत रहेंगे, उन्हें गुस्सा कम आएगा और हमारा ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ेगा। और एक अच्छा काम हम ये कर सकते हैं कि हम अपने माता पिता को सोशल एक्टिविटी का हिस्सा बनाएं, उन्हें किसी क्लब का मेंबर बना दें और उन्हें उनकी उम्र के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने में उनकी मदद करें। इसके अलावा जो नई टेक्नोलॉजी है वो अपने माता पिता को सिखाएं, और इसके लिए थोड़ा सा वक्त हमें निकालना होगा, और जो छोटे छोटे काम हैं उन कामों में उनकी मदद लें और उनका पूरा सहयोग करें। बस इतने से ही प्रयास हमें करने हैं, इन प्रयासों से हमारा घर परिवार खुशी से महक उठेगा। और अब प्यारा सा गीत।

हैं बच्चे फास्ट फूड, पैक्ड फूड, स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक्स के आदी हो गए हैं। टीवी और मोबाइल के कारण बच्चे देर रात तक जागते हैं, जिससे उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है और बच्चे हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और हमेशा थका थका सा अनुभव करते हैं। उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। बहनों, बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने के कारण ही वो मानसिक तनाव से ग्रसित रहते हैं। इसी कारण उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ाई का दबाव बढ़ रहा है और सोशल मीडिया के कारण बच्चों में अकेलापन भी बहुत बड़ा है। बच्चे शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो गए हैं और जंक फूड खाने के कारण बच्चों में मोटापा भी बहुत बढ़ रहा है। बहनों, बच्चे लगातार स्क्रीन चलाते हैं, स्क्रीन देखते हैं, इससे उनकी आंखें तो कमज़ोर हो ही रही हैं, नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। स्वाभाविक है, बच्चों में थकान तो होगी ही, तो उनमें चिड़चिड़ापन भी होगा और शारीरिक रूप से वो निर्बल भी ज़रूर होंगे। इसके अलावा बहनों, आज जो खाने का तरीका बदल गया है, बच्चे बाहर का खाना खाते हैं, इसी कारण से बच्चों को पूरे पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। इसी कारण से बच्चे जल्दी जल्दी और बार बार बीमार होते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है मोबाइल और टीवी का, कि इस इन सब के चलते बच्चे हर समय घर में कैद रहते हैं, घर से बाहर नहीं निकलते हैं और उन्हें धूप नहीं मिल पाती है, जिस कारण से विटामिन डी की कमी उनके शरीर में हो जाती है, जिससे उनकी हड्डियां भी कमज़ोर हो गई हैं। बहनों, ये तो इतने सारे कारण हैं जो हमारी बदलती हुई लाइफस्टाइल के कारण बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं, हमें भी प्रभावित कर रहे हैं। बहनों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि समस्याएं हैं तो समाधान नहीं है। निश्चित रूप से समस्याएं हैं तो समाधान भी होंगे ही। इन समाधानों पर हम बात तो करेंगे, पहले सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: बिल्कुल बदल रहा है और इस बदलते लाइफस्टाइल ने बच्चों की सेहत को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। आधुनिक सुख सुविधाओं और भाग दौड़ भरी जिंदगी ने बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है। आज बढ़ते स्क्रीन टाइम ने बच्चों के जो मोबाइल और टीवी चलाने का जो समय है उसके बढ़ने से बच्चे उन पर समय अधिक बिताते हैं, जिससे बच्चों की आंखों पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसी वजह से बच्चों से खेल और खेल के मैदान छूट गए हैं और बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। खान पान में भी बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। आज बच्चे घर का खाना खाना पसंद नहीं करते हैं।

बहनों, चाहे कोई वृद्ध है या फिर बच्चा है, स्वस्थ रहना सबके लिए बेहद ज़रूरी है। और यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की जो जीवन शैली है वो स्वस्थ हो, तो हमें भी स्वस्थ जीवन शैली को अपनाना होगा। हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक रोल मॉडल बने, इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपने आप को बदलें, तभी तो हमारे बच्चे स्वस्थ जीवन शैली का पालन कर पाएंगे। हम अपना और अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित करें, और इसके लिए बच्चों को प्रतिदिन बाहर लेकर जाएं, घर से बाहर खेल के मैदान में, क्योंकि विज्ञान भी इस बात को मानता है कि बच्चों को कम से कम 60 मिनट यानी 1 घंटा शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम कुछ प्रयास करें, बच्चों को घर से बाहर पार्क में लेकर जाएं, उनके साथ खेलें, और योगा या जो भी बच्चा करना चाहता है, साइकिलिंग है, दौड़ है, जो भी बच्चा चाहता है वो बच्चे को करने दें, उसके साथ करें तो और भी बेहतर होगा। इसके अलावा बहनों, बच्चों को हम ये सिखाएं कि सिर्फ पेट भरने के लिए खाना उचित नहीं है। बच्चों को हम घर का बना हुआ खाना खिलाएं, उन्हें घर का बना खाने की आदत डालें। इसके लिए आप बच्चों का मनपसंद भोजन बनाएं, और आदत बनानी है तो देखो बहनों, हमें प्रयास तो करने ही होंगे, नई नई डिशेस भी बनानी पड़ेंगी, और इसलिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, तो खाने में विविधता तो लानी ही होगी। ये प्रयास हमारे निश्चित रूप से रंग लाएंगी। बहनों, बच्चों के साथ बैठकर खाएं, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बातों बातों में खा लेते हैं, प्यार से अगर हम खिलाते हैं तो बच्चे पेट भर खा लेते हैं। इसके अलावा इस बात का हम पूरा ध्यान रखें कि जब भी हम खाना बनाएं तो हम अपने भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, सलाद, इन सबको शामिल करें, और भोजन में या फिर खाने में सलाद के साथ साथ हम अक्सर बच्चों को जूस देते हैं, तो हम बच्चों को प्रेरित करें कि जूस की बजाय उन्हें फ्रूट खाने के लिए प्रेरित करें, जिससे कि

उनको मुझे लगता है अधिक पोषण मिल पाएगा। इसके अलावा उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करना बेहद ज़रूरी है, तो ये प्रयास हमारे ही होंगे। यदि हम अपने प्रयास करेंगे तभी तो हमारा बच्चा बीमारियों से दूर रह पाएगा, और हम अपनी और अपने बच्चे की जो दिनचर्या है उसे निश्चित कर दें और उस निश्चित दिनचर्या का पालन करें और स्वस्थ जीवन जिएं, ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है और बच्चों के लिए हम प्रेरणा बनें। और अब सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

0: कॉलेज में
1: डोंट वरी
0: फीस तो देखो
2: क्या हाल है क्या हुआ
1: फीस की टेंशन
2: राहुल का बैंक अकाउंट तो है ही
3: रास्ता क्लियर बैंक से जरूरत भर के हिसाब से स्टूडेंट एजुकेशन लोन इजीली मिलेगा और उसमें भी 4 लाख रुपए तक नो कोलैटरल वो कहाँ है मिठाई
4: आरबीआई कहता है
5: करो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
6: बहनों समय तेजी से बदल रहा है और आज महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर चल रही हैं और असल में महिलाएं पुरुषों से कहीं कहीं आगे भी निकल रही हैं बात जो भी हो ये बात बिल्कुल सच है कि कार्यस्थल पर कभी कभी महिलाओं को बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है जिससे अक्सर महिलाओं की क्षमता कमज़ोर होने लगती है क्योंकि उनकी क्षमता को लेकर एक पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं इसी कारण से

चुनौती हम महिलाओं को झेलनी पड़ती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि महिलाओं की क्षमता पर जो प्रश्न चिन्ह लगा है, जिस पूर्वाग्रह से हम ग्रसित हैं, उसी कारण से महिलाओं को महत्वपूर्ण परियोजनाओं से बाहर कर दिया जाता है। समान योग्यता और कार्य के बावजूद भी कहीं कहीं महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम वेतन भी दिया जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो महिलाएं हैं उन्हें इसलिए भी काम पर नहीं रखा जाता क्योंकि हम इस पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तरह शारीरिक श्रम नहीं कर सकती हैं और अपना पूरा समय भी नहीं दे पाती हैं क्योंकि उन्हें घर जाने की जल्दी होती है, उन्हें घर का काम भी देखना होता है, उन पर घर और परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं। तो इस पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भी महिलाओं को काम पर नहीं रखा जाता है, या कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं उनसे बाहर कर दिया जाता है, या फिर वेतन की जो चुनौती है उसको भी उन्हें झेलना पड़ता है। बहनों, इसके अलावा ये बात बिल्कुल सच है कि महिलाओं पर घर और घर से बाहर दोहरी जिम्मेदारी तो है ही, जिससे महिलाओं पर मानसिक दबाव बढ़ता है, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है और जिसका दुष्प्रभाव उनके कैरियर पर पड़ता है। और कहीं कहीं ऐसा भी देखने को मिलता है कि कार्यस्थल पर महिलाओं को अनुचित व्यवहार, भेदभाव और असुरक्षा का सामना भी करना पड़ता है। गर्भावस्था या मातृत्व अवकाश के बाद कार्यस्थल पर वापसी करने वाली महिलाओं को अक्सर कैरियर में भेदभाव या अवसर की कमी का भी सामना करना पड़ता है क्योंकि अक्सर ये मान लिया जाता है कि अब महिला में वो क्षमता नहीं है कि वो उतना काम कर सके क्योंकि उसका अधिक ध्यान अपने बच्चे में रहेगा। हो सकता है कुछ हद तक ऐसा हो जाता हो, लेकिन अगर देखा जाए तो ऐसा होता नहीं है क्योंकि महिलाएं अपना हर कार्य है पूरी क्षमता से, बखूबी से निभाती हैं अपनी हर जिम्मेदारी को और परिणाम भी बेहद अच्छे आते ही हैं। और बातें तो इस विषय पर अभी करेंगे, पहले सुनते हैं एक गीत।

बहनों, कार्यस्थल पर महिलाओं को बहुत सी चुनौतियों का सामना तो करना पड़ता है, लेकिन उनके समाधान भी हैं जिससे कि महिलाएं कार्यस्थल पर सुरक्षित महसूस करें, और उनके साथ होने वाले भेदभाव को दूर करने के लिए कई नियम भी बनाए गए हैं, जैसे कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 समान परिश्रम के लिए समान वेतन की गारंटी देता है, और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 के तहत एक निश्चित अवधि तक काम करने वाली महिलाएं गर्भावस्था के दौरान और प्रसव के बाद 26 सप्ताह तक वेतन सहित अवकाश की हकदार हैं। इसके अलावा बहनों, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए और उसके निषेध के लिए और समाधान के लिए अधिनियम 2013 और यौन उत्पीड़न की शिकायतों को रोकने के लिए उनका समाधान करने के उद्देश्य से एक ऐसा वातावरण स्थापित किया गया है जहां महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और संरक्षित महसूस

करें और वो अपने काम को बखूबी कर सकें। इसके लिए महिलाओं के अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के बारे में जागरूक होना बेहद ज़रूरी है और वो जागरूकता हमें ही बढ़ानी होगी कि सरकार द्वारा महिलाओं के साथ कार्यस्थल पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। बहनों, लैंगिक विविधता और समावेश को बढ़ावा देने के लिए कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की नियुक्ति भी की जाती है। इसके अलावा कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बहुत प्रगति हुई है और इन कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन करने के लिए और इन्हें सुनिश्चित करने के लिए एक सुरक्षित और समावेशी वातावरण बनाने के लिए सरकार अपने प्रयास कर रही है। इसके साथ साथ हम सभी का सहयोग बेहद ज़रूरी है। हम आपसी सहयोग से और आपसी समझ से एक स्वच्छ वातावरण को बढ़ावा दे सकते हैं और महिलाएं भी पुरुषों की तरह बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं और कर भी रही हैं। और हम ये देख पा रहे हैं कि समाज में तेज़ी से बदलाव आया है और पुरुषों की तरह ही महिलाएं समान वेतन भी प्राप्त कर रही हैं, कार्यक्षेत्र पर उन्हें समान अधिकार भी प्राप्त हैं और ये सब संभव हो पा रहा है हम सबके प्रयासों से, आपसी समझ से। और अब कार्यक्रम का अगला गीत।

बहनों, आपसे कार्यक्रम की शुरुआत में वादा किया था और वो वादा अब निभा रहे हैं। व्यंजनों की बात करके आपसे वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के खास व्यंजन की बात करते हैं, तो आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के खास व्यंजनों की। हम जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो भोजन है वो कृषि समृद्धि और क्षेत्रीय विविधता पर आधारित है और शुद्ध शाकाहारी समृद्ध विरासत को वो दर्शाता है। जो उत्तर प्रदेश का जो हर व्यंजन है वो पारंपरिक तरीकों से तैयार किया जाता है, बहुत पौष्टिक व्यंजन होते हैं वहाँ के, और जो वहाँ के व्यंजन हैं बहुत सरल सामग्री से भी तैयार किए जाते हैं। जो यहाँ की संस्कृति है वो रोज़मर्रा के आरामदायक भोजन, त्योहारों के विशेष व्यंजन, चावल और दाल के विविध संयोजनों का सुंदर मेल प्रस्तुत करती है। यहाँ धीमी आँच पर पकाई गई दालें हैं या फिर देसी चावल से बने नाश्ते हैं, वो हर भोजन प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उत्तर प्रदेश के नाश्ते की बात करें तो यहाँ भरपूर स्वादिष्ट और ऊर्जा देने वाले व्यंजन बहुत प्रसिद्ध हैं, और ये भोजन जो हैं गहराई से क्षेत्रीय परंपराओं से जुड़े हुए हैं, जिसे लिट्टी चोखा यहाँ का पारंपरिक नाश्ता है और आलू पूरी उत्तर प्रदेश का सबसे पसंदीदा नाश्ता है। दम आलू की जो सब्जी है इसे धीमी आँच पर पकाया जाता है। इसके अलावा बहनों, जो आलू टमाटर की सब्जी है ये भी उत्तर प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध सब्जियों में से है। इसके अलावा कद्दू की सब्जी यहाँ की पारंपरिक सब्जी है, और इस सब्जी की प्राकृतिक मिठास बनाए रखने के लिए इसे साधारण मसालों में ही तैयार किया जाता है। यहाँ की अरबी की सब्जी, लौकी चना दाल की सब्जी और टिंडा की सब्जी, ये सब बड़े शौक से खाए जाते हैं। इसे चावल के साथ या फिर चपाती के साथ खाया जाता है। और इसके अलावा बहनों, यहाँ पांच अलग अलग दालों से मिलाकर बनाई जाती है पंचकुटी दाल, और हर दाल का अपना अलग स्वाद होता है और अपनी अलग बनावट देती है ये दाल, और पौष्टिकता से भरपूर होती है ये दाल, जो हमारे शरीर को स्वस्थ करती है और अब करते हैं मन को स्वस्थ। और सुनते हैं ये गीत।

0: rise their status. In Wimbledon, Jannik Sinner to lock horns with Alexander Zverev for men's singles title this evening. And in FIFA World Cup, England and Argentina enter semi-finals. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, एक लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे, इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना शुरू की। विंबलडन टेनिस में आज शाम पुरुष सिंगल्स के फाइनल मुकाबले में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। भारत ने आज ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक अब भी लापता है। मंत्रालय ने बताया कि ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। विदेश मंत्रालय ने क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर चिंता जताई है। मंत्रालय ने तनाव तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए जारी वार्ता को जल्द पूरा करने का आह्वान किया है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप क्षेत्र के समुद्री मार्गों पर निर्बाध और सुरक्षित नौवहन तथा व्यापार जल्द से जल्द बहाल किए जाने की बात कही है। अमेरिका ने आज सुबह ईरान पर फिर से हवाई हमले किए हैं। ये हमले ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला किए जाने के बाद किए गए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि हमलों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने अगली सूचना तक होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद करने की घोषणा की है और चेतावनी दी है कि यदि अमरीकी हमले जारी रहे तो वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 में जारी यमन यात्रा संबंधी अधिसूचना वापस ले ली है। ये अधिसूचना यमन में गृहयुद्ध और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के कारण भारतीय नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने के लिए जारी की गई थी। हालांकि मंत्रालय ने परामर्श जारी कर भारतीय नागरिकों को यमन की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की सफल यात्रा पूरी कर स्वदेश लौट आए हैं। श्री मोदी की इस महत्वपूर्ण यात्रा की प्रमुख उपलब्धियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों के दौरे के पहले चरण में इंडोनेशिया का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और दोनों देशों के बीच चल रहे सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। दोनों देशों ने रक्षा, दुर्लभ खनिज, कृषि, समुद्री सुरक्षा और अंतरिक्ष जैसे कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण से सम्मानित किया गया। इस दौरे के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया से भारत को यूरेनियम की आपूर्ति का रास्ता भी साफ हुआ। साथ ही ऑस्ट्रेलिया सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़

0: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर के निवेश की घोषणा की। अपने दौरे के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड के ऑकलैंड पहुंचे। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी की शुरुआत की घोषणा की। इसके अलावा दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगुना करने का लक्ष्य तय किया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि भारत हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत के रणनीतिक संबंध और मजबूत हुए हैं।
2: हम एक स्टेबिलाइजिंग फोर्स बन के इंडो पैसिफिक और इंडियन ओशन में आज उभर पाए हैं, इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत।

0: इसी को प्रधानमंत्री एक साथ लेके आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने परिश्रम से, अपने स्टेट्समैनशिप से अपने पॉलिसी को भारत में लागू करके बाकी देशों को दिखाया और सभी देशों ने एक्सेप्ट किया कि यस, लेट दिस बी द फ्रेमवर्क, लेट इंडिया डिसाइड द फ्रेमवर्क। हम इस फ्रेमवर्क पे एक लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन, आप सोचिए ये कितनी बड़ी जीत है।
1: श्री संबित पात्रा ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने बताया कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया है। इसके तहत दोनों देशों के युद्धपोत एक दूसरे के डॉक पर सर्विसिंग करा सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने माफी योजना 2026 शुरू की है। इसके तहत छूट प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चलाने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने का एक मुश्त अवसर दिया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बताया कि ये योजना 6 महीने तक लागू रहेगी। इसका लाभ उन प्रतिष्ठानों को मिलेगा जो आयकर अधिनियम 1961 के तहत मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट का संचालन कर रहे हैं। ऐसे ट्रस्ट में कर्मचारी भविष्य निधि का प्रबंधन सीधे ईपीएफओ के बजाय संबंधित प्रतिष्ठान अपने निजी ट्रस्ट के माध्यम से करता है।
2: ईपीएफओ की एमिनिस्ट योजना मान्यता प्राप्त भविष्य निधि ट्रस्ट चला रहे पात्र संस्थानों को नियमित करने का एक और अवसर प्रदान करती है। इस योजना के तहत वे अपने ट्रस्ट की स्थिति को पिछली तारीख से नियमित करा सकते हैं। इसका उद्देश्य ऐसे ट्रस्टों को एक समान वैधानिक व्यवस्था के दायरे में लाना और सभी लागू कानूनी प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करना है। कर्मचारियों के लिए यह योजना उनके नियोक्ता के भविष्य निधि ट्रस्ट की कानूनी स्थिति को लेकर अधिक स्पष्टता और भरोसा प्रदान करेगी। योजना के तहत निर्धारित राहत का लाभ तभी मिलेगा जब सदस्यों के खातों में निर्धारित अवधि के दौरान अंशदान जमा किया गया हो और उस पर ईपीएफओ की वैधानिक ब्याज दर के बराबर या उससे अधिक ब्याज दिया गया हो। छूट प्राप्त पीएफ ट्रस्टों को नियमित किए जाने से भविष्य निधि लाभों का प्रबंधन अधिक सरल, सुव्यवस्थित और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप होने की भी उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: योजना का लाभ लेने के लिए पात्र प्रतिष्ठानों को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय में ईमेल के माध्यम से औपचारिक आवेदन भेजना होगा। देश भर में आज व्यापक पौधारोपण अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के व्यापक पौधारोपण अभियान के अंतर्गत 35 करोड़ पौधे लगाए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सतत भविष्य सुनिश्चित करने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है।
3: वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 405 करोड़ रुपए की लागत वाली नगर निगम की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से अधिक पौधे लगाए गए। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज कहा कि देश के समाज सुधारकों की महान विरासत का सम्मान करना और उसे बनाए रखना हर नागरिक का कर्तव्य है। श्री राधाकृष्णन ने नई दिल्ली के द्वारका में मन्नम इंटरनेशनल सेंटर में मन्नम स्मृति मंडपम का उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक पौधा भी लगाया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास

0: पास ने आज बताया कि फूकोक द्वीप के निकट कल हुई नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह सिटी ले जाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने कहा कि वहां आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को भारत लाया जाएगा। इससे पहले दूतावास ने बताया था कि नौका दुर्घटना में घायल 15 भारतीयों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और वे भारत लौट रहे हैं। दक्षिण की कोकिला के रूप में प्रसिद्ध रही गायिका एस जानकी अम्मा का कर्नाटक के मैसूर में एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे 88 वर्ष की थीं।
1: छह दशक से अधिक लंबे अपने संगीत सफर में एस जानकी ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और हिंदी सहित कई भाषाओं में लगभग 48,000 गीतों को अपनी आवाज दी। अपनी बहुमुखी गायकी और भावपूर्ण प्रस्तुति के कारण उन्हें नाइटिंगेल ऑफ द साउथ के नाम से जाना जाता है। एस जानकी को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुए। इसके अलावा उन्हें 33 राज्य फिल्म पुरस्कार भी मिले। वर्ष 2013 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इस जानकी के निधन से भारतीय फिल्म संगीत जगत ने एक ऐसी महान स्वर साधिका को खो दिया है जिनकी आवाज आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा और विरासत बनी रहेगी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि एस जानकी अम्मा का निधन संगीत और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने खाड़ी देश को कूटनीति, मीडिया और निवेश के क्षेत्र में प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। उन्होंने अल जजीरा समाचार नेटवर्क की भी शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के पूर्व अमीर शेख के निधन पर दुख व्यक्त किया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
2: फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराया। दोनों सेमीफाइनल मुकाबलों के विजेता 20 जुलाई को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। सेमीफाइनल की दोनों पराजित टीमें 19 जुलाई को मियामी में तीसरे स्थान के लिए प्लेऑफ खेलेंगी। टेनिस में आज विंबलडन के पुरुष सिंगल्स और महिला डबल्स के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। महिला डबल्स के फाइनल में चीन की ग्वो हन्यू और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलादिनोविक की जोड़ी का मुकाबला कनाडा की ग्रेबियेला ड्रोवास्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी की जोड़ी से होगा। ये मैच शाम 5:30 बजे खेला जाएगा।
0: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गंगा के मैदानी इलाकों, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर आज तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड में भी आज इसी तरह की स्थिति बने रहने का अनुमान है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की। 10 भारतीय सुरक्षित बचाए गए, 1 लापता। क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों पर लगातार हो रहे हमलों पर भारत ने चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। इस दौरान कई समझौते हुए। गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निजी भविष्य निधि ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों को अपनी स्थिति नियमित करने के लिए 6 महीने की माफी योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में इंग्लिश बाबू देसी मैम फिल्म का ये गीत। गीत की रचना योगेश की है और संगीत निखिल विनय का।

आप सुन रहे हैं अलका याग्निक और अभिजीत को। फिल्म का नाम है जुदाई। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम शमन का।

लीजिए सुनिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में हाँ मैंने भी प्यार किया फिल्म का ये गीत। गीत की रचना समीर की है और संगीत नदीम शमन का।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम में 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय दिन के 3 बजे हैं। अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

दिन में 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और 3:15 पर फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम आप सुनेंगे मेरी पसंद। सुन मेरे बंधुरे मारूफ फिल्म साज हिदायतकार बिमल रॉय के फन और शख्सियत के हवाले से फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा आप सुनेंगे तहरीज नामुस्तजाब मलिक की और इस प्रोग्राम का वक्त रहेगा दिन में 3:30। शाम 4:00 अब लुत्फानंदोज होंगे फिल्मी मौसीकी से। फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम जारी रहेगा 4:50 तक। पर खबरें नशर की जाएंगी और शाम 5:00 उर्दू सर्विस की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामिन ये थे एक मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों के हवाले से। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

0: मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडेश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। दिन के 3:05 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया।

जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने प्राइवेट प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चलाने वाले इदारों के लिए 6 महीने की आम रियायत की स्कीम शुरू की है ताकि उनके दर्जे को बाजाब्ता शक्ल दी जा सके। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज में सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को बचा लिया गया है जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुकाम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुकाम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने के वाकयात पर तश्वीश का इजहार किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुजाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है ताकि खित्ते में अमन व इस्तेकाम बहाल हो सके। वजारत खारजा ने 2017 के उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है जिसके तहत यमन जाने वाले भारतीय शहरियों पर कुछ शराइत आयद की गई थी। यमन में खाना जंगी और मुसल्ला महाजराई की वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ने के तनाजुर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अलबत्ता एक एडवाइजरी में वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि वो सभी भारतीय शहरियों को अब भी ये सलाह दे रही है कि वो यमन का गैर जरूरी सफर करने से गुरेज करें। वजीर अजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का अपना 6 रोजा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया जिसके दौरान वजीर अजम मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ 2 तरफा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकतदारी की पेशरफ का जायजा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा अहमियत के हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वजीर अजम मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर अजम के साथ 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वजीर अजम मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे जहां दोनों मुल्कों के वजीर अजम ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटेजिक साझेदारी के कायम का ऐलान किया और 2 तरफा तिजारत को बढ़ाकर साल 2030 तक 2 गुना करने का हदफ मुकर्रर किया। बीजेपी ने कहा है कि भारत बहरे हिंद और भारत बहरुल काल खित्ते में एक इस्तेकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वजीर अजम मोदी हाल ही में सेशल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे ताकि किलीदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा किलीदी और इक्तिसादी संग मील करार दिया। उन्होंने वजीर अजम के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। इनमें बहरे हिंद, भारत बहरुल काइल, किलीदी इतिहाद, दिफाई और बहरी इश्तराक, अहम मादनियात के शोबे में तावुन, तवानाई की यकीनी फरहमी, डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचा और तालीमी साझेदारी शामिल है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का भी आगाज़ किया और उनके लोकसभा हल्के गांधी

0: नगर में इस मौके पर 1.25 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए गए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुलाजमीन की प्रोविडेंट फंड तंजीम EPFO ने आम रियायत की स्कीम 2026 का आगाज किया है ताकि मुस्तस्ना प्रोविडेंट फंड चलाने वाले इदारों को अपने दर्जे को बाजाबता शक्ल देने का यक वक्ती मौका फराहम किया जा सके। लेबर और रोजगार महकमे की वजारत ने कहा कि मस्कूरा स्कीम 6 महीने की मुद्दत के लिए बरकरार रहेगी। मस्कूरा स्कीम का इतलाक उन इदारों पर होगा जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत तस्लीम शुदा प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट चला रहे हैं। वजारत ने कहा कि अहल इदारों को ईमेल के जरिए बाजाबता दरखास्त मुतालिका इलाकाई दफ्तर को पेश करना होगी। कतर के साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी एक नज़रिया साज़ रहनुमा थे जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। अमरीका ने ईरान पर आज सुबह फिर फजाई हमले किए। अब नए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमरीका ने ये फजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके हमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमरीका की मरकजी कमान ने कहा कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया जिसमें मिजाइल, ड्रोन और मवासलाती मराके शामिल हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमेरिका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। वियतनाम के वजीर आजम ने फू कोक जजीरे के करीब हुए उस तेज रफ्तार कश्ती हादसे की तहकीकात का हुक्म दिया है जिसमें 15 भारतीय सयाहों की मौत हो गई। मुंबई में वियतनाम के कौंसल जनरल की जानिब से जारी एक बयान के मुताबिक वियतनाम के वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी है कि वो हादसे की वजूहात और मुतालिका कोताहियों की निशानदेही करें, जिम्मेदारी का तावुन करें और आइंदा ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए मौसर इकदाम करें। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में आलमी नंबर 1 यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। आज ही खवातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। बुध के रोज पहले सेमीफाइनल में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा। फ्रांस क्वार्टर फाइनल में मराकश को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा है जबकि स्पेन ने क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम को 1-2 गोल से शिकस्त दी। दूसरा सेमीफाइनल जुमेरात को खेला जाएगा जिसमें इंग्लैंड और अर्जेंटीना की टीमें आमने सामने होंगी। फीफा वर्ल्ड कप का फाइनल इस माह की 20 तारीख को न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में खेला जाएगा। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नजदीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया जबकि एक अब भी लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़ेवरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस मेरी पसंद। इस प्रोग्राम के साथ आपका मेजबान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। मेरी पसंद प्रोग्राम में आज हम बात करना चाहेंगे अपने वक्त के मारूफ अदाकार प्राण साहब के हवाले से। और प्राण साहब की बात अगर की जाए तो एक ऐसी शख्सियत

हमारे जहन में उभरती है, जिसने गुनागुन सलाहियतें होते हुए ऐसे किरदार निभाए जो हमेशा हमेशा हमारे जहन में उनके नक़ूश रह गए। 12 फरवरी 1920 को दिल्ली के बलीमारान इलाके में एक रईस पंजाबी ख़ानदान में आपका जन्म हुआ। वालिद मोहतरम सिविल इंजीनियर, सरकारी ठेकेदार थे। प्राण साहब पढ़ाई में बहुत होशियार थे और बड़े होकर फोटोग्राफर बनना चाहते थे। अदाकार बनने से पहले उन्होंने दिल्ली में ही एक फोटोग्राफी कंपनी में काम किया। उनकी किस्मत तब बदली जब लाहौर की एक पान की दुकान पर मशहूर फिल्म साज वली मोहम्मद की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने प्राण साहब को अपनी पंजाबी फिल्म यमला जट, जो 1940 में बनी थी, एक विलेन का रोल ऑफर किया और प्राण साहब ने हामी भर दी और फिल्म सुपरहिट हुई।

प्राण साहब के पर्दे सीमी पे मौजूद की इतनी दमदार होती थी कि उन्हें विलेन विलेंस का विलेन कहा जाता था, और फिल्म में प्राण साहब का होना उस फिल्म की कामयाबी की जमानत होता था। उन्होंने राम और श्याम, जंजीर, डॉन और उपकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में यादगार किरदार निभाए।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: गोरी ओ गोरी ओ गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय

0: ओ गुजरिया ओ गुजरिया।
1: प्राण साहब जब अपने करियर की चोटी पर थे वो अपने वक्त के सबसे ज़्यादा मेहनताना पाने वाले अदाकारों में से एक थे, यहाँ तक कि कई बार तो हीरो को भी उनसे कम पैसे मिला करते थे। प्राण अपने किरदारों में इतनी गहराई लाते थे कि लोग असल ज़िंदगी में भी उनसे नफरत करने लगे थे उनके नेगेटिव रोल से। 60 की दहाई में उन्होंने अपनी ये जो एक छप थी उसको बदला उपकार फिल्म में। सन 1967 में ये फिल्म मंजर-ए-आम पर आई थी और इसमें प्राण साहब ने मंगू चाचा का शानदार रोल अदा किया था और ऐसा करके उन्होंने शायकीन का दिल जीत लिया। हिंदुस्तानी सिनेमा में अपनी खिदमत के लिए उन्हें 2001 में पद्म भूषण और 2013 में दादा साहब फाल्के एजाज़ से नवाजा गया। आज ही के दिन यानी 12 जुलाई 2013 को इस अजीम फनकार ने दुनिया को अलविदा कह दिया।

पाता है, अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा।

0: बोलेगा तो
1: ये था खराज अकीदत अदाकार प्राण कृष्ण सिकंद को उनकी बरसी के मौके पर। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमारी नशा जारी है मीडियम वेव से 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। सुन मेरे बंधुरे, फिल्म हिदायतकार बिमल रॉय के फन और शख्सियत के हवाले से इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा सुनिए। तहरीर जनाब मुस्तजाबुद्दीन मलिक की है।

0: विचार न सिर्फ बिमल राय के जाने माने मद्दाहों में आते हैं बल्कि उनके गुरु नितिन बोस को अपना गुरु भी तस्लीम करते हैं। बिमल राय को खराज अकीदत पेश करते हुए दिलीप कुमार कहते हैं,
1: टू मी इट वाज एन एजुकेशन टू वर्क विद हिम बिकॉज एज ए डायरेक्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वाज इन माय फॉर्मेटिव इयर्स टू वर्क विद ए मैन हु leaves you to get underneath the skin of the character. We have institutions these days where people go and learn how to act, and there are professional institutions. There is the National Institution of Drama. There weren't any institutions in those days, and all we could learn was through such instruction and persuasions. And then by one's own personal application.
0: बिमल राय की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि बाद के दौर के कई कदावर फिल्मसाजों ने फिल्मसाजी का दर्स उन्हीं की जेर तरबियत शुरू किया। इनमें सरफहरिस्त ऋषिकेश मुखर्जी, बासु चटर्जी और गुलजार जैसे फिल्मसाज आते हैं जिन्होंने अपनी पेशावराना जिंदगी की इब्तिदा बिमल राय के असिस्टेंट के तौर पर की थी।
2: मोरा गोरा अंग

विमल रॉय की दीगर फिल्में जैसे परख, सुजाता, बंदिनी, यहूदी, हमराही, परिणीता, ब्रजबहू, बेनजीर, काबुलीवाला, और उसने कहा था, रोमानवियत और हकीकत पसंदी का एक ऐसा खूबसूरत संगम पेश करती हैं जो फिल्म शायकीन का दिल मोह लेता है और नाजरीन को एक ऐसी ख्वाबनाक फिजा में ले जाता है जो विमल राय के शायराना तखील की पैदा करदा फिजा थी। ये फिजा खालिस हिंदुस्तानी होने के बावजूद इंसानी कदरों और एहसासात की आफाकियत की भी दलील है और यही वजह है कि विमल राय की फिल्मों ने जमानो मकान की सरहदों से ऊपर उठकर पूरी दुनिया के फिल्मबीनों को अपनी जानिब राग़िब किया।

बिमल रॉय के बारे में कहा जाता है कि कैमरे के जाविये के मामले में उनके अंदर छठी हिस किस्म की कोई सलाहियत जरूर मौजूद थी। वो शूटिंग के लिए जब आते थे तो कुछ देर खामोशी से कामकाज देखते रहते थे, फिर यकायक कैमरे को उठाकर किसी खास मकाम पर रख देते थे और उसके बाद अचानक वहां मौजूद सभी अफराद को वो जादू महसूस होने लगता था जो सहर अंगेज अक्सबंदी की बिमल रॉय की खास पहचान हुआ कर

माहौल की फितरी मासूमियत विमल राय की फिल्मों में एक बाजगश की तरह बार बार वापस आती है और हर बार नाजरीन को मसहूर कर जाती है।

विमल रॉय पहले ऐसे हिदायतकार हैं जिन्होंने कामयाबी के साथ शाहकार अदब को फिल्म के कालिब में ढालने का कारनामा अंजाम दिया है। बड़े अदब को बड़ी फिल्मों में मुंतकिल करने का काम इंतहाई मुश्किल काम है। नाकिदीन कहते हैं कि शरद चंद और टैगोर की अवामी रसाई तभी मुमकिन हुई जब पीसी बरुआ और बिमल रॉय जैसे लोगों ने उनके फनपारों को पर्दे सीमी पर पेश

0: प्रेमचंद, सादत हसन मंटो और कुरतुल ऐन के मायनास फनपारे आज तक किसी ऐसे हसास हिदायतकार के इंतजार में है जो उनके फन को खातिर खा फिल्मी पैराहन अता कर सके और इन मुनफरिद अदीबों की जमालियात के साथ इंसाफ कर सके। यहाँ पर काबिले जिक्र बात यह है कि प्रेमचंद, मंटो और इस्मत चुगताई तो खुद फिल्म साजी के काम से जुड़े रहे, लेकिन इसके बावजूद उनके तखय्युल का जादू पर्दे सीमी पर नहीं उतर सका। साफ जाहिर है कि ये काम उतना आसान नहीं था जितना बजाहिर महसूस होता है,
1: और शायद यही वजह है कि जब गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस से 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के फिल्मी राइट्स मांगे गए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। यहां पर हम ये बात पूरे यकीन से कह सकते हैं कि अगर बिमल राय हयात होते और वो गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस से 100 इयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के फिल्मी राइट्स मांगते तो उनको मार्क्वेस फिल्म बनाने का हक शायद जरूर दे देते।

बिमल रॉय इस जहाने फानी को वक्त से पहले छोड़कर चले गए। वो चेन स्मोकर थे और डॉक्टरों की तमाम तर राय के बावजूद उनकी सिगरेट नोशी में कोई कमी नहीं आई। वो बीमार रहने लगे तो उन्हें मालूम हुआ कि फेफड़ों में कैंसर काफी गहराई तक फैल चुका है। इलाज की हर मुमकिन कोशिश की गई। उनके खानदान ने पैसा पानी की तरह बहाया लेकिन सब कुछ बेसूद साबित हुआ। आखिरकार 57 साल की उम्र में बिमल रॉय दारे फानी को खैर बात कह गए।

0: निगाह में राही के वास्ते, मंजिल की चाह में राही के वास्ते, दुख के भी रास्ते, दुख के भी रास्ते,
1: मंजिल की चाह में राही के वास्ते, दुख के भी रास्ते।
2: सुन मेरे बंधु रे, फिल्म हिदायतकार बिमल रॉय के फन और शख्सियत के हवाले से अभी आप ये फीचर सुन रहे थे। इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा आपने सुना। तहरीर जनाब मुस्तजाब मलिक की थी, तरतीब व पेशकश एम रज़ा की। मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्रेडिश पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। लीजिए सुनिए फिल्मी नगमे, आगाज़ 2 बीघा ज़मीन फिल्म के नगमे से।

कोमल काया छोड़ के डारे

ओली जब सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में इस प्रोग्राम की अगली पेशकश। फिल्म है परख, मौसीकी सलील चौधरी की।

और ये है बेनज़ीर फिल्म का नगमा, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, एस डी बर्मन की मौसीकी में।

0: दिल हाय दिल।
1: वसंत देसाई की मौसीकी में भरत व्यास का लिखा हुआ नगमा सुनिए। आवाज़ें मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की, फिल्म है गूंज उठी शहनाई।

ससुराल फिल्म का नगमा सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। मौसीकार हैं शंकर जयकिशन और इस नगमे को कलमबंद किया शैलेंद्र ने।

0: दुख भरे दिन बीते रे भैया बीते रे भैया।
1: मजर इंडिया फिल्म का नगमा सुन रहे थे आशा भोसले, मोहम्मद रफ़ी, मन्ना डे और साथियों की आवाज़ों में। नगमा निगार थे शकील बदायूं, ने मौसीकी नौशाद की थी। और जब सुनिए साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ नगमा एन दत्ता की मौसीकी में, फिल्म है धूल का फूल, आवाज़ें महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर की।

आरजू फिल्म का नगमा सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज़ में हसन जयपुरी का लिखा हुआ, मौसीकी शंकर जयकिशन की थी। और लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अनजाना फिल्म का नगमा, आनंद बख्शी का लिखा हुआ, तर्ज बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यह इस प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दिल एक मंदिर फिल्म का नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ। हंसा जयपुरी ने इस नगमे को कलमबंद किया, मौसीकी शंकर जयकिशन की।

0: दिल एक मंदिर फिल्म का ये नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में, और इस नगमे के साथ ही फिल्मी मौसीकी का ये प्रोग्राम अब ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशे की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। अमेरिका ईरान जंग में तेज़ी आ गई है। अमेरिका के ताज़ा फिजाए हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुरमुज को बंद कर दिया है। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं। अब खबरें तफसील से। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि इस बहरी जहाज़ में सवार 11 भारतीय शहरियों में से

10 को बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय शहरी लापता बताया गया है। वजारत ने कहा है कि ओमान में भारतीय सिफारतखाना सूरत हाल पर करीबी नज़र रखे हुए है और तलाश और बचाव की कार्रवाई में ओमान के हुक्काम के साथ तालमेल कायम किए हुए है। भारत ने ओमान के हुक्काम की मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। साथ ही भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने के वाक़यात पर तशवीश का इजहार भी किया है। उसने फौरी तौर से कशीदगी दूर किए जाने और मुज़ाकरात के जरिए सिफारती हल निकाले जाने की अपील दोहराई है, ताकि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बहाल हो सके। वजारत खारजा ने 2017 के उस नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है, जिसके तहत यमन जाने वाले भारतीय शहरियों पर कुछ शराइत आयद की गई थी। यमन में खाना जंगी और मुसल्ह महाजाराई की वजह से सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ज़्यादा बिगड़ने के तनाजुर में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। अलबत्ता एक एडवाइजरी में वजारत खारजा ने यह भी कहा है कि वो सभी भारतीय शहरियों को अब भी ये सलाह दे रही है कि वो यमन का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का 6 रोज़ा दौरा कामयाबी से मुकम्मल करने के बाद नई दिल्ली वापस पहुंच गए हैं। अपने 3 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया, जिसके दौरान वज़ीरे आज़म मोदी ने इंडोनेशिया के सदर के साथ दो तरफ़ा बातचीत की और दोनों मुल्कों के दरमियान शराकत दारी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। दोनों मुल्कों ने दिफा अहमियत की हामिल और नायाब मादनियात, ज़रात, बहरी सिक्योरिटी और खला के शोबों में समझौतों और मुफाहमत नामों का तबादला किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म मोदी को इंडोनेशिया के आला तरीन सिविलियन एजाज बिंटेंग एडी पूर्णा से सरफराज किया गया। अपने दौरे के दूसरे मरहले में जनाब मोदी ऑस्ट्रेलिया के शहर मेलबर्न पहुंचे, जहां उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म के साथ 3री भारत ऑस्ट्रेलिया सालाना सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन सुपर ने भारत के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 50 करोड़ ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया। अपने 3 मुल्की दौरे के आखिरी मरहले में वज़ीर आज़म मोदी न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड पहुंचे, जहां दोनों मुल्कों के वज़ीर आज़म ने भारत न्यूजीलैंड स्ट्रेटजिक साझेदारी के क़याम का ऐलान किया और दो तरफा तजारत को साल 2030 तक बढ़ाकर 2 गुना करने का हदफ मुकर्रर किया। बीजेपी ने कहा है कि भारत बहर हिंद और भारत बहरुल काहिल खित्ते में एक इस्तेहकाम कायम करने वाली ताकत के तौर पर उभरा है। नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पार्टी के तर्जुमान संबित पात्रा ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हाल ही में सेशेल्स और इंडोनेशिया के दौरे पर गए थे, ताकि क्लीदी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता एक अहम कामयाबी है। जनाब संबित पात्रा ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों ने जल्द से जल्द समझौते को नाफिज करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने इसे भारत के लिए एक बड़ा क्लीदी और इक्तसादी संगे मील करार दिया। उन्होंने वज़ीर आज़म के इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के 10 अहम निकात को उजागर किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज गुजरात में अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा, जिनकी मालियत 405 करोड़ रुपए है। इस मौके पर जनाब अमित शाह ने एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के तहत दरख्त लगाने की एक बड़ी मुहिम का आगाज़ किया और उनके लोकसभा हल्के गांधीनगर में इस मौके पर 125 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए गए। वहाँ मौजूद लोगों से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला ने एक तवील मुद्दती माहौलियाती खाके को उजागर किया, ताकि 2029 के इंतखाबात होने तक इस चुनाव हलके में 20% इलाके को सरसब्जो शादाब बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो शमसी रूफ टॉप से अपनाएं। अमेरिका ने ईरान पर आज सुबह फिर फिजाई हमले किए। आबनाए हुरमुज में एक कमर्शियल बहरी जहाज पर ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने ये फिजाई हमले किए हैं। मालूम हुआ है कि कमर्शियल बहरी जहाज में हमले के बाद आग लग गई और इसके अमले के अहलकारों को बहरी जहाज से उतरना पड़ा। अमेरिका की मरकजी कमान ने कहा है कि उसने ईरान के तकरीबन 140 फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें मिसाइल, ड्रोन और मवासिलाती मराकज शामिल हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और मुत्तहिद अरब अमारात को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमलों से जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने उर्दुन में भी अमरीका के एक फौजी ठिकाने पर हमले करने का दावा किया है। इधर ईरान के पासदारान इनकलाब ने कहा है कि उन्होंने अगले अहकाम तक अबनाए हुरमुस को बंद कर दिया है। कतर के साबिक अमीर

0: हम्द बिन खलीफा सानी का इंतकाल हो गया है। वो 74 साल के थे। उन्होंने खलीजी मुल्क कतर को आलमी सतह पर सिफारतकारी, मीडिया और सरमायाकारी के शोबों में एक सरकर्दा मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। शेख हम्द ने कतर पर 18 साल तक हुकूमत की, जिसके बाद 2013 में रजाकाराना तौर पर अपने बेटे को इख्तदार सौंप दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर के वालिद शेख हम्द बिन खलीफा सानी के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि शेख हम्द बिन खलीफा सानी एक नज़रिया साज रहनुमा थे, जिन्होंने कतर को तरक्की और खुशहाली की नई बुलंदियों पर पहुँचाया। वियतनाम में भारतीय सिफारतखाने ने आज इत्तला दी है कि कल पोखो जजीरे के करीब कश्ती के अलमनाक हादसे में हलाक होने वाले 15 भारतीय शहरियों के जसद खाकी को हो ची मिन्ह सिटी ले जाया जा रहा है। सिफारतखाने ने सोशल मीडिया पर अपने बयान में कहा है कि ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयां मुकम्मल होने के बाद उनके जसद खाकी को जल्द भारत रवाना किया जाएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज मर्दों के सिंगल्स फाइनल में आलमी नंबर एक यानिक सिनर का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जवेरेव से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया था, जबकि अलेक्जेंडर जवेरेव बरतानिया के वाइल्ड कार्ड खिलाड़ी आर्थर फेरे को शिकस्त देकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में पहुंचे हैं। आज ही ख्वातीन डबल्स का फाइनल भी खेला जाएगा, जो भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 बजे शुरू होगा। फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड नॉर्वे को इजाफी वक्त में एक के मुकाबले 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया है, जबकि अर्जेंटीना ने आज सुबह स्विट्जरलैंड को एक के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दी। इस तरह फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। खास खास खबरें एक बार फिर। भारत ने ओमान के साहिल के नज़दीक कमर्शियल बहरी जहाज़ GFS गैलेक्सी पर हमले की मजम्मत की है। 10 भारतीय अफराद को बचा लिया गया, जबकि एक लापता है। भारत ने खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर बार बार हमले होने पर तश्वीश का इजहार किया है। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने दौरे में कई समझौते तय करने के बाद नई दिल्ली वापस आ गए हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अहमदाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संगे बुनियाद रखा। विंबलडन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर का मुकाबला अलेक्जेंडर जवेरेव से होगा और फीफा वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और अर्जेंटीना सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DT फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर शाम के 5 बजे हैं। युवा साथी सुने अपना कार्यक्रम युववाणी।

युवाणी में आज नमस्कार अक्षत चावला का। शाम के 5 बजे हैं और कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर हूं मैं, आपका दोस्त। साथियों, बातें बहुत सी होती हैं करने को, खासकर तब जब इतवार का दिन हो और दिलो दिमाग तरोताजा हो, क्योंकि छुट्टी का ये दिन हमें कहीं ना कहीं सुकून तो देता है। कई बार हफ्ते भर के काम इकट्ठे हो चुके होते हैं, फिर भी हम इतवार के दिन सुकून महसूस करते हैं, वो सब काम करते हुए भी परेशानी महसूस नहीं करते। इसका मतलब यही है कि हम पहले से अपने दिमाग में इस दिन को लेकर के कुछ पूर्वाग्रह बना चुके होते हैं कि ये दिन तो बड़ा अच्छा आराम का दिन होता है, बेशक आराम ना भी कर रहे हो। ये सोच अगर हमें बाकी दिन भी सुकून दे सके तो कैसा होगा।

इंसान जो सोचता है वो कर भी सकता है, जैसा वो सोचता है वैसा वो महसूस भी करता है। इसीलिए इतवार के दिन पे खूब काम करने पर भी सुकून लगता है, क्योंकि शायद कुछ बदलाव जो हो जाता है। हफ्ते के बाकी दिन जो दिनचर्या है वो एक सी रहती है, मगर इस दिन दिनचर्या थोड़ी सी अलग होती है, तो हमें सुकून लगता है। बस सोच का फ़र्क है। उसी तरह हम अपनी ज़िंदगी को किस नज़रिए से जीते हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जीवन में अगर हम सत्य की राह पर चलते हैं तो हमें एक अंदरूनी सुकून मिलता है जो बाहर की चीज़ों से उसकी तुलना नहीं हो सकती। सत्य की राह में परेशानियां बहुत आती हैं, क्योंकि कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। अब ये सब बातें थोड़ी प्रवचनात्मक लगती हैं, इन पर हम बचपन में कभी लेख भी लिखा करते थे, कोई निबंध आ जाया करता था सिलेबस में, पढ़ा करते थे। कई महान इंसानों की कहानियां हमने सुनी, किस्से सुने, मगर एक चीज़ जो सब में समान थी और आज भी है, वो यही है कि सत्य की राह पर जो चलता है उसे कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता ही है, उसका जीवन आसान होता है। यही वजह है कि इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कितने संतों महात्माओं ने भी दुनिया को दुआएं ही दी, अपनी करुणा दिखाई, और परेशानी के बावजूद हंसते हंसते उनको झेल पाए, क्योंकि सत्य में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अब ये बातें हम कैसे अपने जीवन में लेकर आएं? साफ बात यह है कि हम जो काम कर रहे हैं उसे इत्मीनान से, सुकून से, खुशी से करें और ईमानदारी से करें। बस यही है सत्य पर राह पर चलना। जितना हो सके उतना ईमानदार बने, किसी का बुरा ना करें, और जैसा महावीर भगवान ने कहा, जियो और जीने दो। अगर हम इस सिद्धांत को अपना लें तो दूसरों का जीवन भी आसान होता है, हमारा भी आसान बनता है, क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो सामने वाला भी हमारे लिए अच्छा करेगा ही। कहते हैं कि इस दुनिया, ये दुनिया तब तक कायम है जब तक सच्चाई का राज है। जिस दिन सच्चाई ही झूठ से एक कदम भी पीछे हो गई, ये दुनिया खत्म होने की तरफ आ जाएगी। ये युद्ध, ये लड़ाइयाँ, ये आपस के झगड़े, ये सब तब तक ही हैं जब तक हम अपने आप को दूसरों से अलग मानते हैं। जब हम इंसान को इंसान की तरह देखने लगते हैं, फिर ये दायरे खत्म हो जाते हैं और वो सुकून हासिल होता है जो किसी और चीज़ में ही नहीं मिलता। इसलिए लोग रूहानियत यानी आध्यात्म की राह पर चलने लगते हैं। ये वो शक्ति है जो किसी इंसान को मिल जाती है तो फिर उसे सब कुछ फीका लगने लगता है, और ये शक्ति, या आध्यात्म की शक्ति, ये अच्छी सोच की शक्ति, मानवीयता की शक्ति जिसके पास है वो हमेशा खुशी रहेगा। इसी तरह बातें हम करते रहेंगे। फिलहाल एक गीत सुनते हैं, फिल्म है धूल का फूल।

0: हेलो।
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से?
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए। अकेले आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: सर 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के

0: हमसे आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: साथियों, युवाणी एक ऐसा कार्यक्रम है जो युवाओं पर आधारित है और युवाओं को जानकारी होनी चाहिए देश दुनिया की भी और इतिहास भूगोल की भी। आज हम बात करते हैं भूगोल के एक ऐसे विषय पर जो बड़ा रोचक है और ये खबरों में भी रहता है, इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे जुड़े सवाल भी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते रहते हैं। तो जानते हैं आज भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं उस नदी के बारे में जिसे कहा जाता है कि वही सभ्यता में सबसे पुरानी है, जिसके किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बनी, यानी सिंधु नदी। आज सिंधु नदी जो है वो तीन देशों से होकर बहती है, चीन, भारत और फिर अंत में वो पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। इसकी लंबाई लगभग 2800 किलोमीटर की है और भारत का लेह शहर जो है वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। चेनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज इसकी सहायक नदियां हैं और ये नदी चीन के तिब्बत में स्थित मानसरोवर की जो झील है उसके निकट इसका उद्गम होता है और फिर वहाँ से बहती हुई भारत के लद्दाख के दमचोक के पास में भारत में प्रवेश करती है और फिर ये गिलगित से होते हुए दुर्दिस्तान के पास पाकिस्तान की तरफ चली जाती है और फिर कराची से होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं हिमालय की एक और नदी जिसका नाम है गंगा। सबसे पवित्र नदी मानी जाती है ये और इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो 2071 किलोमीटर है, बाकी जो हिस्सा बचता है वो बांग्लादेश में है। गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर और घाघरा जिसे सरयू भी कहते हैं, गंडक और रामगंगा इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी हिमालय की नदी ब्रह्मपुत्र के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर की झील के पास से ही निकलती है। इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? तीस्ता, सुवनसिरी, कमेंग, मानस, दिबांग, लोहित, बराक और कपिली इसकी सहायक नदियां हैं। अब बात करते हैं नर्मदा नदी की। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में से इस नदी का उद्गम होता है और पश्चिम की ओर फिर ये बहती है। लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत है और दक्षिण में सतपुड़ा के पर्वत और उनके बीच एक रिफ्ट वैली से होते हुए ये बहती है। सतपुड़ा के जंगल जिन्हें किताबों में भी पढ़ा गया है। ये नदी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं औरसंग, तवा और शेर। अब बात करते हैं ताप्ती नदी के बारे में जो कि 724 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के पास में सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है और ये नदी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात से बहते हुए अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो इस तरह है और नदियों के बारे में भी हम बात करेंगे। फिलहाल एक और गीत सुनते हैं, गाया है लता मंगेशकर ने, फिल्म है बरसात की एक रात।

आइए साथियों, बात करते हैं एक और नदी के बारे में। ये नदी है महानदी, जो कि 580 किलोमीटर के लगभग है, और ये मध्य प्रदेश के धार जिले के पास विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम होता है, और मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहते हुए ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और यही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। गोदावरी नदी ये भारत की सबसे लंबी नदी है,

प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहा जाता है इसे, और ये नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है और दक्षिण पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ पेनगंगा, इंद्रावती, प्रणहिता, ये तीन हैं। और अब बात करते हैं कृष्णा नदी की। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पास होता है और कृष्णा नदी महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं महानदी की, जो कि लगभग 850 किलोमीटर लंबी है और ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिहावा पहाड़ी से होता है और ये आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण कर

अब बात करते हैं महानदी की, जो कि लगभग 850 किलोमीटर लंबी है और ये छत्तीसगढ़ उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर के पास सिहावा पहाड़ी से होता है और ये आगे पूर्व की ओर बहते हुए उड़ीसा में प्रवेश करती है। वहाँ पर एक डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तेल नदी और जोंक, ये दो नदियाँ महानदी की सहायक हैं। एक और नदी है भारत में जो 800 किलोमीटर लंबी है, इसे कहते हैं कावेरी नदी, और कर्नाटक के कर्ग के पास में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और फिर कर्नाटक तमिलनाडु से बहते हुए तिरुचिपल्ली के पास में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, कावेरी नदी को। इसके अलावा और भी नदियां हैं भारत में, ये सभी नदियां बहती हुए अलग-अलग स्थान से दूसरी तरफ जाती हैं तो भारत को आपस में जोड़ देती हैं, क्योंकि लोग पानी पर आश्रित हैं और ये जो पानी है वही हमें ज़िंदा रखता है और न जाने कितनी ज़रूरतें हमारी पूरी करता है। एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, जो कि अजमेर के पास अरावली पहाड़ियों के पास में जो नाग पहाड़ है वहाँ से उसका उद्गम होता है और राजस्थान से होते हुए ये गुजरात के जो रण ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रण, वहाँ पर जाकर ये विलुप्त हो जाती है और इस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जब कण के रच में, रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ के रन में पहुंचती है तो वहाँ बिल्कुल सपाट हो जाती है और लगभग विलुप्त हो जाती है। बड़ी इससे मात्रा में नमक की उत्पादन होता है, इसलिए इसे सॉल्ट रिवर कहते हैं। एक और नदी है जिसका नाम है काली नदी, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इस नदी को शारदा और काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये नदी हिमालय में स्थित कालापानी नामक स्थान से निकलती है और फिर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में होते हुए ये नदी घाघरा नदी के साथ मिल जाती है। तो इस तरह से ये जो नदियाँ हैं ये जीवन का आधार हैं और ये जो संदेश देती हैं वो यही है कि आपस में भाईचारा बना रहे, जुड़े रहें और सब लोग मिलजुल कर जिएं, जियो और जीने दो, और साथ ही ये संदेश कि चलते रहें, बहते रहें, रुकने से जो पानी रुक जाता है वो सड़ जाता है, उसमें काई पैदा हो जाती है और कुछ जीव जंतु पैदा हो जाते हैं और पानी पीने लायक नहीं रहता, सड़ जाता है। उसी तरह इंसान अगर चलता रहे तो जितनी भी समस्याएं हैं, उलझने हैं, वो धीरे धीरे छंट जाती हैं, उनसे उबर जाता है।

साथियों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भारत में अनेक नदियां हैं और नदियों का संदेश आपस में जोड़ना है, मगर नदियां भी प्रदूषित हो रही जा रही हैं और उसके लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है, उत्तरदायी है, तो वो इंसान ही है। इंसान के लालच की वजह से और लालच से ज़्यादा बेवकूफ़ी की वजह से नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। गंगा जैसी नदियों को हमने माँ तो मान लिया, देवी का दर्जा भी दे दिया, लेकिन वहाँ जाकर हम कितना प्रदूषण करते हैं, कितना उसे गंदा करते हैं, ये कौन नहीं जानता। धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर हम उन नदियों की दुर्गति कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि सरकारें कुछ नहीं करती, कारखानों का पानी डाला जा रहा है। ये सब शिकायतें इंसान करते तो हैं, लेकिन अपनी तरफ कोई नहीं सोचता कि मेरी क्या गलती है। कहते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से वो लोग जो पहाड़ों में जाते हैं या इन नदियों के किनारे जा करके शांति सुकून महसूस करना चाहते हैं, वही लोग वहाँ पर प्रदूषण फैलाते हैं। कितना कचरा हम खुद ऐसी पवित्र नदियों में डालते हैं। तो हमें ही सुधरना होगा। जब हम सुधरेंगे तो एक चेतना फैलेगी और वो चेतना धीरे धीरे इन नदियों को शुद्ध करने में मदद करेगी। वरना सरकारें तो काम कर रही हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, मगर फिर भी वो काम मुकम्मल नहीं हो पाता क्योंकि आम जनता सुधरती नहीं। इसी तरह वायु प्रदूषण, जब सर्दियों में एयर पोल्यूशन इंडेक्स आता है तो लोग फिर से सवाल उठाने लगते हैं, मगर अपने तरफ कोई उंगली नहीं उठाता, अपनी तरफ कोई नहीं सोचता। वायु प्रदूषण क्या है जानते हैं हम कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5

से लेकर के 10 तक का जो है उसकी वजह से ये होता है। साथ में कई गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जहरीली गैसें वायु प्रदूषण करती हैं। गाड़ियों और कारखानों से निकला हुआ कचरा, फिर कचरा जलाते हैं उसकी वजह से धुआं होता है। घरेलू कितने सारे प्रोडक्ट हैं उनका केमिकल हम निकालते हैं, जला देते हैं, वो प्रदूषण करता है वायु का। या पानी में डाल दिया तो पानी में प्रदूषित हो जाता है, धूल होती है, पॉलन कण है और इसमें एलर्जी, ये सारी चीज़ें प्रदूषण फैलाती हैं, खासकर जो हवा का, और फिर सांस की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और ऊपर से कुछ लोग धूम्रपान भी करते हैं, धूम्रपान से फेफड़े और ख़राब होते हैं। कारण हमें पता है, निवारण भी पता होना चाहिए, सुधरना हमें होगा। क्योंकि जब तक हम बेमतलब का व्हीकल्स का इस्तेमाल कम नहीं करेंगे, कार, बाइक, बस, ट्रक, इन सब के इंजन से जो पार्टिकुलेट मैटर निकलता है उनको प्योरीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि मरम्मत करना, सर्विस करवाना बहुत ज़रूरी है। सर्विस नहीं करवाते हैं तो हमारी वजह से पर्यावरण में प्रदूषण फैलता है। ये चीज़ हमारे कंट्रोल में है। उसी तरह धूल उड़ती है जब कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो, या फिर कोई इमारत ढहाई जाती है तो उसका भी एक तरीका है कि किस तरह से प्रदूषण ना हो। सावधानी के लिए कुछ मेजर्स लिए जाते हैं, वो हमें लेने चाहिए। सबसे बड़ी बात, कचरा जलाना नहीं चाहिए, उसका ढंग से निस्तारण होना चाहिए। ये सब जो हमारे हाथ में, हमें वो करना चाहिए, वरना होगा क्या? हम जानते ही हैं कि आंखों में जलन होना, आंखें सूज जाती हैं, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, और ये हो भी रहा है। आजकल सांस के रोगी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि हृदय रोग, डायबिटीज़, उनके बाद इन्हीं का नंबर आता है। इस वायु प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत आती है। कुछ लोग गहरा सांस लेते ही खांसी करना शुरू कर देते हैं। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, COPD, ये सब बीमारियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सबसे ज़्यादा बुरा असर पड़ता है बच्चों पर और बुज़ुर्गों पर, क्योंकि बुज़ुर्गों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए वो जल्दी चपेट में आ जाते हैं सांस की इन बीमारियों पे। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो ये कि बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं उनको एक जो आदत है कि बंद कमरों में रहना, उसे बदलना होगा। बेशक हवा में प्रदूषण है, लेकिन खुली हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवा बहती रहती है, इसलिए अगर कमरा बंद रहेगा तो वो घुटन भी पैदा करेगा, इसलिए वेंटिलेशन बढ़ाएं, ताकि हवादार होना चाहिए। जहाँ भी हम रहते हैं, सोते हैं, वो इलाका हवादार होना चाहिए। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना, इंडोर प्लांट्स आते हैं वो लगाएं, अपनी बालकनी में पौधे लगाएं, और वैसे भी वृक्षारोपण जो होते हैं अभियान, उनमें हिस्सा लेना चाहिए। अपने आसपास जो भी पार्क है, थोड़ी सी भी जगह है, वहाँ पर कोई पौधा, कोई पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें। इससे आसपास के जो पर्यावरण है उसमें बदलाव आने लगता है धीरे धीरे। और क्या कर सकते हैं कि अपने आसपास नमी का लेवल जो है वो बरकरार रखना चाहिए। पेड़ पौधों को पानी देते हैं तो आसपास जो एनवायरनमेंट है उसमें ठंडक पैदा होती है। तो पानी जब वाष्पित होता है तो कुछ मिट्टी के कणों को साथ लेकर के वापस नीचे भी आता है। तो ये प्रकृति का एक साइकिल है। और अगरबत्ती जलाना नहीं चाहिए, कम से कम हो। और स्मोकिंग यानी कि सिगरेट पीना, बीड़ी का धूम्रपान, ये सब बंद करना चाहिए। और जो लोग AC और एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करते हैं उसको फिल्टर करवाना चाहिए, उसको मानक स्तर पर रखना चाहिए। बार बार उसकी सर्विस भी समय समय पर करवा लेनी चाहिए। अगर ये करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साथ में एक और चीज़ जो है कि हमें प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम यानी ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, कपालभाति, ये सीखना चाहिए। साथ ही तेज़ चलना, हल्की जॉगिंग करना, साइकिल चलाना, स्विमिंग, ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो बड़ी आसानी से की जा सकती हैं।

अगर हम इनको करते हैं तो हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं। साथ ही भुजंगासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन, ये कुछ पोज हैं, ये आसन हैं, इनको करने से भी जो फेफड़े हैं वो मजबूत होते हैं। इनके अलावा घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन लें, N95 मास्क पहनने से बहुत फ़ायदा होता है और जो हवा है वो साफ़ होकर के हमारे शरीर में जाती है इस मास्क का इस्तेमाल करने से। बाकी जो सबसे बड़ा उपाय है वो हम सब जानते हैं मगर कर नहीं रहे हैं, वो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना और कचरे का जो निस्तारण है वो सही तरीके से करना, जलाना नहीं, एनर्जी को बचाना और कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करना। तो साथियों बातें इसी तरह करते रहेंगे, फ़िलहाल एक गज़ल सुनते हैं हम, आवाज़ है जगजीत सिंह की।

साथियों, बात कर रहे थे हम कि किस तरह से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह से कुछ समस्याएं आती हैं, उनका निदान किस तरह से हो, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब एक चीज़ जानते हैं कि सबसे बड़ा निवारण का तरीका, सुधार लाने का, वो यही है कि पेड़ लगाए जाएं। मगर अफसोस की बात है कि हम, खासकर युवा, इस चीज़ पर कम ही ध्यान देते हैं। सोच ये हो गई है कि ज़िंदगी जीने का मतलब है खुल के पैसा कमाना, फिर उसे खर्च करना, फैशन करना, ट्रेंड में चलना, नया गैजेट्स होने चाहिए और घूमने फिरने को होना चाहिए। और घूमने फिरने जाना है तो अपने साधन होने चाहिए, एक अच्छी कार, एक अच्छी बाइक, ये सब कुछ होना चाहिए। ये है ज़िंदगी। पर सच तो ये है कि ये जिंदगी का एक हिस्सा है। जब तकलीफें आती हैं, बीमारियां आती हैं, तो लोग जागते हैं। जब तक सब ठीक चल रहा होता है, हम आंखें मूंदे होते हैं, तब हमें लगता है सब ठीक है। मगर सच्चाई ये है कि अपने बेहतर भविष्य के लिए हमें पेड़ लगाने वाले कार्यक्रमों का हिस्सा बनना होगा, क्योंकि हम जानते हैं, बचपन से हम वो लेख लिखते आए हैं, कभी परीक्षाओं में, कभी क्लास टेस्ट में, कि पेड़ों की वजह से जीवन है, वो हरियाली का प्रतीक हैं, जीवन के आधार हैं पेड़, वो हमें शुद्ध हवा देते हैं, फल फूल, औषधियाँ और छाया देते हैं। इस पर कई गीत भी बने हैं, गाया भी करते थे, पेड़ हमें देते हैं छाया, हम भी तो कुछ देना सीखें। मगर शायद हम अभी तक कुछ देना नहीं सीखे। सीखना होगा बेहतर भविष्य के लिए, धरती पर संतुलन बनाए रखने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए ये ज़रूरी है। पेड़ वो हैं जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, ना तो सुनाते हैं, ना कोई आंकड़े गिनवाते हैं, मगर हम इंसान आंकड़ों के पीछे पड़े रहते हैं। सरकार योजनाएं चलाती है पेड़ पौधे लगाने की, लगाए भी जाते हैं, मगर उनको संभालने की, देखरेख करने की जिम्मेदारी आम जनता की है। अगर किसी सड़क किनारे पेड़ लगाए जाते हैं तो उसे पानी देने का जिम्मा आसपास के लोगों का है। बारिश का मौसम है, लगभग देश में मानसून है, ये वो समय है जब पेड़ों की ज़्यादा देखभाल नहीं करनी पड़ती, पौधों की देखभाल नहीं करनी होती, बस पेड़ पौधे लगाएं। प्रकृति अपने आप उन्हें पानी देती है, कुछ दिन हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वरना इस मौसम में अपने आप पानी उन तक पहुंच जाता है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि पहाड़ों में घूमने जाते हैं लोग इस बरसात के मौसम में, तो कुछ पौधे अपने पास रख लें, गाड़ी में रखें, जहाँ एक ऐसी ज़मीन दिखाई दे जो उपजाऊ है, जो ठोस नहीं है, हल्की सी खुदाई कर कर पेड़ लगा दें, बारिश का मौसम है, अपने आप पानी मिल जाएगा। ऐसे पेड़ पौधे अगर हम 10 भी लगा दें तो शायद उनमें से 4-5 तो ज़िंदा रह जाएंगे, और वो ज़िंदा रहे तो प्रकृति को कितना फ़ायदा होगा। ये छोटे छोटे उपाय हम चाहें तो कर सकते हैं। जैसे आज इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो गली मोहल्ले में एक ग्रुप बना लें और सुबह सुबह या शाम को मिलके पौधे लगा लें। मिलना जुलना भी हो जाता है, घूमना फिरना भी हो जाता है, मनोरंजन भी है, और मोबाइल से हमें कुछ समय के लिए छुटकारा भी मिलेगा और पर्यावरण की सेवा भी हो जाएगी, पर्यावरण के लिए कुछ काम हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम करने लगें तो सचमुच में ये दुनिया बदलने लगेगी। मगर

सीधी बात करने से होगा। सिर्फ बातें करने, बातें सुनने से कुछ नहीं होगा। एक अच्छा उपाय जो बचपन से भी हमने पढ़ा कि किसी के जन्मदिवस पर या किसी का निधन हो जाने पर एक पेड़ ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से उस पेड़ से लगाव भी होगा, हम ध्यान भी रखेंगे, क्योंकि किसी की याद में लगाया गया पेड़ हमेशा हमारे दिल के करीब रहेगा। तो साथियों, प्रकृति को हम भी कुछ दें, हम भी उदार बने, इंसानियत का फ़र्ज़ निभाएं।

आइए साथियों, अब आज के इतिहास पर थोड़ी नज़र डालते हैं। आज के दिन 1823 में भारत में पहला भाप से चलने वाला पानी का जहाज़, जिसका नाम डायना था, वो तब की ब्रिटिश सरकार ने 1824 में ख़रीदा और उसका इस्तेमाल करना शुरू किया। तब इसे 80,000 रुपये में बंगाल सरकार द्वारा ख़रीदा गया था और इस तरह से भारत में इस्तेमाल होने वाला ये पहला जहाज़ बना। आज के दिन 2001 में मैत्री बस सर्विस की शुरुआत की गई भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत के अगरतला से होकर के ये बांग्लादेश के ढाका, जो कि वहाँ की कैपिटल सिटी यानी कि वहाँ की राजधानी है, वहाँ तक जाती थी। और इसका आज ही के दिन 12 जुलाई 2001 में लॉन्च किया गया। बाद में इसे कोलकाता ढाका के रूट तक फैलाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को आपस में जोड़ना था और साथ ही टूरिज्म को प्रमोट करना था, पर्यटन को बढ़ावा देना और आवाजाही आसान हो दो देशों के बीच में, ये इसका मकसद था। साथ ही इससे होता ये है कि हम जानते हैं कि बंगाल और बांग्लादेश, इनका जो कल्चर है यानी संस्कृति है, वो लगभग एक जैसी है, तो उसमें भी बढ़ावा मिलता है। इसलिए इसे लागू की गई थी मैत्री यानी कि दोस्ती। और आज के दिन 2013 में पहली बार मलाला डे मनाया गया। दरअसल मलाला यूसुफ़ज़ई, जिन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1997 में मिंगोरा, पाकिस्तान में। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काम किया और लड़ाई की उसके लिए, जिसकी बात पूरे संसार भर में हुई। और 2013 में ही उसी के दिन उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में अपना भाषण दिया था। तब से लेकर के अब 12 जुलाई को मलाला डे मनाया जाता है। संदेश सिर्फ इतना कि लड़कियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। तो आज के इतिहास में इतना ही। अभी अगला गीत सुनते हैं हम, फिल्म साजन से।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6 बज चुके हैं। लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय सुनिए। अब से कुछ ही समय पश्चात यानी 6:05 पर आप सुनेंगे सराय की भाषा का कार्यक्रम। पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 6:45 पर। जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40। ग्रामीण श्रोता अपना कार्यक्रम सुनेंगे चौपाल संध्या 7 बजे, जिसमें जानकारी दी जाएगी पशुओं के लिए ओजोल, पशुओं में थनेला रोग उपचार और रोकथाम, जायद सब्जी में कीट नियंत्रण और उपलब्ध होने पर मौसम और बाजार भाव की जानकारी भी दी जाएगी। फिल्मी गीत आप सुनेंगे 7:45 पर। एक ही फिल्म से यह कार्यक्रम होगा रात्रि 8 बजे। स्पोर्ट्स कैन का समय रहेगा रात्रि 8:30।

हिंदी में समाचार आप सुनेंगे रात्रि 8:45 पर और रात्रि 11 बजे। अंग्रेजी में समाचारों का समय रहेगा रात्रि 9 बजे और रात्रि 11:05। सुगम संगीत का समय रहेगा रात्रि 9:15। 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम और रात्रि 10 बजे भी आप सुनेंगे रविवारीय संगीत सभा। ये थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगा हर्ट्स और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। शाम के 6:05 हुए हैं। इस समय आप सुना करते हैं सराय की भाषा का कार्यक्रम।

अभी आप सुन रहे थे अपना कार्यक्रम सरायकी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया, कहा सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जनसेवा में समर्पित अधिकारी और कर्मचारी सुशासन का मूल आधार है। उन्होंने कहा कि जन कल्याणकारी योजनाओं और नीतियों को संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ धरातल पर उतारने से ही सुशासन स्थापित होता है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि शासन सचिवालय प्रदेश की 8 करोड़ जनता की आशाओं और अपेक्षाओं का केंद्र है और प्रत्येक कर्मचारी गुड गवर्नेंस की धुरी और विकसित राजस्थान 2047 के महत्वपूर्ण सारथी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और कर्मचारी हित में प्रतिबद्धता के साथ काम किया है। जोधपुर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल से आज नियमित हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने यात्रियों को टिकट और स्वागत किट प्रदान कर उनका अभिनंदन किया। इस दौरान बेंगलुरु से पहली फ्लाइट के यात्रियों का भी पारंपरिक राजस्थानी लोक संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में श्री शेखावत ने कहा कि नए टर्मिनल के शुरू होने से पिछले 12 साल से चला आ रहा इंतजार आज समाप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि यहां से नियमित विमान सेवाओं का संचालन होना समूचे मारवाड़ के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है।
1: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया, आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट

0: पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता हूँ वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
1: गौरतलब है कि जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 जुलाई को लोकार्पण किया था। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि केंद्र सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी, तकनीक सक्षम और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नए न्यायालय परिसर टावर ऑफ जस्टिस के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की संवैधानिक जिम्मेदारियों से ही न्याय की मूल भावना साकार होती है और राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे बढ़ता है।
2: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ, सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव। यह नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण, प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
1: समारोह में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा तथा पंजाब न्यायालयों के न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन गंभीर चेतावनी का संकेत है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई पहल की है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन और धरती का तापमान बढ़ने को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। श्री चौहान ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ जैसी पहलों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका, उनका स्वास्थ्य, उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा, वनों की कटाई, प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियालो राजस्थान के तहत कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने आज कोटा में रखे गए वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने पौधा लगाकर आम जन से भी हरित राजस्थान के लिए सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस फर्जी तस्वीर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक में समस्या हो सकती है। पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पीआईबी ने पेट्रोलियम मंत्रालय के हवाले से ये भी आश्वासन दिया कि भारत में आपूर्ति किया जाने वाला एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उच्च गुणवत्ता मानकों का पालन करता है और उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जाने से पहले इसका गहन परीक्षण किया जाता है। पीआईबी ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 350 रुपए प्रोसेसिंग शुल्क जमा करने पर 5,00,000 रुपए का ऋण मंजूर होने का दावा करने वाले एक फर्जी पत्र का भी खंडन किया है। ब्यूरो ने लोगों से ऐसे फर्जी संदेशों से सतर्क रहने, किसी भी प्रकार का पैसा स्थानांतरित नहीं करने और अपनी व्यक्तिगत या बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की अपील

0: की है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आज से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तक चलने वाली ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए आयोजित की जा रही है। इसके लिए प्रदेश के 27 जिलों में 1200 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। हमारी अजमेर संवाददाता ने बताया कि आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की परीक्षाएं ली गईं।
1: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूबने से आज 3 सगे भाई बहनों सहित 4 बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार ये बच्चे जिले के धम्बोला क्षेत्र के बड़ी गांव के रहने वाले थे और एनिकट में सुबह नहाने गए थे। इस दौरान अधिक गहराई में जाने से ये हादसा हुआ। घटना के दौरान 2 बच्चों को आसपास के लोगों ने समय रहते बचा लिया। हादसा स्थल के पास मंदिर होने के कारण बारिश के मौसम में बड़ी संख्या में लोग यहां आते हैं, लेकिन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने के चलते दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। पाली जिले में वस्त्रों के पैकिंग बैग की कई यूनिट इन दिनों स्थापित हुई है। इनमें अधिकतर ने कुटीर उद्योग के तौर पर पहचान बनाई है। हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले भर में 20,000 से अधिक महिलाएं घरों पर ही पैकिंग बैग तैयार कर वस्त्र निर्माता इकाइयों को भेज रही हैं और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही हैं।
2: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
0: सरहदी जिले श्रीगंगानगर में महिलाओं को कार्यस्थल पर समानता देने और भेदभाव तथा उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आज सेमिनार आयोजित की गई। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविन्द्र कुमार ने इसमें शिरकत की। इस दौरान कई न्यायकर्मी मौजूद रहे। सेमिनार में न्यायिक कार्यों के दौरान और फैसलों में महिला सम्मान भाषा के उपयोग और कार्यस्थलों पर महिलाओं के अधिकारों पर जानकारी दी गई। प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर एक बार फिर देखने को मिल रहा है। सरहदी और पश्चिमी जिलों में दिन के समय तापमान बढ़ने लगा है। श्रीगंगानगर में बीती 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। वहीं फलौदी और जैसलमेर में भी दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ। अधिकांश जिलों में बरसात की गतिविधियां थमने से किसानों के चेहरों पर मायूसी देखी जा रही है। वहीं जैसलमेर में आज आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान के ऊपर मानसूनी बादल फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। विभाग के अनुसार अगले 3-4 दिन बरसात की गतिविधियों में कमी बने रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसेवा में समर्पित कार्मिकों को सुशासन का मूल आधार बताया। कहा, सरकार ने कर्मचारी कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, सरकार देश की न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। सरकार ने एथेनॉल मिले पेट्रोल से ईंधन टैंक में समस्या से जुड़ी खबर को फर्जी बताते हुए खंडन किया है। और प्रदेश में मॉनसून के धीमे पड़ने से उमस भरी गर्मी का असर, पश्चिमी और सरहदी क्षेत्रों में दिन का तापमान बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से कोटा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख आशीष मेहता ने तैयार किया है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT कोटा का 5वां दीक्षांत समारोह हाल ही में आयोजित हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समारोह के मुख्य अतिथि थे। इस दौरान PhD के 2 शोधार्थियों सहित 203 विद्यार्थियों को विभिन्न डिग्रियां प्रदान की गईं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

0: क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे उभरते क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे, ताकि यहाँ से निकलने वाले विद्यार्थी केवल रोजगार प्राप्त करने वाले नहीं बल्कि भविष्य की तकनीकों का नेतृत्व करने वाले बने। पिछले दिनों लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू परिसर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत आयोजित सघन पौधरोपण कार्यक्रम में भी भाग लिया। इस अवसर पर वन विभाग ने ड्रोन के माध्यम से सीड बॉल्स गिराने की अभिनव पहल की शुरुआत की। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और विधायक संदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। अपने कोटा प्रवास के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने न्यू मेडिकल कॉलेज परिसर में 31 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनने वाले कॉटेज वार्ड का भूमि पूजन किया और करीब 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से निर्मित पीजी हॉस्टल्स का लोकार्पण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी बीते दिनों कोटा दौरे पर रहे। उन्होंने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोटा के गोपालपुरा मंडाना में आम सभा को संबोधित किया। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेस वे केवल आवागमन का माध्यम नहीं बल्कि क्षेत्र के चहुमुखी विकास का हाईवे है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए की लागत से 75-80% काम पूरा हो गया है, शेष काम भी तेजी से प्रगति पर है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे और भारत माला जैसी महत्वाकांक्षी सड़क परियोजनाएं राजस्थान के विकास को नई गति प्रदान करेंगी। विश्व जनसंख्या दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में कोटा को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में चिकित्सा और स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कोटा जिले को प्रमाण पत्र और 9,00,000 रुपए की राशि की घोषणा कर सम्मानित किया। पिछले दिनों कोटा बारा झालावाड़ न्यायिक क्षेत्र के न्यायिक अधिकारियों की पहली त्रैमासिक वर्कशॉप कृषि विश्वविद्यालय बोरखेड़ा के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने दीप प्रज्वलित कर इस सेमिनार का उद्घाटन किया। श्री भाटी ने लैंगिक समानता सुनिश्चित करने में जजों की भूमिका पर विशेष बल दिया। उन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की गरिमा के अधिकार को सुनिश्चित करने और उनके साथ होने वाले भेदभाव को रोकने को भी कहा। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के प्रारूप पर सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से जिला परिषद सभागार कोटा में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की गई। जनसुनवाई में जनप्रतिनिधियों, विभिन्न धर्मों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, विधिवेत्ताओं और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा आम नागरिकों ने भाग लेकर अपने सुझाव दिए। जनसुनवाई के दौरान विभिन्न प्रतिभागियों ने संविधान की मूल भावना के अनुरूप सभी नागरिकों के लिए समानता, राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता तथा विधिक स्पष्टता जैसे विषय पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम की लाइव स्ट्रीमिंग के साथ जिला स्तरीय रोजगार उत्सव सियाम ऑडिटोरियम में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, JVVNL और अन्य विभागों में चयनित 1207 नए चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र और बधाई संदेश प्रदान किए। इसी के साथ कोटा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेश सिंचय बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहले खास समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जन सेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण का ने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री कानून व्यवस्था ने बत्ती सरल, साफ गोई और नागरिक केंद्रित बनावण का ने बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलों ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रहे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथूणी और सर्दी हल्का में दिन रो तापमान बढ़ियो।

0: समाचारों रे साथ है मैं शंभु सिंह और अबे समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहो है कि जनसेवा में समर्पित अहलकार और कार्मिक सुशासन रो मूल आधार है। वना कहो कि जन कल्याणकारी योजनावां और नीतियां ने संवेदनशीलता साफ गोई और भगत सर धरातल माथे उतारण हुए सुशासन स्थापित हुए है। मुख्यमंत्री आज जयपुर में सचिवालय कर्मचारियों का न्यू व्यास सम्मान जलसा में बोल रहा है। श्री शर्मा कहो कि शासन सचिवालय प्रदेश री 8 करोड़ जनता री आशावां और अपेक्षावां रो केंद्र है और हर कार्मिक गुड गवर्नेंस री धुरी और विकसित राजस्थान 2047 रो मैताऊ सारथी है। मुख्यमंत्री कहो कि वारी सरकार कर्मचारी कल्याण कानी ऐतिहासिक कदम उठाया है और कर्मचारियों रा हित में प्रतिबद्धता रे साथ काम करिया है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहो है कि केंद्र सरकार देश रा न्याय बंदोबस्त ने बत्ती सरल साफगोई तकनीक पूर्ण और नागरिक केंद्रित बनावन सारू बरोबर काम कर रही है। आज गुरुग्राम में नुआ अदालत परिसर टावर ऑफ जस्टिस रा उद्घाटन मौके वना कहो कि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिकारी संवैधानिक जिम्मेदारियों हुई न्याय री मूल भावना साकार हुए है और राष्ट्र प्रगति रा पथ माथे आगे बढ़े है।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, केवल नए भवन का उद्घाटन का अवसर नहीं है बल्कि न्याय व्यवस्था को और अधिक सुलभ सशक्त और नागरिक केंद्रित बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये नवीन न्यायिक परिसर उस संकल्प का साकार रूप है जिसके केंद्र में प्रत्येक नागरिक को गरिमापूर्ण प्रभावी और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है।
0: जलसा में सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और हरियाणा और पंजाब री अदालतां रा न्यायाधीश और न्यायिक अहलकार मौजूद रिया। जोधपुर हवाई अड्डा नुआ टर्मिनल आज बरोबर हवाई सेवा शुरू हुई। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत यात्रियों ने टिकट और स्वागत किट देर वारो स्वागत करियो। इस दौरान बेंगलुरु पहली फ्लाइट रा यात्रियों रोई रीत मुजब राजस्थानी लोक संस्कृति रे साथ स्वागत करीजियो। मीडिया साथ बतलमाए श्री शेखावत कहो कि नुआ टर्मिनल रे शुरू होवण लाड़ला 12 साल चाल रहा इंतजार आज पूरा भी हो। वना कहो कि अठ्यों नियमित विमान सेवावां रो संचालन वेणो आखा मारवाड़ सारू ऐतिहासिक कामयाबी है।
2: जिस तरह से भारत की इकोनॉमी ने ग्रो किया आज वो यात्रियों की संख्या 10 गुना से ज्यादा बढ़ गई और जोधपुर एयरपोर्ट पर कुल परिचालन होने वाली हवाई जहाजों की संख्या भी जो एक सप्ताह में जिसके आधार पर कैलकुलेट करता वो भी लगभग 10 गुना बढ़ गया। आज जोधपुर देश के हर लगभग बड़े शहर से केंद्र से कनेक्टेड है। जोधपुर विंटर सीजन में जोधपुर सभी महानगरों से कनेक्टेड है और आने वाले समय में जिस तरह से हवाई जहाजों की संख्या देश में बढ़ रही है आने वाले समय में जोधपुर की कनेक्टिविटी और भी अधिक बेहतर होगी।
0: ध्यान जोगे के जोधपुर हवाई अड्डा रा नुआ टर्मिनल रो उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 जुलाई ने करियो हो। 480 करोड़ रुपया री लागत 37 एकड़ में बनया ई टर्मिनल भवन में 8 प्रवेश दरूजा है और यात्रियों ने सीधा हवाई जहाज ताई पुगावन सारू कई आधुनिक सुविधावां विकसित करी जी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो है कि जलवायु बदलाव घनी चिंता रो संकेत है। इस संकटों निपटन सारू केंद्र सरकार कई पहल करी है। आज नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में बोलता श्री चौहान कहो कि आखी दुनिया जलवायु बदलाव और धरती रो तापमान बढ़ने ने लेर चिंता में है। वना कहो कि देश में नवीकरणीय ऊर्जा बूता में महत्व बढ़वार भी है। श्री चौहान एक पेड़ माँ के नाम अभियान और मिशन लाइफ सरी की पहलारो जिक्र करता कहो कि भारत साल 2070 ताई शून्य कार्बन उत्सर्जन रो लक्ष्य तय करियो है।
3: 2050 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हर साल 4% की कमी आने की संभावना है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा और इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है। उनकी आजीविका उनका स्वास्थ्य उनका जीवन स्तर इस पर पड़ रहा है और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा वनों की कटाई प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक

0: जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
1: मानसून रे आवण रे साथे ही प्रदेश भर में एक पेड़ माँ के नाम और हरियाणा राजस्थान रे तहत कई जागरूकता कार्यक्रम रखा जावे। एक कड़ी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज कोटा में व्याप वृक्षारोपण कार्यक्रम में शिरकत करी। ई मौके वना पौधा लगार लोगों हरित राजस्थान सारू सक्रिय भागीदारी निभावण री अर्ज करी। ए समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही उन फर्जी तस्वीरों खंडन करियो है जिनमें दावो करी जो है कि इथेनॉल मिला पेट्रोलों वाहन रा ईंधन टैंक में समस्या वह सके है। पीआईबी री तथ्य जांच इकाई ई दावा ने झूठो बतावता कहो है कि तेल विपणन कंपनियां कानियों सप्लाई किया जाने वाला E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो रा तहत मानका मुजब है। पीआईबी पेट्रोलियम मंत्रालय रा हवालाओं भरोसो दियो है कि भारत में सप्लाई किया जाने वाला इथेनॉल मिला पेट्रोल में ऊंची गुणवत्ता मानकों का पालन करी जो है और उपभोक्ताओं ने मुहैया कराया जाने पहला इनरो गहराई रे साथ परीक्षण करियो जावे है। पीआईबी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रे तहत 350 रुपया प्रोसेसिंग फीस जमा करण माथे 500,000 रुपया रो कर्ज मंजूर होने रो दावो करण वालों एक फर्जी कागज बतायो है। पीआईबी लोगों इन तरह रा फर्जी संदेशों सावचेत रहवाण और किणी तरह रा रुपया नी भेजण और आप री खुद री बैंक री जानकारी साझा नी करण री अर्ज करी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग कानियों आज वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू हुई। 18 जुलाई तय चालन वाली आ भर्ती परीक्षा कुल 9,651 औदा सारू वह रही है। इस सारू प्रदेश रा 27 जिला में 1,232 परीक्षा केंद्र बनाई जा है। आज पहले दिन सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान री परीक्षा मान ली रिजी।
2: पहले दिन दो पारियों में परीक्षा का आयोजन प्रदेश भर में शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हुआ। यह परीक्षा 18 जुलाई तक प्रदेश के 27 जिलों में आयोजित की जाएगी। इस भर्ती परीक्षा में 12,31,973 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से किसी भी दलाल या बिचौलियों के बहकावे में नहीं आने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आयोग के कंट्रोल रूम पर तत्काल देने की अपील की है। नलमा धादीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
1: डूंगरपुर में एक एनिकट में डूब जावणु आज 3 सगा भाई बहना समेत 4 टाबना री मौत वेगी। पुलिस बतायो के हादसा रा शिकार ए टाबर जिला रा धंबोला हल्का रा बड़ी गांव रा रहवासी हा और एनिकट में सवारा नावण गया हा। ई दौरान घनी गहराई में जावणु ओ हादसो वियो। हादसा रे दौरान 2 टाबरा ने आरे सारे रा लोगा भगत रहता बचा लिया। पाली जिला में कपड़ा रा पैकिंग बैग री कई यूनिट आदिना स्थापित हुई है। इण माय घणकरा कुटीर उद्योग रा तौर माते पिछाण बनाई है। मारा खबर न्यूज बतायो कि जिला माय 20,032 महिला मा घरा माते पैकिंग बैग तैयार करने कपड़ा बनावण वाली इकाया ने भेज रही है और आत्मनिर्भरता कानी आगे बढ़ रही है।
3: विभिन्न वस्त्रों की पैकिंग में उपयोग होने वाले बैग स्थानीय स्तर पर तैयार किए जा रहे हैं। इससे उद्योगों को सूरत, अहमदाबाद और अन्य महानगरों पर निर्भरता कम हुई है एवं स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। बैग निर्माण के लिए कटिंग का कार्य यूनिट में किया जाता है, बाद में इसकी सामग्री महिलाओं के घरों तक पहुंचाई जा रही है। महिलाएं घर पर सिलाई कर पैकिंग बैग तैयार कर रही है। घर बैठे लगभग 20,000 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। इससे महिलाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ उनका आर्थिक विकास हो रहा है और पाली के उद्योगों को नई गति मिल रही है। विशारद जोशी, आकाशवाणी समाचार, पाली।
1: प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़णु गर्मी रो असर एक कर फेरू दिखण लाग्यो है। सरदी और आथोणी जिला में दिन रो तापमान बढ़ण लाग्यो है। श्री गंगानगर में लाडला 24 घंटा रे दौरान बत्ती रो तापमान 41 डिग्री सेल्सियस ऊपर दर्ज करी जो। वठे फलोदी और जैसलमेर में दिन रो तापमान 40 डिग्री सेल्सियस रे आरे सारे रिकॉर्ड भी हो। घणकरा जिला में बिरखारी गतिविधियां थम जावणु काश्तकारों रा चेहरा माथे उदासी देखी जावे। जैसलमेर में आज धूल भरी आंधी चालणु जिंदगी माथे असर पड़ियो। ई बीचे मौसम महकमो कहो है कि सेटेलाइट इमेज में राजस्थान रे ऊपर मानसूनी बादल अजय नजर नहीं आ रिया है। महकमा मुजब आवता 3-4 दिन बिरखारी गतिविधियां में कमी बनी रहण री आस है। सरहदी जिला रा श्री गंगानगर में महिलाओं ने काम री ठोड़ बरोबरी देवण और भेदभाव उत्पीड़न माथे रोकथाम सारू आज सेमिनार वियो। राजस्थान हाईकोर्ट रा न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल और जिला न्यायाधीश रविंद्र कुमार कार्यक्रम में शिरकत करी। ई दौरान कई न्यायिक कर्मी मौजूद

प्रक्रिया। सेमिनार में नई कमारे दौरान और फैसला में महिला सम्मान भाषा काम में लेवण और काम रिठोड़ महिलाओं हक री जानकारी दी जी। हनुमानगढ़ जिलो आज आपरो 32वां स्थापना दिवस मनावे। 3 दिन रा उत्सव रा आखिरी दिन आज भटने दुर्ग में पूजा अर्चना और रन फॉर हनुमानगढ़ भी हो। ई मौके न्यारी न्यारी होडा भी और एक पेड़ माँ के नाम अभियान रे तहत पौधाई रोपी जिया। ने अबे आखिर माए खास समाचार आप एक कर फिर सुन ले रहो। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनसेवा में समर्पित कार्मिका ने सुशासन रो मूल आधार बताया। कयो सरकार कर्मचारी कल्याण काने महत्व कदम उठाया। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कयो सरकार देश री न्याय व्यवस्था ने 32 सरल साफगोई और नागरिक केंद्रित बनावन कानी बरोबर काम कर रही है। सरकार एथेनॉल मिलिया पेट्रोलू ईंधन टैंक में समस्याओं जुड़ी खबर ने फर्जी बतावता खंडन करियो है और प्रदेश में मानसून रे धीमो पड़नो उमस भरी गर्मी रो असर आथोणी और सर्दी हल्का में दिन रो तापमान बढ़ियो। ने इनर साथी प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो व्यो मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी में प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर संध्या के 7 बजे हैं। ग्रामीण श्रोता सुने अपना कार्यक्रम चौपाल भारत भूषण के साथ।

चौपाल कार्यक्रम सुननीय सगळ्या परिवाराने बोरूबाई की घणी घणी राम राम, मोकळी मोकळी राम राम। किसान भाइयों, पिछले कई वर्षा सू आप देखण लाग रहे के अपनी जिकी किसानी है, जिकी आप कृषि करा, बिंगा उत्पादन की जिकी कीमत है, बिंगी अनिश्चितता, यानी कि कितो आप बीजो है, कितो आपने प्राप्त हो सी। पहला आप अंदाजो लगा लिया करता कि साल में इतनी अपनी फसल हो जाएगी, तो अपनो खर्चो बैठ जाएगो, जे प्रकृति अनुकूल रही तो आपने इतो ज़्यादा मुनाफो मिल सी, प्रकृति जे आपने खिलाफ भी रही तो भी आपनो इतो नुकसान हो सी। तो आ अनिश्चितता जी की है आ कई साल में आपने सामने आई है, और कृषि में काम आने वाला जी का आदान है, रे स्प्रे है या और भी अपना जी का खर्चा है, बांगी भी लागत में दिनों दिन बढ़ोतरी होने लग रही है, भूजल स्तर आपनों गिरन लग रही है। वही कारण है कि बहुत सा किसान भाई जी का है, या आप कह दें कि जी का कम भूमि वाला लघु किसान है, वह किसानी छोड़न तक भी सोच चुके है और कई छोड़ भी चुके हैं। इस समस्या के समाधान वास्ते आप के कर सका और के तरीके की खेती ना आप अपना सका, के चीज़ इसी आप किसानी कर सका, के फसल बीज सका इसी कि अपनी जी की लागत है वह कम आवे और मुनाफो जी को है वो पहला तरिया बरकरार रवे, और मुनाफो जी को है वो आपने बढ़िया मिले। भी पर चर्चा कर सें आप, सुना सब छू पहला भजन।

सुनियो भजन, किसान भाइयों आपा बात करा नई खेती की। तो आपा उजाला की खेती कर सका आपा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हो सी अपने वास्ते। उजाला एक बहुत ही बढ़िया बहुगुणी फर्न है, इनका उपयोग आपा किया कर सका, पशुओं ने चारा के रूप में प्रयोग कर सका। और सबसे बड़ी बात के इंगी जी की कास्त है बिंगी लागत बहुत कम आवे, वो तेजी बढ़ने वालों एक ईसो यानी पानी को फर्न है, जिको पानी की ऊपरली जी की सतह हुए बी पर छोटा छोटा गुच्छा बन जाए हरे रंगा अरे तिरतर हुए। आपने भारत में मुख्य रूप से उजाला की जी की जाति है बा है उजाला पिन्नाटा आ जी की जाति है बा अपने भारत में मिले और गर्मी वास्ते सहन करने वाली किस्म है। इनकी पंखुड़िया में जिको है वो एनाबिया नामक जिको नील हरित हुए जिकी एक तरीके की काई हुए आ एक सूक्ष्म जीव हुए और जिये ही सूरज उगे तो सूरज के प्रकाश के सागे वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन के सागे योगीकरण करके एर हरी खाद तैयार कर दे जिकी में भरपूर नाइट्रोजन की आपूर्ति हो जाए। और इनकी विशेषता है कि जे इन सही वातावरण मिल जाए प्रकृति साथ दे दे तो 5 दिनों में या 2 गुनी हो जाए और पूरे साल जे आप इन्हें बढ़न देवा तो आ 40 क्विंटल नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तैयार कर दे। उजाला के अंदर किसान भाइयों जब आप बात करा तो 3.5% नाइट्रोजन और कई तरीके का जिका कार्बनिक पदार्थ है पैसागा हुआ है और आप भूमि की उर्वरा शक्ति ने बहुत ही बढ़ा दिया। किसानों वास्ते कम कीमत पर बहुत ही बढ़िया खाद जी को है बापा ने उपलब्ध करा दे। दुधारू पशुओं वास्ते भी जब बात करा पा तो उजाला दूध को जी को उत्पादन है और दूध की जी की गुणवत्ता है बिंग माँ बढ़ोतरी देखने में आई है। उजाला जी को है वो दुधारू पशुओं वास्ते तो घी अड़तरियाँ काम करे एर किसानांग है। जे आएगी बात करा जीविकोपार्जन की बात करा तो वरदान साबित हो है। उजाला जी को है वो सस्तो और पौष्टिक पशु आ रहा है और इन्हें खिलाने चूंकि उसी के वसा और वसा रहित जी का पदार्थ है सामान्य आहार खाने वाला जी का पशु हुआ है बाग में दूध जी को है वो ज़्यादा बढ़ेगो और पशुआ में बांझपन को जी को निवारण है भी वास्ते भी बहुत ही उपयोगी है। कई बार यहाँ पर देखा कि पशुओं के पेशाब में खून की समस्या आवे तो बाको कारण हुआ है कि फॉस्फोरस की कमी हो जाए तो पशुओं ने जे आप उजाला खुआवा तो आ फॉस्फोरस वाली कमी जी की है बस दूर हो जी सी। उजाला के अंदर पशुओं में कैल्शियम को विकास अच्छो हुए प्रोटीन जी का आवश्यक एमिनो एसिड है विटामिन है बीटा कैरोटीन है खनिज लवण जिसा कैल्शियम फॉस्फोरस पोटेशियम आयरन कॉपर मैग्नीशियम ए बिल्कुल सही मात्रा के अंदर उजाला के अंदर आपने मिले। हर पशु ने आप 1.5 किलोग्राम उजाला नियमित रूप से देवा तो पशु ने जिको पूरक पशु आर आप देनो चाहवा वो आप दे सका। जे दुधारू पशु ने आप 1.5-2 किलोग्राम उजाला प्रतिदिन देवा तो दूध उत्पादन के अंदर आप 15-20% तक वृद्धि जी की है वह दर्ज कर सका। इन्हें खाने वाली जी की गाय भैंस को दूध है बिंगी गुणवत्ता भी पहले से बढ़िया हो जाएगी। उजाला की वजह से हर गाय भैंस के दूध में गाढ़ोपन आ जी सी मतलब फैट बढ़ जाएगी। तो इन तरीके से उजाला जी को है वो पशुओं वास्ते

एक बहुत ही बढ़िया पौष्टिक आहार है और जे खाद के रूप में आप इन बीजा तो भी बीज सका और सस्ती खेती है। बता चीता और कर्षे आ गए, सुन लें एक और गीत।

सीमेंट की टंकी में तो प्लास्टिक सीट बिछाने की भी अपन ने जरूरत कौन पड़े, क्योंकि बटे बिना अपन ढक भी सका और बिगमो पानी को रिसाव भी कोनी हुए। खाडे में अपन 10 से 15 किलोग्राम छनेड़ी जी की माटी हुए बा बिछा देनी है, और 10 लीटर पानी में 2 किलो गोबर, 30 ग्राम सुपर फास्फेट बना के बिंगो घोल और सीट पर बिछा दें। जल स्तर को लगभग 10 सेंटीमीटर तक करने के बाद में पानी मिलाना चाहिए। ओजोला जी की क्यारी हुए बिंगमा माटी पानी ने हल्के शू हिलाने के बाद में लगभग आधे 1 किलो शुद्ध जी को ओजोला इनोकुलम पानी पर एक समान आपा फैला देवा। संचरण के तुरंत बाद में ओजोला के पौधों जी को है वो सीधो खड़े रहे, इन वास्ते आपा भी ओजोला के ऊपर ताजो पानी छिड़क देना है। एक हफ्ते के अंदर ओजोला की जी की पूरी क्यारी है भी पर फैल जाएगी, और मोटी चादर बन जी सी बिंगी बा फरन जी की है बा पूरे खड्डे में एक सी फैल जाए। जल्दी बिंगी वृद्धि वास्ते आपा 50 ग्राम जी को है वो रोज गो पैदावार गो दिन में एक बारी 20 ग्राम सुपर फास्फेट या किलो गोबर गाय को मिला देना चाहिए। ओजोला में खनिज की मात्रा बढ़ाने वास्ते आपा एक एक हफ्ते के अंतराल पर मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, सल्फर आंगो जी को युक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है वह मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने वास्ते आपा, क्योंकि नाइट्रोजन की जब मात्रा बढ़े तो सूक्ष्म जी का पोषक तत्व है बंगवा कमी आन लग जाए, तो बिना रोकने वास्ते आपा 30 दिना में एक कर लगभग 5 किलो क्यारी की जी की माटी है बा नई माटी में बदल देनी चाहिए। कीट बीमारियां संक्रमित ना हुए अपनी ओजोला, तो शुद्ध कल्चर को एक नई क्यारी में तैयार कर लेना चाहिए। अब इनकी कटाई किया करनी है तो तेजियों जिकी बढ़ के 10 से 15 दिन में गड्ढे में भर दे, और इनके बाद में 500 से 600 ग्राम ओजोला रोज को आप काट वो ग्राम प्लास्टिक की छलनी या इसी ट्रे हुए जिके निचले भाग में छेद हुए बिंगी सहायता से 15 दिन बाद में रोज को आप इन्हें काट सका। और कट्टेड़े ओजोला ने गोबर की जिकी सुर में बिन मिटाण वास्ते आप ताजे पानी में धो देवा, और बिन पानी ने भी पुट्ठो बिंग गड्ढे में ही गाल दें ताकि बिंगा जी का कोई पोषक तत्व है या अंग्रेजी में आप कहते हैं स्पोर्ट्स हुए वह ओजोला ने कह जी का नया पौधा है बाने मिल जाए। अपन सावधानी के रखनी है, अच्छी उपज वास्ते आप संक्रमण मुक्त वातावरण रखना है भाई बीमारी ना लगे बैठे, और तेज़ बढ़वार और उत्पादन वास्ते रोज गो उपयोग वास्ते लगभग 200 ग्राम वर्ग मीटर गो गिदरशू बरे निकाल तो रहना चाहिए ओजोला ने। अच्छी वृद्धि वास्ते तापमान में आपा 35 डिग्री सेल्सियस जी को तापमान बैठे बनाए रखा, और सापेक्षित जी की आर्द्रता है जी की नमी है बा 65 से 66 होनी चाहिए, और ठंड के मौसम में प्रभाव कम रहे इन वास्ते प्लास्टिक शीट हुई ना आपा ढक देवा। इन तरीके से आपा ओजोला की खेती कर सका। सुन लें एक और गीत।

सुनियो गीत। किसान भाइयों बात करा आप जी का दूध वाला अपना पशु है बंग में आप अक्सर देखा कि थनेला रोग हुआ है। ई रोग ना आप लगभग मादा जी का पशु हुआ है बाँ पर ही देखा कि बई सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है क्योंकि एक थन को जी को हिस्सों है वो सूज जाए दर्द होने लग जाए बिंग माँ एर वो जब आप दूध काटा तो वो गर्म भी महसूस हुआ एर बियाँ देखा तो जिको पशु को शारीरिक तापमान है वो भी तेज होने लग जाए। दूध के अंदर भी आप परिवर्तन देखने में आ जाए दूध की गुणवत्ता भी खराब होने लग जाए दूध जी को है वो छनेड़े पानी वाले त्रियाँ आने लग जाए। कई बरियाँ तो देखा कि दूध के माँ या तो पस आने लग जाएगी या खून का थक्का आने लग जाए और लगभग ब्यांत के बाद में पहले या दूसरे सप्ताह में वो रोग जी को है वो पशु के अंदर देखने आ जाए। इनको कारण के वह कह तो संक्रमित पानी पी

ले या पिंगे बिछावने में दिक्कत हुए या जिकहूँ आपा दूध का डब्बा हाथों भी रोग लाग जाए या कोई सो उपकरण आपा बिंगो दूध काटने वास्ते आपा इस्तेमाल करा भी उपकरण के कारण भी वो रोग लाग जाए। कई बिरिया बाड़े में अस्वच्छता हुए तो भी वो रोग जिको है थनांगे लाग जाए। कई बिरिया थनगे चोट आईडी हुए या दूध जिको आपा पशु को निकाला तो बी समय अगर कोई चोट आईडी हुए या बाड़े में अस्वच्छता हुए तो भी जिको पशु है वो रोग लो जाए। इंगा लक्षण जे आपां बात करा तो रोग जिको है वो तेजियों बड़े लक्षणहीन अवस्था में हुए। कदी कदी तो जिको पशु ने वो रोग लागे वो पशु बुखारों बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाए। दूध भी वो गाढ़ो आने लग जाए को मवाद अलतरियाँ थन जिको है बी पर सूजन रहेगी एर वो जी ही फैलेगो बी ही दर्द भी हो सी। दूध में फाइब्रिन का थक्का जिके ना पा खून कह दिया खून का थक्का भी आने लग जाए। थन के अंदर दूध आनो कम हो जाए एर कई बीरियाँ तो दूध आनो ही बंद हो जाए। सही जब इन्हें आपा चिकित्सा नहीं दिलावा तो वो एकदम थन करड़ो हो जाएगो पत्थर वर्गो हो जाएगो बेकार हो जाएगो और कदी कदी तो गैग्रीन जेबिंग में बन जाए तो थन जी को है वो टूट के भी गिर जाए। तो आपा इंगो उपचार लेवा पहला तो आपा जिको भी पशु प्रभावित है बिना न्यारो कर दिया और पशुओं रोग की संभावना की स्थिति ने पशु चिकित्सकों आपा संपर्क कर लिया। जक्के थन को आपा उपचार करो बिन दोगे साफ आता हूँ दूध निकाला अच्छी तरह भी थन ने आपा खाली कर दिया। खाली होने के बाद में बोरिक एसिड लाल दवाई फिटकड़ी को जिको घोल हुआ पीछू आपा बिन दोवा एर बिंगे बाद में 1% नमक के साथ मक्खन छू थन की मालिश करता रहा। दूध की जी की जांच है बा केंद्र पर जांच करवा गए बी हिसाब से आपा भी ने पशु ने आपा एंटीबायोटिक भी दे इसका वो रोग लागे ना इन वास्ते आपा ने सब से जरूरी है कि पशु जी को बाड़ो है बिंगी बढ़िया साफ सफाई रखा। जरूरतों ज़्यादा पशु ने बाड़े में ना रखा। दूध हिसाब सरकार ना कई बरिया दूध काढ़ नालों जी को है वो भी जोर लगा गए या थनान खींच गए या किन तरीके से जिको थन है बिना चोटग्रस्त कर दे तो बिंगो आपा विशेष ध्यान रखा। दूध निकालना जब आपा अंगूठे को प्रयोग ना करा पूरे हाथ की जिकी हथेली है बिंगो प्रयोग करना चाहिए। रोगी पशु जिको आपा दूध मिले बिना बाड़े से दूर ले जा गए कोई खाडो खोद के बिंग मां बूर देवा। दूध आपा अंत में निकाला समय समय पर दूध को परीक्षण आपा ने करवाना चाहिए और बाजार में इंगी किट भी उपलब्ध है भी आपा घरे ले आके भी इंगो जिको है वो जांच कर सका। पशुओं को बिछावन गीलो ना रहने देवा समय समय पर बिन बदलता रहा ए छोटा छोटा उपचार अगर आपा करता रहेंगे तो आपनों पशु भी स्वस्थ रहेगो और ईसो रोग भी आपने पशु ने लगेगो को नहीं और वो बड़ो गंभीर रोग है ईशु पशु जी को है वो नाश हो जाए। तो आपा नीम प्रति सावचेत रहना चाहिए। अब सुन लिया आपा एक और गीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। संध्या के 7:45 हुए हैं, लीजिए फिल्म संगीत सुनिए।

अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में उपहार फिल्म का गीत सुना। गीत रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। आइए कार्यक्रम में अगला गीत सुने। दो रास्ते फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने नीलकमल फिल्म का गीत सुना। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। रात्रि के 8 बज चुके हैं, लीजिए एक ही फिल्म से सुनिए। आज हम आपके लिए जो फिल्म लेकर के आए हैं, उस फिल्म में अभिनय करने वाले अभिनेता राजेंद्र कुमार की आज पुण्यतिथि है, तो आज इस कार्यक्रम के मार्फत हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनकी अभिनीत फिल्म का गीत सुनें।

साथियों, अभी आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमारी आज की फिल्म गीत का ये गाना सुना। गीत के बोल आनंद बख्शी के थे, संगीत कल्याण जी आनंद जी का था। राजेंद्र कुमार एक ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से लोगों के दिलों में अपनी एक अमिट छाप बनाई। 60 से 70 के दशकों में बॉलीवुड के सफलतम अभिनेताओं में से एक थे राजेंद्र कुमार, जिनका जन्म 20 जुलाई 1927 को हुआ। आपने 70 के दशक में कई फिल्मों में निर्माता भी रहे। यदि उनके फिल्मी सफ़र की बात करें तो राजेंद्र कुमार ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत 1950 की फिल्म जोगन से की, जिसमें उनको दिलीप कुमार और नरगिस के साथ अभिनय करने का अवसर मिला। 1957 में बनी फिल्म मदर इंडिया में आपको बहुत ख्याति प्राप्त हुई, जिसमें आपने नरगिस के बेटे की भूमिका निभाई। 1959 में आई फिल्म गूंज उठी सहनाई की सफलता के बाद आपने बतौर अभिनेता अपना नाम कमाया, तो आज उनके पुण्यतिथि में हम उन्हें याद करें और उनकी अभिनीत फिल्म का अगला गीत सुनें।

अभी आपने महेंद्र कपूर और लता मंगेशकर को सुना हमारी आज की फिल्म गीत के लिए। इस गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। हम बात कर रहे थे राजेंद्र कुमार की। आपकी अनेक बेहतरीन फिल्में रहीं और कुछ फिल्में तो ऐसी जो एक साथ एक हफ्ते में सिल्वर जुबली बनाई, इसी कारण आपका नाम जुबली जुबली कुमार भी पड़ा। अपने जीवन में राजेंद्र कुमार ने बहुत सी सफल फिल्में दी, जिसमें धूल का फूल, दिल एक मंदिर, मेरे महबूब, सनम, आरजू, सूरज, तलाश, गीत, ऐसी अनेक बेहतरीन फिल्में आपने की। हिंदी फिल्मों के साथ साथ आपने कई पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ऐसी फिल्मों में आपने काम किया। बहरहाल आइए कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएं। सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में प्रेम धवन का लिखा, कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया ये गीत।

साथियों, राजेंद्र कुमार ने 70 के दशक के आखिर से 80 के दशक तक आपने चरित्र भूमिका में भी अपना हुनर दिखाया। आप एक सफल अभिनेता होने के साथ साथ एक सफल निर्माता और निर्देशक भी रहे। आपने अपने बेटे को लेकर लव स्टोरी फिल्म बनाई, जिसमें निर्माता निर्देशक होने के साथ साथ आपने इस फिल्म में अपने बेटे कुमार गौरव के पिता की भी भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल हुई। उसके बाद आपने संजय दत्त के साथ अपने पुत्र को लेकर नाम फिल्म बनाई। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी सफल रही। आपका आखिरी अभिनय अर्थ फिल्म में देखने को मिला। बहरहाल, आइए सुनते हैं हमारी आज की फिल्म का अगला गीत।

आशा भोसले की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। राजेंद्र कुमार साहब, जिन्हें हिंदी फिल्म कानून और गुजराती फिल्म मेहंदी रंग लाखियों के लिए राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, 1969 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। अपने 70वें जन्म दिवस से महज 8 दिन पहले यानी आज ही के दिन 12 जुलाई 1999 को वो हम सब से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। आज के इस कार्यक्रम में हम उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनकी अभिनीत फिल्म का ये गीत सुनें।

0: नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और एक बार हम फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की खेलों के मैदानों की हेडलाइंस पर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव कुछ देर में होंगे आमने सामने। चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने कैलोरीना मुखोवा को हरा करके अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स खिताब हासिल किया। इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई। लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को जीत के लिए 457 रन का लक्ष्य दिया। और एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीत करके 16 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सबसे पहले कार्यक्रम को शुरू करते हैं विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के साथ, जो एकदम अंत की तरफ अपने बढ़ चला है और एक के बाद एक खिताबों के विजेताओं के फैसले होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज चीन की गुआओ हान्यू और फ्रांस की क्रिस्टलीना मडलेनोविक की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में कनाडा की ग्रैबेला डेबोस की और ब्राज़ील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से हराया। पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला आपसे कुछ देर में इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर जेरेव के बीच में होना है। तो एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन यानिक हैं और दूसरी तरफ फ्रेंच ओपन के विजेता जेवरेव हो गए। इससे पहले चेकिया की लिंडा नोस्कोवा ने अपना पहला विंबलडन महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। लिंडा ने सेंटर कोर्ट पर खेले गए खिताबी मुकाबले में अपने ही देश की कैरोलिना मुखोवा पर शानदार जीत दर्ज की। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
1: लिंडा नोस्कोवा ने कल विंबलडन के एक रोमांचक महिला सिंगल्स मुकाबले में कैरोलिना मुखोवा को 6-2, 5-7, 6-3 से हराते हुए अपने करियर का सबसे बड़ा खिताब हासिल किया। दूसरा सेट हारने के बाद नोस्कोवा ने शानदार वापसी करते हुए अंतिम सेट और मुकाबला अपने नाम किया। 21 वर्षीय खिलाड़ी मुखोवा ने पहला सेट हारने के बाद दूसरे सेट में जोरदार वापसी की और सेट 7-5 से जीत कर मैच को निर्णायक सेट तक खींच लिया। हालांकि नोस्कोवा ने अंतिम सेट में फिर से नियंत्रण हासिल किया और अहम मौकों पर संयम बनाए रखते हुए मैच अपने नाम कर लिया। ये नोस्कोवा की पहली विंबलडन खिताब और एक बड़ी ग्रैंड स्लैम जीत है। 21 वर्षीय नोस्कोवा अपनी आदर्श खिलाड़ी और अपने देश के दिग्गज पेट्रा किवतोवा के बाद सबसे कम उम्र के विंबलडन चैंपियन बनी। वहीं पुरुष डबल्स का खिताब फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा और हेनरी पैटन की जोड़ी ने जीत कर अपने नाम किया। इस एंग्लो फिनिश जोड़ी ने कल एल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो और क्रोएशिया के मेट पाविक को 7-6, 7-6 से शिकस्त दी। इसी के साथ पैटन ओपन एरा में 2 विंबलडन पुरुष डबल्स टाइटल जीतने वाले पहले ब्रिटिश पुरुष बन गए। पैटन और हेलियोवारा ने इससे पहले साल 2024 में यहां खिताब जीता था और ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 की ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो तमाम खिताब फाइनल हो गए हैं, बस बचा है मेंस सिंगल्स जो अब से कुछ देर में शुरू होगा दो चैंपियन खिलाड़ियों के बीच। और अब रुक करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप का, जहां इंग्लैंड और गत विजेता अर्जेंटीना ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में इंग्लैंड ने नॉर्वे को 2-1 से और अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को 3-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सुनते हैं दोनों मैचों का पूरा हाल।
2: इंग्लैंड ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए नॉर्वे को 1-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इंग्लैंड की इस जीत के नायक जूड बेलिंगम रहे, जिन्होंने अतिरिक्त समय में टीम के लिए विजयी गोल दागा। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैच के

0: 36वें मिनट में एंड्रियास शेल्डरूप ने पहला गोल करते हुए नॉर्वे को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद बेलिंगहम ने पहले हाफ में इंजरी टाइम में शानदार गोल दागते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। दूसरे हाफ में दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए लेकिन किसी को भी सफलता नहीं मिली। इसके बाद मुकाबला अतिरिक्त समय में पहुंचा जहां 93 मिनट में बेलिंगहम का जादू एक बार फिर देखने को मिला। उन्होंने मुकाबले का अपना दूसरा गोल करते हुए इंग्लैंड को 2-1 की बढ़त दिला दी जो अंत तक कायम रही।
1: Time and Jude Bellingham made the difference. It has finished. Norway 1.
0: इससे पहले इंग्लैंड 1966, 1990 और 2018 में सेमीफाइनल में पहुंचा था। 1966 में इंग्लैंड ने खिताब भी अपने नाम किया था। वहीं एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना ने स्विट्जरलैंड को हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। अर्जेंटीना को क्वार्टर फाइनल मुकाबले में शानदार शुरुआत मिली और 10वें मिनट में मिले कॉर्नर पर लियोनेल मेसी ने बेहतरीन क्रॉस दिया जिसे एलेक्स मैक एलिस्टर ने बिना कोई गलती किए हेडर की मदद से गोल में तब्दील कर दिया। इसके बाद दूसरे हाफ की शुरुआत स्विट्जरलैंड के नाम रही। मैच के 67वें मिनट में टीम मुकाबले में वापसी करते हुए स्कोर 1-1 से बराबर कर लिया। स्विट्जरलैंड की ओर से पहला गोल डैन एंटोय ने किया। 90वें मिनट तक स्कोर 1-1 की बराबरी पर रहा। मुकाबला अतिरिक्त समय में चला जहां 112वें मिनट में अर्जेंटीना के अल्वारेज स्विट्जरलैंड के डिफेंस को भेदने में सफल रहे और टीम को मुकाबले में 2-1 की बढ़त दिला दी। इसके बाद इंजरी टाइम में लोटारो मार्टिनेज ने अर्जेंटीना के लिए तीसरा गोल करते हुए 3-1 से टीम की जीत पक्की कर दी।
1: Almada, the save, but the follow-up is in. Lautaro Martinez sends Argentina to the semi-finals. Argentina's pursuit of greatness goes on. It is Argentina.
0: अब सेमीफाइनल में 15 जुलाई को अर्जेंटीना की भिड़ंत इंग्लैंड से होगी। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन।
2: अड़तालीस टीमों के साथ इस विश्व कप का अभियान शुरू हुआ था और अब यह आंकड़ा सिमट कर 4 टीमों पर आ चुका है। सेमीफाइनल की दौड़ एकदम स्पष्ट हो चुकी है और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष, हमारे सहयोगी विशेष। कौन कौन सी 4 वो टीमें हैं, इंग्लैंड और अर्जेंटीना को अगर हटा भी दिया जाए, बाकी 2 टीमें कौन सी हैं जिन्होंने सेमीफाइनल में जगह बनाई और क्या तस्वीरें आने वाले मुकाबलों की?
3: शक्ति, जो पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा वो फ्रांस और स्पेन के बीच में खेला जाएगा। फ्रांस एक बहुत ही अनुभवी टीम है और विश्व विजेता भी रह चुकी है। वहीं अगर हम स्पेन की बात करें तो ये उनका सिर्फ दूसरा सेमीफाइनल होगा। हालांकि बहुत ज़्यादा दबाव होगा स्पेन के ऊपर क्योंकि फ्रांस ने 7 बार सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, 2 बार उन्होंने खिताब जीता है और 2 बार वो रनर्स अप भी रहे हुए हैं। तो इस तरीके से स्पेन के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और अगर दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले की बात करें तो वो मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। दोनों ही टीमें इस विश्व कप में बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखा चुकी हैं। लेकिन अगर बात करें अर्जेंटीना की तो वह 6 बार सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है उन्होंने और 3 बार विजेता रहे हैं और 3 बार उपविजेता रहे हैं। और सबसे एक दिलचस्प बात यह है कि अर्जेंटीना ने आज तक कभी भी सेमीफाइनल मुकाबला नहीं हारा है, तो इंग्लैंड के लिए ये एक बहुत बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। और हालांकि इंग्लैंड ने भी एक बार विश्व कप अपने नाम किया है 1966 में और तीसरा सेमीफाइनल उनका ये होगा, एक बार वो विजेता भी रह चुके हैं।
2: जी बिल्कुल, तो इंग्लैंड वापस दोहराना चाहेगा। 70 साल का इंतज़ार, तकरीबन 60 साल का इंतज़ार हो रहा है इंग्लैंड के लिए। टीम्स की अक्सर बात होती है कौन कौन से खिलाड़ी जिस पर नज़र रहेगी। गोल्डन बूट जो सबसे एक्साइटिंग फेज होता है इस विश्व कप का, कौन सबसे आगे नजर आ रहा है?
3: शक्ति, इस समय किलियन एम्बापे और लियोनेल मेसी दोनों 8-8 गोल के साथ पहले और दूसरे स्थान पर बने हुए हैं, लेकिन एम्बापे ने उनसे मेसी से ज़्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। अगर तीसरे और चौथे स्थान की बात करें तो वहाँ बेलिंगम और हैरी केन वो दोनों बने हुए हैं, लेकिन बेलिंगम ने ज़्यादा असिस्ट किए हैं इसलिए वह तीसरे स्थान पर, हैरी केन चौथे स्थान पर हैं। वहीं डेम्बेले जो हैं फ्रांस के उन्होंने 5 गोल के साथ वो 5वें स्थान पर बने हुए हैं।
2: जी बिल्कुल, मात्र गोल का महत्व नहीं है, महत्व उन खिलाड़ियों का भी है जो असिस्ट करके गेंद को गोल के करीब तक पहुँचाते हैं। और अब रुख करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां लंदन के ऐतिहासिक मैदान लॉर्ड्स पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट मैच में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 2 विकेट पर 19 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। भारत के लिए यशिका भाटिका ने सर्वाधिक 113 रन और स्मृति मंधाना ने 70 रन बनाए। इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई थी।

0: भारत ने इसके आधार पर 115 रन की बढ़त हासिल की थी। भारत के लिए क्रांति गौड़ ने बड़ी शानदार गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 5 खिलाड़ियों को वापस पवेलियन भेजा था और पहली बार वो जो बोर्ड है लॉर्ड्स मैदान का, जहां पर उन खिलाड़ियों के नाम लिखे जाते हैं जो 5 विकेट हॉल हासिल करते हैं, क्रांति गौड़ का नाम अंकित हुआ है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस उपलब्धि पर क्या कहा।
1: को पता चल ही है कि एक जो नया रिकॉर्ड है वो मैंने करा है। तय कि फैमिली में पहले किसी को कॉल करने का, देन मैंने मेरे बड़े भाई को कॉल किया, देन वो भी बहुत खुश है, देन पूरी फैमिली। देखा जाए आज मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के सारे लोग मुझ पे प्राउड फील कर रहे होंगे। आज थोड़ा सा जब मैं ड्रेसिंग रूम में बैठी तो मैं सोच रही थी उस बोर्ड के साइड देख के, क्या सेकंड डे है हमारा, क्या आज इसमें नाम लिखवाना है मुझे। मैं करके 5 मिनट तक उस बोर्ड के साइड देखी, देन उसके बाद मैं नीचे गई थी। फिर जैसे मैंने 5th विकेट लिया तो जैसे हर एक प्लेयर्स का अचीवमेंट, देन 5 विकेट की जो खुशी होती है वो अलग ही लेवल की थी मेरी।
0: बिल्कुल। और अब ICC के दूसरे हॉल ऑफ फेम की तरफ चलते हैं, जहां भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने अपना नाम अंकित किया है। इन्हें क्लास ऑफ 2026 2026 का हिस्सा बनाया गया है ICC हॉल ऑफ फेम में। कल इसकी घोषणा की गई एडिनबर्ग में और अब कुल संख्या 125 हो गई है। ICC अध्यक्ष जय शाह ने तीनों पूर्व कप्तानों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी उपलब्धियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेंगी।
2: भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में से एक सौरव गांगुली ने अपने करियर के दौरान भारतीय टीम को एक मजबूत टीम में बदला। शानदार बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने 113 टेस्ट मैच में 7212 रन और 311 एक दिवसीय मैच में 11363 रन बनाए। बतौर कप्तान भारतीय क्रिकेट के इस दादा ने भारत को वर्ष 2000 में ICC चैंपियन ट्रॉफी और ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2003 के फाइनल तक पहुंचाया। उनकी कप्तानी में टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2002 का संयुक्त खिताब भी जीता। इस सम्मान पर प्रतिक्रिया देते हुए सौरव गांगुली ने कहा कि ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होना उनके लिए सम्मान की बात है। क्रिकेट के महानतम खिलाड़ियों के बीच मेरा नाम शामिल होना मेरे सबसे यादगार पलों में से एक रहेगा। वहीं शानदार अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद अंजुम चोपड़ा ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। बाएं हाथ के स्टाइलिश बल्लेबाज 1000 वनडे रन बनाने वाली और 100 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला थीं। उन्होंने 2002 में दक्षिण अफ्रीका में भारत को उसकी पहली विदेशी टेस्ट जीत दिलाई और ICC महिला विश्व कप 2005 के फाइनल तक टीम के यादगार सफर में अहम भूमिका निभाई। यह सम्मान पाने पर अंजुम चोपड़ा ने कहा कि खेल कूद वाले परिवार में पली बड़ी होने के नाते मैंने क्रिकेट के दिग्गजों और उनकी बड़ी उपलब्धियों के बारे में कहानियां सुनी थी। भारत के लिए खेलने का सपना बहुत कम उम्र में ही मन में बस गया था। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज और कप्तान केविन पीटरसन को भी उनके शानदार करियर की उपलब्धियों के लिए हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: हालांकि एक बुरी खबर भी भारत के लिए इंग्लैंड से आई। इंग्लैंड ने भारत को चौथे 5वें T20 मैच में साउथहैम्पटन में 56 रन से हरा करके श्रृंखला 4-0 से अपने नाम कर ली है। निशानेबाजी में भारत की नीरू डांडा ने इटली के लोनाटो में ISSF निशानेबाजी शॉटगन विश्व कप में महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत करके इतिहास रच दिया है।
3: Well, a great close-up on the cameras, and the cheers go up just off camera. We just caught him there, Pete Wilson, the coach, out of his seat, punch in the air. Still one more shot to go from Carole Comenier. It's another miss for the French athlete, but the moment that Nehru managed to nail the gold just happened a few moments ago, and you've got a feel for Carole Comenier. She shot so well, came into this final, made a really good start, a perfect start, actually.
0: तो एक शानदार प्रदर्शन और एक बेहतरीन खिलाड़ी, पहली ट्रैप खिलाड़ी बनी है भारत के लिए महिला वर्ग में, जिन्होंने भारत के लिए पदक जीता, वो भी स्वर्ण पदक। और अब रुक करते हैं एथलेटिक्स का, जहां चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर-23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन आज भारत ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही भारत ने अपना शानदार अभियान 16 पदकों के साथ समाप्त किया, जिसमें 3 स्वर्ण पदक शामिल थे। और अब संडे का दिन है तो बात फिटनेस की जाए, यानी फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत आज देश में संडे ऑन साइकिल का आयोजन किया गया। इसके 81वें संस्करण में आज नई दिल्ली में चार्टर्ड अकाउंटेंट और भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी सुमन देवी ने हिस्सा लिया। ये सुनते हैं सुमन देवी ने इस बारे में क्या कहा।
4: ये बहुत अच्छी चीज हो रही है संडे को, ये फिट इंडिया के साइकिलिंग बहुत जरूरी है हेल्दी रहने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि ये चीज को कंटिन्यू रखे और अपने सबको मैं कहना चाहूंगी कि ये सब लोग कुछ ना कुछ वर्कआउट करते रहे।

0: जी बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि साइकिलिंग जो है वो फिटनेस के लिए, पर्यावरण के लिए और तमाम पहलुओं से बेहद लाभदायक होती है। और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर उत्कर्ष सक्सेना ने भी फिट इंडिया संडे की सराहना की है और कहा कि ये स्वस्थ भारत बनाने के लिए एक सकारात्मक कदम है। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी राय sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं नवीन सक्सेना। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा हॉर्मूज जलडमरू मध्य सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते। और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर ज़ोरेव का मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
2: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमरीकी सेंट्रल कमान ने कहा है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया है कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमरीकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमरीकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। उन्होंने कहा कि ईरान का हॉर्मूज जलडमरू मध्य पर कोई नियंत्रण नहीं है और सुरक्षित पारगमन मार्ग खुले हैं। इससे पहले ईरान द्वारा हॉर्मूज जलडमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर हमला करने और उसे आग लगाकर चालक दल को जहाज छोड़ने के लिए मजबूर करने के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए हवाई हमले किए। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फूकवाक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन होंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और 12 अन्य पश्चिमी तथा एशियाई देशों ने 2016 के मध्यस्थता निर्णय के आधार पर दक्षिण चीन सागर में चीन के व्यापक दावों को अवैध बताया है। इन 14 देशों के संयुक्त बयान में कहा गया है कि विवादित जल क्षेत्र में क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे

0: डालने वाली कार्रवाई अस्वीकार्य है। 27 देशों वाले यूरोपीय संघ के बयान में इसे विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में ऐतिहासिक निर्णय बताया गया है।
1: इन बयानों में 12 जुलाई 2016 को हेग में संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के तहत स्थापित न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय का जिक्र किया गया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक निर्णय को अंतिम और कानूनी रूप से बाध्यकारी बताया है। हालांकि चीन ने इस निर्णय को खारिज करते हुए इसे अमान्य बताया। उसने कहा कि इसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। चीन ने दोहराया कि वह इसे न तो स्वीकार करता है और न ही मान्यता देता है। एक वर्ष पहले विवादित जल क्षेत्र में तनावपूर्ण गतिरोध के बाद दक्षिण चीन सागर तनाव का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहां चीन और फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई और ताइवान के बीच बार बार क्षेत्रीय गतिरोध होते रहते हैं। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देशभर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया।
2: कार्यक्रम के दौरान जन भवन की नक्षत्र वाटिका में कुल 29 चंदन के पौधे लगाए गए। पौधारोपण अभियान में जन भवन के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ साथ बालिका गृह की लड़कियों ने भी हिस्सा लिया। इस अभियान में कई मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्यों, विभिन्न विभागों के लोगों, विद्यार्थियों और आम जनता ने भी भाग लिया। ये अभियान राज्य के 75 जिलों में चलाया गया। राज्य ने इस वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 करोड़ से ज्यादा पौधे भी लगाए। उत्तर प्रदेश में इस साल अब तक कुल 40 करोड़ 29 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। यह अभियान 27 विभागों के आपसी सहयोग से चलाया गया, जिसमें वन विभाग ने 15.5 करोड़ पौधे लगाने का सबसे बड़ा लक्ष्य पूरा किया। लखनऊ से सुशील तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से रेशमा तिवारी।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्य भर में 21 लाख पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की भी योजना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधे लगाना बेहद महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में वृक्ष मित्र और पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रम में श्री चौहान ने कहा कि आज पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी का तापमान बढ़ने से चिंतित है।
3: जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, जलवायु संकट गहराएगा और ये नुकसान 2100 तक बढ़कर जीडीपी में जो कमी हो रही 20% तक पहुंच सकता है। आप कल्पना कीजिए क्या होगा। यह आर्थिक संकट इतना बड़ा होगा कि इसको मुकाबला करना फिर कठिन हो जाएगा। और इसलिए वर्तमान दर से अगर ग्रीन गैसों का उत्सर्जन जारी रहा तो 2050 तक पृथ्वी को गंभीर पर्यावरणीय, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम के 405 करोड़ रुपए की लागत से विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। हमारी संवाददाता ने बताया कि गृहमंत्री ने 2029 के चुनाव तक निर्वाचन क्षेत्रों में पौधे लगाने की गतिविधि को 20% तक बढ़ाने की दीर्घकालिक पर्यावरणीय रूपरेखा पर बल दिया।
4: गृह मंत्री ने बरगद, पीपल, जामुन और अर्जुन जैसे स्वदेशी पौधे लगाने पर जोर दिया, जिससे शहर के तापमान में 5% की कमी आएगी और भावी पीढ़ियों के लिए एक रहने योग्य पर्यावरण सुनिश्चित होगा। उन्होंने पर्यावरण स्थिरता में योगदान देने के लिए हर घर और आवासीय सोसाइटी से सोलर रूफटॉप अपनाने का भी आह्वान किया। इस पर्यावरण अभियान के तहत आज 101 नए ऑक्सीजन पार्क का भी उद्घाटन किया गया और उनकी जानकारी देने वाली एक विशेष ई बुक भी जारी की गई। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए AMTS और BRTS के बेड़े में आज 333 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई, जिससे अहमदाबाद BRTS देश का पहला 100% इलेक्ट्रिक और शून्य प्रदूषण वाला बेड़ा बन गया है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

ये आकाशवाणी है। भारत ने चीन के ओर्डोस में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला टीम ने 4x400 रिले में स्वर्ण पदक जीता, जबकि भाला फेंक में भारत के आनंद सिंह ने स्वर्ण और शिवम लोहाकरे ने कांस्य पदक हासिल किया। भारतीय पुरुष टीम ने 4x400 रिले और महिला टीम ने 4x400 मीटर रिले में रजत पदक जीते। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला इटली के यानिक सिनर और जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव के बीच जारी है। इससे पहले चीन की गुओ हानयू ने और फ्रांस की क्रिस्टीना मिलाडेनोवा की जोड़ी ने महिला डबल्स का खिताब जीता। उन्होंने फाइनल्स में कनाडा की गैब्रियला डाब्रोवस्की और ब्राजील की लुइसा स्टेफनी को 6-3, 7-5 से पराजित किया। उधर लंदन के लॉर्ड्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को एकमात्र टेस्ट में 457 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में तीसरे दिन इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 3 विकेट पर 23 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने अपनी दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन बनाकर घोषित कर दी। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 170 रन की बना सकी। सरकार ने इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से वाहन के ईंधन टैंक की सीमित समस्या संबंधी दावे का खंडन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर वायरल फर्जी तस्वीर में ऐसा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को झूठा बताया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा आपूर्ति किया जा रहा E20 पेट्रोल भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुरूप है। निर्धारित मानकों के अनुरूप होने पर इथेनॉल और पेट्रोल पूरी तरह से घुलनशील हैं। नई पीढ़ी के प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधारों के विषय पर 2 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन कल से मेघालय के शिलांग में शुरू हो रखा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा मेघालय सरकार इसका आयोजन कर रखे हैं। ये सम्मेलन देश भर के नीति निर्माताओं, प्रशासकों, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञों और शासन से जुड़े लोगों को एक मंच पर लाएगा, ताकि वो लोक प्रशासन और डिजिटल गवर्नेंस के भविष्य पर चर्चा कर सकें। सम्मेलन में 300 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने निर्माण क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल तकनीक अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। नई दिल्ली में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के 172वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसी भी भवन या संरचना के निर्माण के दौरान उसकी मजबूती से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल कल से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो भारतीय उद्योग जगत के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगे। इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और टिकाऊ विकास पर विशेष ध्यान देते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल कल स्पेन पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 16 तारीख को आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम का 136वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। वो नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के माध्यम से भी ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। नागरिक 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS से प्राप्त लिंक का अनुसरण करके सीधे प्रधानमंत्री को अपने सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव इस महीने की 24 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया मंगलवार को देशभर में लगभग 668 करोड़ रुपए लागत वाली 7 कर्मचारी राज्य बीमा ESI स्वास्थ्य परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत पर हमले के बाद पश्चिम एशिया क्षेत्र में तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। अमरीका ने कहा होर्मुज जल डमरू मध्य में सभी जहाजों के लिए खुला और अमरीकी सेना नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैयार। वियतनाम में नौका दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीयों के पार्थिव शरीर हो ची मिन शहर पहुंचे, उन्हें जल्द से जल्द भारत लाया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने एक

दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण में नया इतिहास रचा। चीन में अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने 3 स्वर्ण सहित कुल 16 पदक जीते और लंदन में विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष सिंगल्स फाइनल में यानिक सिनर और अलेक्जेंडर जेवरेव का मैच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Bangladesh creates new benchmark in environmental conservation by planting over 35 crore saplings in a single day. India bagged a total of 16 medals, including 3 gold at under 23 athletic championships in China. And in Wimbledon tennis, men's singles final between top seed Jannik Sinner and second seed Alexander Zverev underway in London. And that's all in the news at 9. Good night.
1: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर। रात्रि के 9:15 हुए हैं। लीजिए सुगम संगीत में गुलाम अली की गाई गज़लें सुनिए।

इसी गज़ल के साथ सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्यिक जहाज़ों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने बयान में क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार
2: गज उत्पादों की प्रेरणा से सजी उनकी इस गायकी में जयपुर अतरौली और अन्य घरानों की झलक भी मिलती है। एक बहुमुखी कलाकार और संगीतकार के रूप में कुमार मलडोर ख्याल तुमरी हिंदी भजन मराठी अभंग कन्नड़ दास साहित्य कन्नड़ वचन साहित्य और कई अन्य संगीत परंपराओं का अन्वेषण करते हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार कुमार ने देश भर के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में अपनी प्रस्तुति दी है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन टुनाइट्स रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा वी ब्रिंग यू अ वोकल रिसाइटल बाय श्री कुमार मरडूर। Awarded the Ustad Bismillah Khan Yuva Puraskar by the Sangeet Natak Academy.
4: Kumar Mardur stands out as a gifted Hindustani classical vocalist. His grounding in the Kirana and Gwalior Gharanas, along with training under his father, Pandit Somnath Mardur, has led to a unique gaiki that weaves in elements from Jaipur Atrauli and other Gharanas, built on deep riyas and inspiration from legendary maestros. A multifaceted performer and composer, Kumar explores khayal, tumri, Hindi bhajans, Marathi abhangs, Kannada dasa sahitya, Kannada vachana sahitya, and many other traditions. An A-grade artist of Akashvani and Doordarshan, Kumar has performed throughout the country in various prestigious concerts.
5: आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे हैं। श्री कुमार मरडूर अपने कार्यक्रम का प्रारंभ राग छायानट से कर रहे हैं। विलंबित झुमरा इनायत हो, द्रुत तीन ताल एरी मालनिया, द्रुत तीन ताल तराना।
4: इन टुनाइट्स प्रोग्राम ही इज अकंपनीड ऑन द तबला बाय पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर एंड ऑन द हारमोनियम बाय श्री पंचाक्षरी हिरेमठ। Shri Kumar Mardur will begin his vocal recital with Raag Chhayanat, Vilambit Jhumra, Inayatahu, Drut Teen Taal, Eri Maliniya, followed by Tarana in Drut Teen Taal.

0: विनती करत है।
1: यू जस्ट हर्ड राग छायानट। श्री कुमार मरडूर विल नाउ प्रेजेंट राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागेना। द्रुत एकताल विनती करत है।

अभी आपने सुना राग छायानट। अब श्री कुमार मरडूर प्रस्तुत कर रहे हैं राग बागेश्री। विलंबित एकताल सखी मना लागिना, द्रुत एकताल।

0: अब तक आप सुन रहे थे राग बागेश्वरी। इसी के साथ आज की रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है, जिसमें आप सुन रहे थे श्री कुमार मरडूर का गायन। आपके साथ तबले पर पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर और हारमोनियम पर श्री पंचाक्षरी हिरेमठ साथ दे रहे थे।
1: That was Raag Bageshri. With that, we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhila Bharatiya Sangeet Sabha, in which you were listening to a vocal recital by Shri Kumar Maradur. He was accompanied on the tabla by Pandit Satlingappa Desai Kallur and on the harmonium by Shri Panchakshari Hiremath.
0: यह कार्यक्रम आकाशवाणी के धारवाड़ केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: This program was earlier recorded at Akashvani Dharwad and relayed from Akashvani Delhi.
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्स पर रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। भारत ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जल मार्गों से मुक्त और बिना रुकावट के नौवहन और वाणिज्य जहाजों को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
4: भारत ने तनाव को

0: तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है, ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर द्वारा रणनीतिक जलमार्ग को अगले आदेश तक बंद करने की घोषणा के कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेंट्रल कमान ने कहा कि होर्मुस जलडमरू मध्य सभी वैध आवागमन चाहने वाले जहाजों के लिए खुला है। ये बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संवाददाता सम्मेलन में ये कहने के बाद आया कि होर्मुस जलडमरू मध्य वाणिज्यिक जहाजों के लिए खुला है। अमेरिकी सेंट्रल कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जलडमरू मध्य से समुद्री यातायात सुचारू रूप से चल रहा है और अमेरिकी सेनाएं ईरानी आक्रामकता, उत्पीड़न, धमकियों और मनमानी घोषणाओं के बावजूद नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए तैनात हैं। ईरान ने बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरान ने जॉर्डन में एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भी हमला करने का दावा किया। इस तनाव ने क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। वियतनाम में नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर हो ची मिन्ह शहर पहुंच गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में दूतावास ने बताया कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरा होने के बाद पार्थिव शरीरों को यथाशीघ्र भारत भेजा जाएगा। हो ची मिन्ह शहर स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास वियतनाम के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है। इस नाव में 32 भारतीय पर्यटकों सहित 36 लोग सवार थे। दुर्घटना में घायल 16 भारतीय स्वदेश लौट रहे हैं। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति का वियतनाम के फू कॉक स्थित अस्पताल में उपचार चल रहा है। इस बीच वियतनाम के प्रधानमंत्री ली मिन हंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। देश भर में पौधे लगाने के लिए आज व्यापक अभियान चलाया गया। इसके तहत उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में नया इतिहास रचा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में लिंक एक्सप्रेसवे के निकट नीम, पीपल और बरगद के पौधे लगाकर राज्यव्यापी पौधारोपण महायज्ञ का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में नगर निगम की 405 करोड़ रुपए की लागत की विरासत परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर श्री शाह ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत विशाल पौधारोपण अभियान का शुभारंभ भी किया। इस अभियान के तहत आज उनके लोकसभा क्षेत्र गांधीनगर में 1,25,00,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज इंदौर में एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य राज्यभर में 21,00,000 पौधे लगाना है। इस अभियान के अंतर्गत 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने की योजना है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कल एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग मेघालय सरकार के सहयोग से कल शिलांग में नेक्स्ट जनरेशन प्रशासनिक और ई गवर्नेंस सुधार विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। भारत ने चीन के आउटडोर्स में खेली जा रही एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपना अभियान 16 पदकों के साथ संपन्न किया। इनमें 3 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने आज अंतिम दिन 2 स्वर्ण और 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।